सुप्रभात श्रोताओ, एफ एम 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी खंडवा। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 मई सन 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी यह सभा आरंभ होती है।

0: यह आकाशवाणी खंडवा है। श्रोताओ, अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

आकाशवाणी खंडवा से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आस्था के स्वर। ये स्वर विदुषी श्रुति साडोलीकर का।

विदुषी श्रुति साडोल के स्वर में हम सुन रहे थे संत मीराबाई की भक्ति रचना। अब शारदा सिन्हा की आवाज रचना है गोस्वामी तुलसीदास जी की।

आज के इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति ये भक्ति रचना पंडित दिगंबर विष्णु पलुस्कर के स्वर में।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे थे आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

0: श्रोताओ, हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है चिंतन।
1: हम में जाने कितने प्रकार का भय समाया रहता है। यदि हम विश्लेषण करके देखें तो अधिकांश प्रसंगों में हमारा भय निराधार साबित होता है। कई लोग भूत से डरते हैं। मैंने अब तक भूत के भय की लगभग 50 घटनाएं देखी होंगी, पर मैं दावे से कह सकता हूं कि सभी की सभी निराधार थीं। वे महज काल्पनिक घटनाएं थीं। वास्तव में व्यक्ति को कल्पना का भूत ही सताता है। जब हम अकेले किसी अंधेरे स्थान से गुजरते हैं तो हमारा हृदय एक अज्ञात भय से धड़धड़ाने लगता है और हमें पत्थर या वृक्ष भी चलते फिरते भूत के रूप में दिखाई देने लगता है। इसका कारण है हम पर बचपन में डाले गए भय के संस्कार। जब माताएं छोटे बच्चों को किसी काम से रोकना चाहती हैं तो वे हवा का डर दिखाती हैं, या हवा का डर हमारे भीतर इतना रूढ़ हो जाता है कि वही कालांतर में हमारे महान भय का कारण बनता है। हम यदि जंगल में से गुजर रहे हों

तो सतह हमें आक्रांत करता रहता है। सामान्य दृष्टि से यह भय नितांत स्वाभाविक प्रतीत होता है और कहा जा सकता है कि भला किसे जंगल में जंगली जानवरों का डर न होगा, पर प्रश्न यह है कि क्या वह डर हमें कमजोर नहीं बना देता। भय का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह मनुष्य को शक्तिहीन कर देता है। जो व्यक्ति सिंह विक्रम प्रकट कर सकता था वही भयाक्रांत होकर गीदड़ की तरफ हो जाता है। एक बार मैं लोनावला में नहर के पार पर से चला जा रहा था। वह पार लगभग 18 इंच चौड़ा है, सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ। जहां तक वह पार जमीन से 3-4 फुट ऊंचा था, वहां तक तो मैं मजे से चला गया, पर कुछ दूर पर एक नाला आया तो पार वहां पर जमीन से 25-30 फुट की ऊंचाई पर था। मैंने देखा कि अचानक मेरे पैर कांपने लगे, मैं चलने में असमर्थ हो गया। लगता कि अब गिरूंगा तब गिरूंगा,

0: कि वह मनुष्य को शक्तिहीन कर देता है। जो व्यक्ति सिंह विक्रम प्रकट कर सकता था वही भयाक्रांत होकर गीदड़ की तरफ हो जाता है। एक बार मैं लोनावला में नहर के पार पर से चला जा रहा था। वह पार लगभग 18 इंच चौड़ा है, सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ। जहां तक वह पार जमीन से 3-4 फुट ऊंचा था, वहां तक तो मैं मजे से चला गया। पर कुछ दूर पर एक नाला आया तो पार वहां पर जमीन से 25-30 फुट की ऊंचाई पर था। मैंने देखा कि अचानक मेरे पैर कांपने लगे, मैं चलने में असमर्थ हो गया। लगता कि अब गिरूंगा तब गिरूंगा। लगभग 50 फुट की लंबाई मैंने बड़ी कठिनाई से बैठे बैठे पार की। अब यह क्या था, उतने ही चौड़े पार पर मैं पहले मजे से चल रहा था और कुछ समय बाद मैं चल नहीं पाया। यह भय था, गिरने का भय। भय ने मेरा विश्वास छीन लिया और मेरी शक्ति दब गई। एक बार मैं बंडीपुर के वन में पर्यटन विभाग की जीप में सैर कर रहा था। इतने में लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक इक्कड़ हाथी दिख पड़ा। हम लोगों को देखते ही उसने सूंड उठाकर हम लोगों की तरफ दौड़ना शुरू किया। चालक इतना घबरा गया कि उसका संतुलन बिगड़ गया और जीप एक चट्टान से टकराते टकराते बची। यह भय है जो हमारा संतुलन हर लेता है। हाथी तो बाद में मारता, पर चालक का भय हमारे लिए पहले ही काल बनने जा रहा था। तो क्या ऐसे भय को जीता जा सकता है? हां, मैं तब स्वर्गाश्रम ऋषिकेश के लगभग 15 मील ऊपर वशिष्ठ गुफा में रहता था। बड़ा ही घना जंगल था तब। दिन में वन्य पशु दिखाई पड़ जाते थे, मुझे बहुत डर लगता था। उसके कारण मेरी साधना में भी व्यतिक्रम होता था। तब वहां के एक तपोनिष्ठ सन्यासी ने मुझे समझाते हुए कहा, अच्छा बताओ तुम क्यों डरते हो? मैं क्यों उत्तर न दे पाया। उन्होंने स्वयं उत्तर देते हुए कहा, आखिर मृत्यु का ही तो तुम्हें डर है ना? यही तो सोचते हो ना कि जंगली जानवर तुम्हें मार डालेंगे। मेरे भीतर कुछ बिजली सी कौन गई। मैंने उनसे कहा, जी हां, डर का कारण यही मालूम होता है। वे बोले, ऐसा क्यों नहीं सोचते कि यदि मौत जंगली जानवर के हाथों लिखी हो तो कोई रोक नहीं सकता, और न लिखी हो तो बाल भी बांका नहीं हो सकता। ऐसा बारंबार विचार उठाकर यदि तुम इस तर्क को अपने भीतर बैठा लोगे तो दिन में डर के मारे जो कई बार तुम मरते रहते हो उससे तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। बात थी तो बहुत सरल और सामान्य सी दिखने वाली, पर उस तर्क ने धीरे धीरे मेरे भय को जीत लिया। कोई कह सकता है कि यह पलायनवाद है और इसको स्वीकार करने से मनुष्य असावधानी को प्रश्रय देगा, पर मेरी समझ में वस्तु स्थिति उल्टी है। यह वर्तमान में सही ढंग से जीने की शिक्षा है।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख और स्वर स्वामी आत्मानंद का। श्रोताओ, ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी खंडवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का, स्वर रंजना जोगलेकर का।

अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार देखा। कुछ को वो वीररस की प्रतिमूर्ति दिखे तो कुछ ने उन्हें अपने काल के रूप में देखा। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। इसी प्रकार स्त्रियां भी हर्षित होकर दोनों भाइयों को अपनी मन भावन छवि में देख रही हैं। उनके लिए मानो स्वयं श्रृंगार रस मानव का अनुपम रूप धारण कर वहां पहुंच गया है। विद्वानों को प्रभु का विराट रूप दिखा और जनक जी के सगे संबंधियों ने उन्हें अपने कुटुंब के रूप में देखा। रानियों को वो अपने बालक प्रतीत हो रहे हैं तो योगी यति उनमें शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन हुए, किंतु सीता जी जिस भाव से श्री राम को देख रही हैं उसके सुख और स्नेह का वर्णन करना कठिन है। ना तो वो स्वयं उसे व्यक्त कर सकती हैं, ना ही कवि उसके लिए सक्षम है।

0: रंजना जोगलेकर के स्वर में हम सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। अब प्रस्तुत है आकाशवाणी खंडवा से कृषि चर्चा।
1: किसान भाइयों राम राम। आज कृषि चर्चा में हम चर्चा करांगा जल संरक्षण का महत्व का बारा में। वाचक स्वर निरुपमा मिश्रा को। किसान भाई होन, जल हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकता में से एक छे। मनुष्य सहित पृथ्वी पर रहने वाला सभी जीव जंतु और वनस्पति को जीवन जल पर निर्भर छे। जल को दूसरो कोई विकल्प नहीं है। ये प्रकृति से प्राप्त निःशुल्क और अमूल्य उपहार में से एक छे। पण बढ़ती आबादी, प्राकृतिक संसाधन न को अत्यधिक उपयोग और उपलब्ध संसाधन न का प्रति लापरवाही न मनुष्य का सामना जल संकट खड़ो करी दियो। वर्तमान समय में जल संकट बहुत विकट समस्या का रूप में उभरी का ही रोज। आज पानी को मूल्य बदली गोज और जल एक महत्वपूर्ण मूल्यवान वस्तु बनी चुकी। शुद्ध जल जहाँ एक और अमृत छे, वहाँ दूषित जल

0: विष अरु महामारी को आधार। किसान भाइयों, जल संसाधन संरक्षण अरु संवर्धन आज की आवश्यकता छे, जेका में हम सभी को सहयोग जरूरी छे। पानी की कमी या सूखो अरु पानी की अधिकता या बाढ़, ये दुई समस्या न जल संकट का दुई पहलू छे। वर्तमान समय में हम देखी राज कि जल संकट की समस्या में दिनों दिन बढ़ोतरी हुई रही। भूमिगत जल लगातार नीचे गहराई की ओर बढ़ी रोज, जेका कारण परंपरागत जल स्त्रोत सुखी राज। हम सभी जाना कि दुनिया में कुल मीठा जल की मात्रा 3.5% छे, जेको 89% हिस्सो कृषि क्षेत्र में उपयोग कियो जाज। 81 किसान भाइयों, जल प्रबंधन यानी जल को कृषि में सही उपयोग की शुरुआत कृषि क्षेत्र से करनु चाहिए। किसान भाई होन, जनमानस में ये धारणा छे कि सिंचाई में अधिक पानी का उपयोग से अधिक उपज प्राप्त हो, जो कि गलत छे, क्योंकि फसल उत्पादन में सिंचाई को योगदान 15-16% तक होज। फसल का लेन भरपूर पानी को मतलब केवल मिट्टी में पर्याप्त नमी होज, परंतु वर्तमान कृषि पद्धति में सिंचाई को अत्यधिक उपयोग कियो जाई रोज। धरती का गर्भ से पानी की आखिरी बूंद तक को खींचने को प्रयास कियो जाई रोज, ताकि ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पादन लियो जाई सको। किसान भाई होन, कृषि और सिंचाई एक दूसरा का पूरक छे, तो व्यर्थ में पानी की बर्बादी रोकने का लेन प्रत्येक किसान भाई न क सिंचाई की ऐसी पद्धति न को उपयोग करना चाहिए, जेका में फसल भी भरपूर होए और पानी को भी समुचित उपयोग हुई सके एका में बूंद बूंद सिंचाई बौछार जेका फव्वारा तकनीक भी कहो जाए बहुत उपयोगी सिंचाई पद्धति छे। इन्हीं तकनीक को उपयोग करी कर किसान भाई पानी को दुरुपयोग होने से रोकी सकज। फसल न क जीवन रक्षक या पूरक सिंचाई दई कभी उपज क दुगुनो कियो जाई सकज। किसान भाई होन, फसल में जल उपयोग क्षमता बढ़ाना का लेन पौधा न संतुलित पोषक तत्वों को प्रबंधन करनु जरूरी छे। पानी की सतत आपूर्ति का लेन जरूरी छे कि भूमिगत जल क पुनर्भरण कियो जाए। एका लेन किसान भाई न क वर्षा का पानी क यथासंभव रोकने की तकनीक अपनावनु पड़ेगा। ढाल का विपरीत जुताई और खेत न मेड़बंदी से भी पानी रोकी सकान। खेत का किनारा पर फलदार वृक्ष लगाना चाहिए और छोटा हो या बड़ा सभी कृषि क्षेत्र न क्षेत्रफल का हिसाब से छोटा या बड़ा तालाब को निर्माण किसान भाई ने सुनिश्चित करना चाहिए। ये कुछ प्रमुख बिंदु छे जेको उपयोग करी क कृषि का क्षेत्र में पानी की उपयोगिता को सीमित कियो जा सकज। किसान भाई होन, जल प्रकृति अरु परमात्मा की अनमोल देन छे, नए को संरक्षण करनु वर्तमान समय की आवश्यकता छे। न जब तक जल का महत्व को ज्ञान हम सभी का मन में नहीं होएगा, तब तक सामाजिक स्तर पर एक स्थिति में सुधार संभव नहीं हो सकतो। तो जरूरी छे कि लोग जल संरक्षण का लेन जागरूक होए और दूसरा लोग न कभी एका लेन प्रेरित करो। तो किसान भाई होन, आज की कृषि चर्चा में बस इतरोज। राम राम।
1: श्रोताओ, आपने सुनी कृषि चर्चा।
2: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुं सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
1: ये आकाशवाणी खंडवा है। आइए श्रोताओ, आपको जानकारी देते हैं हमारे आज के कार्यक्रमों की। आज की ताजा खबर अगला कार्यक्रम है, ये सुनिएगा अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:55 पर, और उसके बाद सुबह 7 बजे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकेंगे अश्विनी गुप्ता से उनकी काव्य रचनाएं। प्रादेशिक समाचार 7:10 पर, और उसके बाद हमारे केंद्र से 7:20 पर चेतना कार्यक्रम में डॉक्टर अदिति शर्मा से विद्याधर मुली की बातचीत आप सुन सकेंगे। बातचीत का विषय दंत चिकित्सा के नए आयाम। कुछ फिल्मी गीत आपको सुनवाएंगे सुनहरे पल कार्यक्रम में सुबह 7:30 से 8 बजे तक, और 8 बजे समाचार प्रभात, ये न्यूज मैगजीन हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। शायर बशीर बद्र की गजलें आपको सुनवाएंगे हमारे सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:15 बजे, और उसके बाद 8:30 बजे

आपके फरमाइशी फिल्मी गीत होंगे श्रोताओ। कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक सुनिएगा राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम, और उसके बाद 10 बजे हम भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे जिले की चिट्ठी।

सुबह 10:05 पर हमारे मेहमान क्रम में रश्मि तिवारी से विद्याधर मुले की बातचीत आप सुन सकेंगे और 10:20 से 10:35 पर निमाड़ी लोक गीतों का कार्यक्रम होगा। आज आपको सुनवाएंगे एक गम्मत कलाकार प्रभाकर दुबे। कोपल कार्यक्रम होगा सुबह 10:35 से 11 तक। आज इस कार्यक्रम में नियमित क्रम प्रेरक प्रसंग और जिज्ञासा के अलावा नीलेश गावड़ेकर की वार्ता होगी खेलों का महत्व। निमाड़ी लोक गीतों का कार्यक्रम शाम 5:30 होगा और उसके बाद शाम 6 युववाणी कार्यक्रम। शाम 7:21 से रात 8 तक किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा।

रात 8 बजे से सुनिएगा राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। तो ये था कार्यक्रम विवरण। FM 101.2 MHz पर हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं, आपको सुनवाते हैं आज की ताजा खबर। मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय जिला पंचायत खंडवा द्वारा वर्ष 2026-27 में कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में बेरोजगार युवक युवतियों को मिलेगा निःशुल्क प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र पोर्टल के माध्यम से आगामी 12 जून तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार मंडल के अंतर्गत संबल 2.0 योजना तथा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत सभी असंगठित श्रमिकों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। सभी पंजीकृत श्रमिक 13 जून तक ई-केवाईसी अवश्य करा लें। राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत चोइतराम फाउंडेशन ट्रस्ट और शंकरा आई केयर सेंटर इंदौर के सहयोग से जिले के विभिन्न ग्रामों में मोतियाबिंद की निःशुल्क जांच के लिए जून माह में ग्रामों में शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर 2 जून से 29 जून तक लगाए जाएंगे, जिसमें मरीजों की जांच और उपचार किया जाएगा।

हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा। तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू से बने उत्पादों के सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, टीबी और अन्य रोगों के प्रति युवाओं और बच्चों को जागरूक किया जाएगा।

और अब खेल समाचार। आईपीएल 2026 के क्वालिफायर 2 मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल में अपना सबसे बड़ा रन चेज करते हुए फाइनल में जगह पक्की कर ली है।

0: मौसम। कल अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रोताओ, आप सुन रहे थे आज की ताजा खबर, संकलन किया तृप्ति सोनी ने।
1: आज की ताजा खबर।
0: FM 101.2 MHz पर श्रोताओ, ये आकाशवाणी खंडवा है। अब प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम, और आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं अश्विनी गुप्ता से उनकी काव्य रचनाएं।
2: मैं अश्विनी गुप्ता, मेरी कविता है माँ की महिमा। मेरी कविता है माँ की महिमा। माँ की महिमा अजब निराली, माँ की महिमा अजब निराली, जिसे समझा वह बन गया नर नारी। माँ की महिमा अजब निराली, जीवन में आगे बढ़ने की, जीवन में आगे बढ़ने की दिखलाई है नई दिशा ज्ञान। जीवन में आगे बढ़ने की दिखलाई है नई दिशा ज्ञान, बनाया हमको ज्ञानी है। माँ की महिमा अजब निराली है, माँ की महिमा अजब निराली है। विद्या विनय विवेक अनुशासन, विद्या विनय विवेक अनुशासन, चरित्र बनाया महान। माँ की महिमा अजब निराली है, माँ की महिमा अजब निराली है। माँ की महिमा अजब निराली, जिसे समझा वह बन गया ज्ञानी है। माँ की महिमा अजब निराली है। अगली कविता है अरे पेड़ मत काटो। अरे पेड़ मत काटो, हरे पेड़ मत काटो, अरे पेड़ मत काटो, तुम रक्षक हो, तुम रक्षक हो, तुम भक्षक नहीं, तुम रक्षक हो, तुम भक्षक नहीं। वे पर्यावरण बचाते हैं, वे पर्यावरण बचाते हैं, वे तुम्हारे प्राण के रक्षक हैं, वे तुम्हारे प्राण के रक्षक हैं, वे तुम्हारे दुश्मन नहीं, वे तुम्हारे दुश्मन नहीं। अरे पेड़ मत काटो, हरे पेड़ मत काटो, वे दुनिया को छाया देते, वे दुनिया को छाया देते, मन ही मन प्रफुल्लित होते, प्रेम एकता का पाठ पढ़ाते। वृक्षों से ही हवा होती पैदा, वृक्षों से ही हवा होती पैदा, इनकी तो कृपा निराली है, यह कितने परोपकारी है। हरे पेड़ मत काटो, अरे पेड़ मत काटो, यह प्रकृति का उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, खुश सहते पहाड़ है, जिनसे मातृभूमि बलशाली है, जिससे मातृभूमि बलशाली है। मानो बड़ा कृतघ्न है, मानो बड़ा कृतघ्न है, अपनी मौज मस्ती में लिप्त है, अफसोस है वे पेड़ काटते हैं, अफसोस है वे पेड़ काटते हैं। अरे पेड़ मत काटो, हरे पेड़ मत काटो। अगली कविता है अपने आप को जानो। अपने आप को जानो, जीवन को आकाश के समान, जीवन को आकाश के समान विशाल और महान बनाओ। जीवन को आकाश के समान विशाल और महान बनाओ, जीवन को पृथ्वी के समान, जीवन को पृथ्वी के समान सहनशील और उदार बनाओ। जीवन को जल के समान निर्मल स्वच्छ बनाओ, जीवन को आकाश के समान विशाल और महान बनाओ। जीवन को अग्नि के समान तेजस्वी और ऊर्जावान बनाओ, जीवन को अग्नि के समान तेजस्वी और ऊर्जावान बनाओ। जीवन को पवन के समान चंचल और गतिशील बनाओ। जीवन बहुमूल्य है, इसे पहचानो, जीवन बहुमूल्य है, इसे पहचानो, अपने आप को जानो। अगली कविता है आओ समाज को ऊपर उठाएं। आओ समाज को ऊपर उठाएं, आओ समाज को ऊपर उठाएं, मानव की शान बनाए, रीति रिवाज के बंधनों से ऊपर उठ

नया बनाए, आओ समाज को ऊपर उठाए, मानव की शान बनाए, आओ समाज की शान बनाए, गौरव गाथाओं तक सीमित न रहे, गौरव गाथाओं तक सीमित न रहे, अपनी प्रभुता में लिप्त न रहे, मानव को मानव समझे, मानव को मानव समझे, समाज की मर्यादाओं को ना ठुकराए, आओ नव परिवर्तन कर, अशिक्षा अज्ञानता को दूर भगाए, आओ समाज को ऊपर उठाए, मानव की शान बनाए, रीति रिवाजों के बंधन से ऊपर उठ कुछ नया बनाए, दहेज प्रथा को जड़ से मिटाकर जन जन को अपना समझे, दहेज प्रथा को जड़ से मिटाकर जन जन को अपना समझे, सहृदय अहिंसा से गले लगाए, आओ समाज का गौरव बढ़ाए, जाति धर्म से ऊपर उठ मानव मूल्यों को अपनाए, आओ समाज का गौरव बढ़ाए, जाति धर्म के ऊपर उठ मानव मूल्यों को अपनाए, प्रेम दया ओ शांति अहिंसा राष्ट्र धर्म पर बलि बलि जाए। कहाँ चला इंसान रे, अगली कविता, कहाँ चला इंसान रे, पापों पापों में ही रमकर मानव बना हैवान रे, बाना पहन सभ्यता का कहाँ चला इंसान रे, पापों पापों में ही रमकर मानव बना हैवान रे, बाना पहन सभ्यता का कहाँ चला इंसान रे, शराब सबाब में यह इंसान आज जा बना शैतान रे, बाना पहन सभ्यता का कहाँ चला इंसान रे, पापों पापों में ही रमकर मानव बना हैवान रे, बाना पहन सभ्यता का कहाँ चला इंसान रे, आओ तुम धन लाओ तेरा घर परिवार बिके, पर पैसे के पीछे इंसान बना बेईमान रे, बाना पहन सभ्यता का कहाँ चला इंसान रे, बाना पहन सभ्यता का कहाँ चला इंसान रे, मानव वहीं सभ्यता का कहाँ चला इंसान रे, बाना पहन सभ्यता का कहाँ चला इंसान रे, सत्य का जला पुतला आज है, झूठ का फैला राज है, झूठ बोले नहीं चलता इस दुनिया का काज रे, बाना पहन सभ्यता का कहाँ चला इंसान रे, बाना पहन सभ्यता का कहाँ चला इंसान रे, बूंद बोली समुद्र से, बूंद बोली समुद्र से तू क्या करता अभिमान, तुम हम जैसे ही कई बूंदों से मिलकर बना है महान, मैं पानी की एक बूंद से ही देती हूँ जीवन आस, मेरे गुण गा गा के पपीहा बुझाए प्यास। अगली कविता है धरती माँ। मेरी प्यारी धरती माँ, मेरी प्यारी धरती माँ, कभी किसी का भेद नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी करते तेरा गुणगान, मेरी प्यारी धरती माँ, कभी किसी का भेद नहीं, कभी किसी का भेद नहीं, नदियाँ कल कल कर बहती पहाड़ों चट्टानों से टकराती, नदियाँ कल कल कर बहती पहाड़ों चट्टानों से टकराती, जीना सिखाती है मेरी राहों पर मेरी प्यारी धरती माँ, पेड़ मकान समुद्र नदियाँ झरने तुझी पर लहराते हैं, सभी किए तू प्यारी माँ, मेरी प्यारी धरती माँ, मेरी प्यारी धरती माँ, तुझसे ही हम अन्न उपजते, सभी का पेट तुझी से भरते, सभी किए तू प्यारी माँ, मेरी प्यारी धरती माँ, मेरी प्यारी धरती माँ। अगली कविता हर युग यही बताएगा, हर युग यही बताएगा, संकट में निर्भीकता खोना कायरता है मूर्खता है, संकट में निर्भीकता खोना कायरता है मूर्खता है, एक बेचारा अकेला दीपक रात भर अंधकार से लड़ता है, तुम इतिहास इनका देखो हर युग यही बताएगा, तुम इतिहास इनका देखो हर युग यही बताएगा, सच्चाई के लिए दोस्तों शीश कटाना पड़ता है, सच्चाई के लिए दोस्तों शीश कटाना पड़ता है। मेरी अगली कविता है चाय की चुस्कियाँ और तुम, चाय की चुस्कियाँ और तुम, चाय की हर चुस्की में एहसास है तुम्हारा, चाय की हर चुस्की में एहसास है तुम्हारा, थके हुए दिल को कोई सुकून मिला तुम्हारा, थके हुए दिल को कोई सुकून मिला तुम्हारा, चाय की हर चुस्की में एहसास है तुम्हारा, कभी महफिल में चाय की प्याली मिल जाती, कभी महफिल में चाय की प्याली मिल जाती, एहसान होता तुम्हारा, चाय की हर चुस्की में एहसास है तुम्हारा, चाय की हर चुस्की में एहसास है तुम्हारा, थके हुए दिल को कोई सुकून मिलता, कभी महफिल में चाय की प्याली मिल जाती, एहसान होता तुम्हारा, तन्हाई ए गुप्तगु खुद से, तन्हाई ए गुप्तगु खुद से मिलने का फरमान होता तुम्हारा, तन्हाई ए गुप्तगु खुद से मिलने का फरमान होता तुम्हारा, बारिश की बूंदों में असम का बागान होता तुम्हारा, बारिश की बूंदों में असम का बागान होता तुम्हारा। अगली है क्षणिकाएँ। वो बोले क्षमा वीरों का भूषण है, वे बोले क्षमा वीरों का भूषण है, ऋषियों का तर्पण है, इंसानियत की पहचान है और मानवता का मान है, मैंने कहा ठीक है लेकिन समाज में इसका क्या स्थान है। वे बोले क्षमा वीरों

0: का भूषण है, ऋषियों का तर्पण है, इंसानियत की पहचान है और मानवता का मान है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन समाज में इसका क्या स्थान है। अगली क्षणिका है, भाई हम तो आशावादी हैं, भाई हम तो आशावादी हैं और सपनों के व्यापारी हैं। आओ आओ नौ वर्ष तुम लाए क्या सौगात, आओ आओ नौ वर्ष तुम लाए क्या सौगात। अगली कविता है, चाय से ही चेहरे की मुस्कान, चाय से ही चेहरे की मुस्कान, सब गमों की एक दवा, सब गमों की एक दवा जिसे पिए हर लुकमान, सब गमों की एक दवा जिसे पिए हर लुकमान। बड़ी आसानी से नुक्कड़ पर यह मिल जाती, बड़ी आसानी से नुक्कड़ पर यह मिल जाती, नींद और थकान जड़ से मिटाती, सब गमों की एक दवा जिसे पिए हर लुकमान। बड़ी आसानी से नुक्कड़ पर यह मिल जाती, नींद और थकान जड़ से मिटाती, बड़े बूढ़े चुस्की लगाते, चाय से ही चेहरे की मुस्कान, चाय से ही चेहरे की मुस्कान जिसे पिए हम ससम्मान, जिसे पिए हम ससम्मान।
1: आप सुन रहे थे अश्विनी गुप्ता से उनकी काव्य रचनाएं हमारे विशेष कार्यक्रम में।

0: एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी खंडवा है। 7:10 होने को हैं। आइए भोपाल केंद्र से सुने प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान अपना।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग वाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज गया पहुंचेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से होगी मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीएसएफ को नई जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वैष्णो देवी धाम के दर्शन किए। प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर बेहतर सुविधाओं के लिए व्यवस्थाओं का अध्ययन जारी। और आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। कल आरसीबी से होगा फाइनल मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग वाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज बिहार के गया पहुंचेंगे। यहां वे महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे दिल्ली पहुंचकर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वहीं सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अहम बैठक होगी, जिसमें दोनों देशों के आपसी संबंधों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को नई और अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। गुजरात के भुज में कल भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई चौकियों का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने ये बात कही। श्री शाह ने बताया कि अब सिर्फ सीमा की रखवाली नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा की नई अवधारणा पर काम होगा। श्री शाह ने कहा,
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे। और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे, ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए बताया कि राज्य सरकार का एक दल यहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने आया है। डॉ. यादव ने कहा कि

0: अकाल मंदिर, ओमकारेश्वर, भोशाला जैसे धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए देश के बड़े तीर्थस्थलों से सीख ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में राष्ट्रीय खरीफ कृषि सम्मेलन में कहा है कि इस बार खरीफ सीजन के लिए जरूरत से 11% ज्यादा बीज उपलब्ध हैं। मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए 1.74 लाख क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार भी तैयार रखा गया है। किसानों को योजनाओं का सीधा फायदा मिले इसके लिए अब तक करीब 9.76 करोड़ फार्मर आईडी भी बनाई जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि तिरुवनंतपुरम के सीमी कंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सीमी ने देश की पहली एज एआई चिप नेत्रा A2000 तैयार कर ली है। ये चिप उन्नत 12 नैनोमीटर तकनीक पर आधारित है। इसका इस्तेमाल निगरानी, ड्रोन, रोबोटिक्स और ऑटोमोटिव जैसे क्षेत्रों में होगा। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार के डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत ये एक बड़ी कामयाबी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाया है। सरकारी तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। किसी भी वितरण केंद्र पर आपूर्ति बाधित नहीं हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम सूर्य घर योजना प्रदेश में रंग ला रही है। प्रदेश में अब तक 1,29,000 से ज्यादा घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लग चुके हैं और 456 मेगावाट से ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। लाभार्थियों को 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी भी दी जा चुकी है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के 6 लाख घरों को इस योजना से जोड़ना है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश ने इस साल गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाया है। 100 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 104 लाख 22 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया है। सरकार की तरफ से 13 लाख से अधिक किसानों को 23,708 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया
2: कि ये गेहूं खरीदने के किसानों की संख्या में मध्यप्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और सर्वाधिक लंबे समय तक किसी राज्य ने गेहूं खरीदी की व्यवस्था जारी रखी तो वो भी मध्य प्रदेश। सर्वाधिक गेहूं उपार्जन वाले राज्य की तरफ से देखता हूं तो गेहूं की मात्रा में भी पंजाब के बाद मध्यप्रदेश दूसरा स्थान है जिसके पास गेहूं का इतना विपुल उत्पादन के बाद उन्होंने परचेसिंग की है।
0: भोपाल में एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने कल पति समर्थ सिंह और सास किरबाला सिंह को 5-5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। सास पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। 12 मई की रात कटारा हिल्स में ट्विशा की मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है जबकि मायके वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ कल परिवार ने ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा में ट्विशा की अस्थियां विसर्जित की। केंद्र सरकार ने पेंच, कान्हा और बांधवगढ़ को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव जल्द ही यूनेस्को भेजा जाएगा। ये दर्जा मिलने के बाद पेंच को अंतर्राष्ट्रीय पहचान के साथ साथ रिसर्च के लिए विदेशी फंडिंग भी मिलेगी। प्रदेश में 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा की तारीखें बदल दी गई हैं। राज्य शिक्षा केंद्र ने कल नई समय सारणी जारी की। पहले ये परीक्षा 1 से 6 जून के बीच होनी थी लेकिन अब ये 16 से 23 जून तक होगी। इसके बाद 24 से 28 जून के बीच कॉपियां जांची जाएंगी। उर्दू के मशहूर शायर और पद्मश्री डॉ. बशीर बद्र को कल भोपाल में श्रद्धांजलि दी गई। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी में हुई शोक सभा में बड़ी तादाद में शायर, साहित्यकार और नागरिक जमा हुए। 28 मई को उनका निधन हो गया था। भारत सरकार

ने उन्हें 1999 में पद्मश्री से नवाजा था। और अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। कल ग्वालियर समेत कई जिलों में बारिश हुई और तापमान एक झटके में 10 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना, नीमच समेत 9 जिलों में ओले और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि कल से ज्यादातर जिलों में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर में कल गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बनाए, लेकिन गुजरात ने लक्ष्य 18 ओवर से पहले ही हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सिर्फ 53 गेंदों पर 104 रन की धमाकेदार पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच बने। कल अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे फाइनल में गुजरात का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बड़वानी में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 2027 तक सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने का काम जारी है। शिवपुरी में कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में टीकाकरण महाअभियान की प्रगति का जायजा लिया। झाबुआ में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर ने इस साल दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने का लक्ष्य तय किया। आगरमालवा में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दोषी पाए गए लोगों पर अपर कलेक्टर ने कार्रवाई की है। अनूपपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई है और 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। ग्वालियर में सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर पीएम सूर्य घर योजना के तहत बिजली बचत का काम किया जा रहा है। डिंडौरी में किसानों को खाद अब ई टोकन प्रणाली के जरिए दी जाएगी ताकि समय पर और आसानी से उर्वरक मिल सके। पन्ना में गर्मियों में पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इंदौर के ग्राम आशापुरा में 10,000 गौ माताओं की देखभाल के लिए एक बड़ी गौशाला विकसित की जा रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: FM 101.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, यह है आकाशवाणी का खंडवा केंद्र। प्रस्तुत है कार्यक्रम चेतना।
1: चेतना कार्यक्रम के श्रोताओं को नमस्कार। और आज के कार्यक्रम में डॉक्टर अदिति शर्मा, जो दंत चिकित्सक हैं, वो फोन लाइन के जरिए हमसे जुड़ गई हैं। डॉक्टर शर्मा, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: डॉक्टर अदिति शर्मा, डेंटिस्ट्री के हलके में इन दिनों इस क्षेत्र में इम्प्लांट शब्द बहुत सुना जा रहा है।
2: देखिए, इम्प्लांट जो है ये मतलब आधुनिक ट्रीटमेंट है, एक उपचार का एक नया तरीका आया है जो पहले तो जनरल बॉडी के लिए भी यूज करते थे, अब वो डेंटल में भी इंक्लूड किया है, दांतों के लिए भी अब हम इसका यूज करते हैं। तो जो इम्प्लांट होता है वो एक तरह का एक स्क्रू होता है जिसको हमें सर्जरी के द्वारा शरीर के जहां भी, जैसे फ्रैक्चर हुआ है या कहीं भी ब्रेक हुआ है, तो वहां पर हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं। तो वो सर्जरी के द्वारा वो एक जॉइनिंग वाली प्रोसेस होती है कि उसको ज्वाइन कर देता है, शरीर के जो भी दो भाग टूटे हुए हैं उसको ज्वाइन करने के लिए हम इम्प्लांट करते हैं। अच्छा। बात करें हम डेंटल इम्प्लांट की, मतलब डेंटल इम्प्लांट मतलब जो भी मटेरियल है, जो हमारा स्क्रू है, उसको हम सर्जरी के द्वारा जो जबड़े की हड्डी उधर हमको इसको डालना पड़ता है। डेंटल इम्प्लांट होता है जिसको हिंदी में यदि हम बोले तो दंत प्रत्यारोपण।
1: प्रत्यारोपण शब्द से एक ऐसा आभास होता है कि फॉरेन बॉडी को हम उसमें प्रत्यारोपित कर रहे हैं, कोई बाहर से कोई चीज, तो क्या बिल्कुल यही ऐसा ही होता है?
2: हाँ जी, ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल एक तरह से फॉरेन बॉडी ही है। तो इसीलिए जब भी हम डेंटल इम्प्लांट करते हैं तो बहुत सारी कंडीशंस होती है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जब सब ठीक होता है उसके बाद ही हम इसको मतलब प्रत्यारोपित करते हैं। इम्प्लांट की जरूरत हमको कब पड़ती है, तो जब भी हमारे शरीर में या हमारे जो जॉ है हमारे मुंह के अंदर एक या बहुत सारे दांत जब मिसिंग होते हैं, किसी रीजन से हम टूट गए हैं, जब हमको हटाना पड़ रहा है या पस बन गया है जिसके कारण से वो दांत बच नहीं पाए और हमको उनको हटा के अलग करना पड़ रहा है, तो पहले

0: क्या होता था कि जो डेंचर होते हैं, मतलब बत्तीसी जिसको बोलते हैं, वो
1: जी
0: हम लगाते थे, या जब हमारा, जब पूरे दांत नहीं होते थे तब हम बत्तीसी लगाते थे,
1: जी
0: और
1: हाँ
0: या जब हमारा एक दांत मिसिंग है या दो या तीन दांत मिसिंग है तब हम आरपीडी बोलते हैं, जिसको रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, जो कुछ ही दांतों को लेकर के हम आइट साइड के दांतों का सपोर्ट लेकर के लगाते हैं, वो
1: जी
0: लगाते थे। या हम फिर फिक्स प्रोस्थेसिस पे यदि जाएं, फिक्स दांत पे जाएं, तो हम ब्रिज लगाते थे।
1: ब्रिज लगाया करते
0: हाँ,
1: थे, राइट
0: तो में हमें क्या करना होता है कि हमें आइट साइड के दांतों का सपोर्ट लेना पड़ता है। तीन दांतों का कैप बन करके आती है, वो ब्रिज बन करके आता है, उसको हमें सीमेंट की सहायता से लगाना पड़ता है।
1: जी हाँ
0: अब उसमें क्या होता है कि हमें अननेसेसरी, जो हमारे अच्छे दांत है, कटिंग करके छोटा करना पड़ता है, तो उन्हें अननेसेसरी हमें छेड़खानी करनी पड़ती है। अब
1: अच्छा
0: जब
1: जी
0: से डेंटल इम्प्लांट आया है तब से ये हो गया है कि यदि हमारा एक दांत मिसिंग है, एक दांत नहीं है, तो हमें
1: जी
0: बस वो एक इम्प्लांट, जो दांत नहीं है वहां पे हमें प्लेस करना है और वहां सिंगल कैप लगाना है। तो
1: ओके
0: इससे बहुत सारे फायदे भी हैं, क्योंकि ये एडवांस टेक्निक है, इम्प्लांट्स बहुत अच्छे, मतलब उसके ऊपर जो कैप लगते हैं वो बिल्कुल नेचुरल अपीरियंस देते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, तो उसमें बार बार हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पेशेंट की कंप्लेन रहती है कि इसको निकाल करके क्लीन करो फिर वापस से लगाओ। ये सब चीजें अब इम्प्लांट आने से, इम्प्लांट पे हम थोड़ा सा ज्यादा जोर देते हैं।
1: जी डॉक्टर अदिति शर्मा, क्या ये इम्प्लांट में किसी किस्म का इन्फेक्शन वगैरह बाद में नहीं होता?
0: इम्प्लांट में देखिए, ये जैसे ये फॉरेन बॉडी है,
1: जी
0: तो जैसे जब भी हम इम्प्लांट करते हैं, तो जैसे हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं उसका प्रॉपर, पहले एक एक्सरे होता है,
1: जी
0: ओपीजी जिसको बोलते हैं, फुल माउथ एक्सरे होता है, जिसमें कि सारे जबड़ा, जबड़े जो है ऊपर नीचे दोनों की हड्डी की डेंसिटी देखते हैं, सीबीसीटी एक टेस्ट होता है,
1: हाँ
0: कुछ ब्लड टेस्ट होता है। तो उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन, सारा डायग्नोसिस करने के बाद ही हम इम्प्लांट के लिए आगे, मतलब अप्रूव करते हैं कि पेशेंट के अंदर वो जाएगा या नहीं। तो
1: जी
0: जब ये सारी चीजें ओके हो जाती है, उसके बाद ही हम उसको प्लेस करते हैं।
1: जी
0: रीइंफेक्शन के चांसेस रहते हैं कुछ कंडीशंस में, बट वो ऐसा है कि 10% चांसेस ही रहते हैं, बाकी 90% ऐसा है कि वो सक्सेस ही रहता है,
1: जी
0: तो इन्फेक्शन के चांसेस कम ही रहते हैं
1: और
0: उसमें।
1: वैसे भी अगर ब्रिज का मामला हो तो भी ओरल हाइजीन अगर ठीक न रहे तो इन्फेक्शन तो उसमें भी हो
0: होता
1: सकता
0: ही है वो, आप ब्रिज प्लान करें या चाहे आप आरपीडी प्लान करें,
1: जी।
0: बाकी उसमें दोनों में आपको ओरल हाइजीन तो मेंटेन करके रखना ही पड़ती है।
1: क्या इसे दोबारा करने की जरूरत पड़ती है कुछ समय बाद, जैसे वो यही
0: नहीं,
1: ब्रेक हो गया तो?
0: ये ब्रेक नहीं होता जनरली, ये सर्जिकल प्रोसीजर है, तो बॉडी के अंदर ही जाता है वो, जॉ बोन में, तो
1: जी
0: इसके दोबारा की बहुत रेयर कंडीशन ही होती है, बाकी ऐसे तो मतलब 90% केसेस में तो ऐसा नहीं होता है कि हमें इसको रिपीट करना पड़े।
1: अच्छा, और इसका इसका खर्च कितना आता होगा, क्योंकि ये अभी इतना कॉमन नहीं है, अभी अभी की टेक्नोलॉजी है, ये खर्च का प्रश्न सबसे पहले आ सकता है।
0: जी देखिए, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, तो सर्जिकल प्रोसीजर में थोड़ा सा खर्चा तो रहता ही है, तो
1: जी
0: अप्रोक्स ये वेरी करता है, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, मटेरियल बेस्ड रहता है ये
1: हाँ
0: आपकी, मतलब सारा जो इन्वेस्टिगेशन में जब हम ओपीजी देखते हैं या सीबीसीटी की रिपोर्ट्स आती है, आपकी हड्डी की डेंसिटी कितनी है, ये सब देख करके कि कौन सा इम्प्लांट आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है,
1: जी
0: कितनी आपकी हड्डी की डेंसिटी है, वो उसके बेसिस पे ही इम्प्लांट चूज करते हैं अपन। तो
1: अच्छा
0: कॉस्ट वाइज भी वैसे ही वेरी करता है, ये 20,000 से स्टार्ट होता है, तो फिर आपके जैसे भी, मतलब जो भी आपके लिए सूटेबल रहेगा बॉडी के लिए, उस पे वो
1: हाँ,
0: जाता है।
1: और इसकी केयर, इसकी देखभाल क्या हम दूसरे दांतों की तरह कर सकते
0: कर
1: हैं, सब
0: सकते
1: कुछ खा सकते हैं?
0: जी, जी आप बिल्कुल सब कुछ खा सकते हैं, बस थोड़ी सी कंडीशंस ये होती है कि आपको थोड़ा सा ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखना
1: जी
0: पड़ता है, जिससे, क्योंकि ओरल हाइजीन तो बेटर ही, मतलब मेंटेन करना जरूरी है, चाहे इम्प्लांट हम प्लेस करें चाहे नहीं भी करें, बोन कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमको, इसका क्राइटेरिया रहता है, सब
1: जी
0: ओके होता है देन तभी हम इसको प्लान करते हैं।
1: आपने गम की कंडीशन और बोन की कंडीशन की बात की तो मेरे जहन में आया कि किस उम्र से किस उम्र तक आप इसे सजेस्ट करेंगी?
0: देखिए, ये जनरली जो ग्रोइंग जो चिल्ड्रंस होते हैं, जिनके फेशियल्स बोन अभी ग्रो कर रही है,
1: हाँ
0: उनमें हम सजेशन नहीं देते हैं। कुछ क्राइटेरिया होते हैं वही चीज के, आपकी बोन डेंसिटी कैसी है, कोई मेडिकल कंडीशंस तो नहीं है,
1: हाँ
0: डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है ये, बीपी या कुछ हार्ट सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई है, तो ये कुछ चीजें हैं। सब चीजें जब ओके होती है तो देन हम इसको कर सकते हैं, मतलब 17 साल से अपन इसको स्टार्ट कर सकते हैं,
1: जी, मतलब वयस्क होना चाहिए व्यक्ति
0: वयस्क
1: को।
0: होना।

0: जी
1: और ये इस पूरे प्रोसेस में कोई व्यक्ति आपके पास आता है और उसके बाद कितने दिनों में अब सामान्य खान पान इम्प्लांट की बात कर सकता है?
0: देखिए, ये जो इम्प्लांट मतलब जब प्रोसीजर होता है सर्जरी का, तो इसमें 7 डेज तक तो हम थोड़ा सा सॉफ्ट डाइट का ही बोलते हैं।
1: जी
0: देन उसके बाद फिर आप नॉर्मल च्यूइंग वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि जब भी इम्प्लांट हम प्लेस करते हैं तो जो प्रॉपर पूरा तरीके का जो हीलिंग टाइम होता है, जिसमें इसकी बोन के साथ अच्छे से एडेप्ट हो जाए, ये
1: जी
0: 3 to 6 month का टाइम होता है।
1: अच्छा
0: तो ये बाकी आप जैसे उस मतलब जैसे 7 दिन हो गए, उसके 1 month या 1.5 month के बाद फिर आपको क्राउन के लिए हम बुलाते हैं,
1: जी
0: टेम्परेरी क्राउन देते हैं, फिर 3 months के बाद आपको फिर परमानेंट क्राउन दे देते हैं
1: यानी क्राउन यानी उस दांत के ऊपर लगी हुई
0: ऊपर
1: टोपी।
0: द। जी, कैप
1: जी
0: जिसको
1: जी
0: बोलते हैं।
1: कैप
0: जी
1: बोलते हैं जैसे, राइट
0: जी
1: जी। अब एक अंतिम प्रश्न
0: जी
1: और जो सबके जहन में आता है कि
0: जी
1: इस इम्प्लांट में सफलता का प्रतिशत कितना है?
0: देखिए, ये लगभग 70 से 80% तो सफलता रहती है, बट
1: अच्छा
0: कुछ ही कंडीशन ऐसी होती है जिसमें उसके फेलियर के चांस होते हैं। बाकी तो
1: अच्छा
0: इसमें मतलब किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता है, कि फेलियर के चांसेस कम ही रहते हैं
1: कम नहीं
0: यदि
1: रहता है।
0: प्रॉपर अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से हाइजीन मेंटेन हुआ है या प्रॉपर स्टरलाइजेशन के साथ सारी चीजें करी हैं, तो वो सक्सेस रेट अच्छा ही होता है।
1: श्रोताओं, आज दंत चिकित्सा में जो नवीनतम तकनीक इस्तेमाल हो रही है उसके संबंध में आपको जानकारी देने की हमारी इच्छा थी और इस इच्छा को पूरा किया दंत चिकित्सक डॉक्टर अदिति शर्मा ने। हम डॉक्टर अदिति शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: धन्यवाद सर,
1: नमस्कार।
0: नमस्ते।
2: श्रोताओ, आप सुन रहे थे कार्यक्रम चेतना, FM 101.2 MHz पर। यह है आकाशवाणी खंडवा। आप प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे।

तू जो मेरे सुर में सुर मिला दे, बड़ी सुरीली ख्वाहिश है। गीतकार रविंद्र जैन साहब। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम के लिए मैं कुछ गीत चुन रहा था तो जहन में बशीर अद्र साहब और उनके शेर ही घूम रहे थे। एक बड़ा शायर हमारे बीच से चला गया। मुझे उनसे हुई मुलाकात और उस मुलाकात के दौरान एक कागज पर मुझे उन्होंने लिख के दिया उनका एक शेर याद आ गया, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो। और उनका एक और शेर खासकर उन लोगों के लिए जो अपना गम छुपाए रखते हैं, अजीब शख्स है नाराज हो के हंसता है, मैं चाहता हूं वो खफा हो तो खफा ही लगे। जिंदगी का एक बहुत बड़ा वक्त उन्होंने भोपाल में ही गुजारा था और बशीर साहब से अरसा पहले भोपाल के एक बड़े शायर बड़े मशहूर थे, न केवल अदबी दुनिया में बल्कि फिल्मी दुनिया में भी, असद भोपाली साहब। रफी साहब की आवाज में उनकी यह गजल सुनते हैं, तेरे प्यार ने मुझे गम दिया तेरे गम की उम्र दराज हो, वो जमाना आए खुदा करे मेरे प्यार पर तुझे नाज हो।

श्रोताओं, आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से विद्याधर मुले के साथ आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम सुनहरे पल। श्रोताओं, आज के दौर में और शायद हर दौर में वही सफल माना जाता है जो व्यस्त है अपने काम में, और अपने काम के अलावा अगर वो किसी दूसरे के काम में मदद करता है तो उसे सेवाभावी माना जाता है। लेकिन अपने और दुनिया के कामों में ये जो मसरूफियत है, ये व्यस्तता है, ये थका देती है और फिर ख्वाहिश होती है फुर्सत की। और इसी इच्छा को गुलजार ने एक गीत की शक्ल दी है और उस गीत को भूपेंद्र की आवाज ने हम सबके मन की आवाज बना दिया। श्रोताओं, लफ्जों के साथ चलिएगा, फुर्सत की ख्वाहिश और बढ़ जाएगी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: फोन करें गीत सुने।
2: सर फोन लगा लगा के

0: बाहर न निकले।
1: अपने श्रोताओं के संग दिलचस्प बातें, मधुर गीत, सुनिएगा जरूर इस रविवार प्रातः 10:05 पर। फोन करें, गीत सुने।
2: मुझे कहना कहना तुझसे है कहना।
3: श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आपने बशीर साहब के शेर सुने, रविंद्र जैन, असद भोपाली और गुलजार साहब की कविताएं भी सुन ली। लेकिन हर मंशा, हर इच्छा, हर ख्वाहिश ऐसी शायराना अंदाज में ही हो, ये जरूरी तो नहीं है। और आनंद बख्शी साहब की सरल बानी ऐसी होती है कि सभी के मन को छू जाती है। सुनिए, शायद आपको भी छू जाए।

श्रोताओं, कुछ सुनहरे फिल्मी गीत सुनने की ख्वाहिश में सुनहरे पल आपने बिताए विद्याधर मुले के साथ। नमस्कार।

0: FM 101.2 MHz पर यह है आकाशवाणी खंडवा। 8 बजे हैं, आइए सुने दिल्ली से समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
6: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
5: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
7: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
5: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं।

0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के छठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमा के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि

0: उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल SAD को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर 3rd स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
1: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजीलॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रीवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम हो

0: की बारिश, राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मानसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा, हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 101.2 MHz पर श्रोताओं, ये है आकाशवाणी खंडवा, प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं शायर बशीर बद्र की दो गजलें। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। कलाम बशीर बद्र का, आवाज घनश्याम वासवानी की।

मुझे इश्तिहार से लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियां, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो, यूं ही बेसबब ना फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो। बशीर बद्र की गजल, आवाज ए हरिहरन की।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में हमने आपको सुन पाई घनश्याम वासवानी और ए हरिहरन की आवाज में बशीर बद्र की गजलें।

जी हाँ श्रोताओं, आपने चुना है 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी खंडवा को। आपके प्यार का साथी निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

0: FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी खंडवा। आपको सुनवाते हैं श्रोताओ आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।
1: आपके मीत ये गीत।
0: तो एक बार फिर आप सभी को विद्याधर मुल्ले का नमस्कार। बहुत खूबसूरत गीत आपके लिए आज के इस कार्यक्रम के लिए चुने हैं और हमारे बहुत सारे श्रोताओं की मेल भी हम तक पहुंच गए हैं, कुछ पत्र भी हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पत्र धर्मपुरी धार से शेख वही मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर, अयान, फैजान, सुमेरा, कशिश, सायमा, हसनैन और खुशी। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदी, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, बुलढाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला, सुमेद और साधना पवन पाटिल। इंदौर के श्रोता हैं हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी, मोहम्मद रफी और बबलू मंसूरी। मेरठ कैंट से कविता राधा नामदेव, संजय ढींगिया, संदीप मक्कड़, अनिल और दर्शन। बराड़ा अंबाला से रवि कुमार, राहुल, रंजीत, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरु शुद्ध राहुल। और दिल्ली के हमारे श्रोता हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल। सनावत से मेल भेजने वाले हैं हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, गोल्डन केपी चौहान, दीपक, सचिन, कृष्णा, विराज, अर्णव, कृतिका और प्रभा कटारिया। मैसोल सीतामढ़ी के श्रोता हैं अकरम हुसैन, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा कलेर बिहार से, मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन पाकुड़ झारखंड से, उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किशु, ताशु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद, बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा, गोरावा के लो से नंदलाल राजपूत, मनुका, नंदिनी और उनके साथी, इंदौर से अनिल कवचाले, सभिया और सुषमा, आनंद जोशी, तनुजा, ध्रुवी और फाल्गुनी जोशी। खंडवा से मोटक माफी के हमारे श्रोता हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मन, मानस और कनिका पटेल। दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन, अमन और दीपांशु। चरोदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन सिद्दीकी, जीशान, शाहनवाज और उनके परिवार वाले। राजकोट से जूली, जगदीश गुजराती, कंचन, कुसुम, प्राची और प्रवीण पुजारी। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती, पूजा पायल और उनके साथी। मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, निवान, सौरभ और साइना और मैंडी शर्मा, सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, लोकेश जोशी, शिव कुमार शर्मा, हसनिका जोशी, वैदेही, अंकिता आपने भाटापारा से ख्वाहिश भेजी है। अनूपपुर के हमारे श्रोता हैं जयवंती केवट, ममता मार्कंडेय, संजय और किट्टू खंडवा से, धनोरी तेलीवाला से, निसार सलमानी, नौशाद, आलिया और आयान, दमदम कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा, अजय, तनुश्री, रिमी, अवंतिका, चुमरी तरैया से अभय कुमार सनातनी, शिवानी, प्रियंका, मुन्नी और जयप्रकाश

साथ जिया, आयुषी और अनिरुद्ध और बसंत लाल, जवानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति और बिपिन, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल, बागामुड़ा छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी, प्रकाश और गायत्री, यशवर्धन और यशस्वी, दत्रेंगी के श्रोता हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र, इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति, प्रयाग और देविका चौधरी,

दत्रेंगी के श्रोता हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र। इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति प्रयाग और देविका चौधरी। मलकापुर से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक, नीना और स्वप्निल धाड़े। बीड़ से विकास बंसोड़े, रेखा, अदिति और वैभव। रजौनी उत्तर प्रदेश से उदयपाल, जयहिंदपाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश और बड़वा के श्रोता हैं प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप सिंह और उनके साथी। मलकापुर के श्रोता संजय पाटिल, उषा निवृत्ति और संजय कुमार चौहान। शेगांव से अहमदपुर खेगांव के श्रोता हैं कैलाश फूलमाली, दीपक, समर, सिलोदा से सेवक राम राठौड़, सुभाष और राजा। महुआ से उदयपाल, जयहिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा। बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद चौहान, जय नारायण, तरुण और प्रतीक। जमशेदपुर से हरजिंदर भाटिया, एंजल, सोनू और पप्पी भाटिया। जामली कला से माणक चंद राठौड़, पुष्पा, प्रियांशी और दिव्यांश। छेगांव देवी से अशोक वागे, वंदना और कान्हा वागे। बीड़ से किशन सपकाल, आशा, सोनिया और विशाल। गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा, पायल और उनके साथी। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं रिजवान खां, आयशा, सबीहा, नस और रेहान। आइए आपकी ख्वाहिश पर आपको सुनवाते हैं फिल्म सीमा का गीत, आवाज मोहम्मद रफी की।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: पहला गाना रफी साहब के साथ शारदा की आवाज थी और अगले गीत में लता जी की आवाज। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं हमारे श्रोताओं के नाम। रंगवारा सनावत से दगड़ू सेन, धर्मेंद्र, श्रीराम, कलाबाई, सावित्री, निशा, आयुष, दीपांशु और लक्षिता। खंडवा से राजेंद्र कटारे, अनिता उज्जवल और रमितांश कटारे, हीरामन शिंडे, शीला देवी और सिद्धार्थ गोंडा ने अमरावती से, ये ताला महाराज से शंकर लाल जायसवाल, गणेश, शुभम और दुर्गेश्वरी, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी और जीविका के साथ सानिया, पुणे से अजय सोनावणे, करिश्मा, अविका और विशाखा। अकोला के श्रोता हैं सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद और गौरव मंदूरकर, कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत और सोनम वर्मा, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी, नांदूरा से दोंडू बातुरकर, मंगला, विवेक, भारती, प्रतीक्षा और कोमल समाधान बातुरकर, आशा नारंग, सुरेश और सोनाली नारंग, सहारनपुर से जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका, गव्या और सुच्चा सिंह पाठक, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल और साथी, रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव और भानुप्रिया किशनगंज बिहार से, जोधपुर से रमेश चंद चौहान, मोहिनी, कल्पित, गर्वी और हिमांश, सनावत से मोहम्मद जावेद खत्री, सबीना खत्री, मोहम्मद जैद खत्री, मुनीरा, मोहम्मद इकबाल, सायना रानी और बेनू खत्री, जालना से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन और रामभाऊ तांदले, निजामाबाद तेलंगाना से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम और उनके साथी, विजय सुरलकर, रत्नमाला और आरती कुमारी मोताला महाराष्ट्र से, दत्तरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना, जनकपुर से पिंटू और राजेंद्र सिंह ओबेरॉय, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, सायमा नवाज और अहमद के साथ चाहत, लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज, राधेश्याम शर्मा, इंद्रिया और सार्थक शर्मा सिरसा हरियाणा से, छोटी बलिया से अहमद कुमार, अहमद भाई फूलवाले, दुखनी इकबाल और इमरान, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल और चंपा साहू, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू और रौनक।

कोरापुर से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, पंकज और मोहिनी के साथ ऋतिक, बलवीर सिंह, नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज, नवेद, सुहेल और रशीद वारसी एटा से, खंडवा से राधेश्याम यादव, प्रभा, शालिनी, कामेश और राहुल, बड़वा से भारती कुशवाहा, मनीष और पार्थ कुशवाहा, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, योगिता, रंजन और हेमेंद्र, वाशिम महाराष्ट्र से विठल सुरोशे, सुषमा, परिधि और मायरा, पेपरलोड छत्तीसगढ़ से दीपेश, पूनम, ज्योति और शिवांश, बबलेश पवार, डेनी और मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, बाबूलाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा और उनके साथी, डेरा पाटन गुजरात से धीरज बी रवारी, ओंकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन, निशा, सपना, ओम, द्वारकी बाई, इंदौर से गिरधारी लाल चौधरी और मनीषा चौधरी, कौसर बी पवार, हसीना बीवी और अलमाज बानो के साथ सबीना जहीर पवार खंडवा से, और बिलासपुर का ये मेल है मुकेश गोस्वामी, मधु, आशीष, शिवन्या और मुन्नू गोस्वामी। आइए सुने लता मंगेशकर की आवाज में साहिल उद्यानवी का गीत, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत है फिल्म धनवान।

0: हमने सुना लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में फिल्म धनवान का गीत। और अब बात हमारे श्रोताओं की।
1: फोन करें, गीत सुने।
2: सर फोन लगा लगा के सर्दी में पसीने में तर बतर हो गया हूँ, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। विशाल

0: बाहर न निकले।
1: अपने श्रोताओं के संग दिलचस्प बातें, मधुर गीत। सुनिएगा जरूर इस रविवार प्रातः 10:05 पर। फोन करें, गीत सुने।
2: मुझे कहना।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया नारंग मंडी डबवाली से, सहारनपुर से जॉन डेकैस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस, खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, सनावत के श्रोता हैं अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बोडाना, खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु और मुकेश जगताप, लेवई से गुलाबदास माणिकपुरी, राजा दास और रानी माणिकपुरी, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबीय, राधिका, अनिष्का और तन्मय, सतीश अनेजा और विमला अनेजा चंडीगढ़ से, वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती, उदयपुर से बाबू और भारती देवी, विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्विनी माई और शौर्या, श्रेयस, अंकिता, अनिकेत, कोल्हापुर महाराष्ट्र से, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नाहोकर, निर्मला, विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान और आशीष मुहेकर, कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी, दुविधा नेवा से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय, मलकापुर से संजय पाटिल और उनके साथी, बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, प्रिंस और ध्वनि के साथ प्रणीता और टुकटुक गवाणकर, खंडवा से ठाकुर भवानी सिंह बैस, रिया, रोहन और अंगद ठाकुर, बहलोल नगर राजस्थान से प्रेम सिंह वड़वाल, सुखवीर, काजल, लखवीर, चिंदू, प्रवीण, शीतल, नवीन रंगीला, निशान अनमोल और चिटकू मटकू, बोरखेड़ा पितरामल से विनोद मुणत, नेहा, दीपक और चेतन नाहटा, खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता, गौरव, ईशान और कार्तिक, सरदेना मेरठ से अनिल जैन, संयम, मुस्कान, जिव्यम, भव्य जैन, गंडई टिगरी पारा छत्तीसगढ़ से जागेश्वर देवांगन,

कचरी देवांगन के साथ दीपक और ऋचा देवांगन, पंढरपुर से प्रशांत शिंदे, सुनीता यशराज और कृष्णा खोड़की, रजोनी महोबा से उदयपाल, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश और उनके परिवार वाले, अंकित कांगड़ा, मोनी, प्रिंस सीताराम और साहिल हरियाणा से, और दुर्ग के श्रोता आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइड़े, वसंतराव और तुषार करांगले। प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आशा भोसले की आवाज फिल्म उमराव जान।

0: फिल्मी गीतों का हमारा कार्यक्रम आपके उम्मीद ये गीत। नमस्कार श्रोताओं।
1: आपके उम्मीद ये गीत।

FM 101.2 MHz पर ये आकाशवाणी खंडवा है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

आपने ट्यून किया है भारत नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में।

चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। ये प्यारा सा गाना भी आप सुन रहे थे कदर टू फिल्म से, विशाल मिश्रा, नीति मोहन और साथियों की आवाज़ें, गीतकार थे सईद कादरी और संगीतकार मिथुन। दोस्तों आज है इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। इसका उद्देश्य आलू के पोषण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा में उसके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आलू विश्व की प्रमुख खाद्य फसलों में से एक है, ये हर आय वर्ग के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। भारत सहित अनेक देशों में आलू की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, ये किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक है। आलू से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं जैसा कि हम लोग रोज खाते भी हैं, इसलिए इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। आलू की खेती और उससे बनने वाले नाना प्रकार के व्यंजन आजीविका का महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराते हैं, इसीलिए इस वर्ष की थीम भी शायद यही बात कह रही है। इस वर्ष की थीम है वेयर पोटैटोज ग्रो लाइवलीहुड्स फ्लरिश। तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ा जाए और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज में पिंटू की पप्पी फिल्म का गाना। रमन रघुवंशी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा डॉक्टर निट्स ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का।

0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए रश्मि रॉकेट फिल्म का गाना। आवाजें हैं भूमि त्रिवेदी और साथियों की, कौशल मुनीर के बोल और तर्ज अमित त्रिवेदी की।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक, और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश देहाती डिस्को फिल्म से दिव्या कुमार की आवाज़, प्रणव वत्स ने लिखा इसे और संगीतबद्ध किया है गणेश आचार्य ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: बतौर विलेन भी नजर आए।
1: मैं थूकता हूं तेरी सूरत पे, थूक कर दिखाऊं? हवेली पे आ जाना, कल यहां पे हजारों लोग होंगे, पूरी फोर्स बदलवा के रख दूंगा मैं, हाहाकार मचा दूंगा।
2: क्या हाहाकार? तेरे बाप का राजा क्या?
3: क्वाइट विक्रम, मामा ठाकुर से गलती हुई है।
2: क्या बात कर रहे सर?
1: ये बात मैं दिल्ली तक लेकर जाऊंगा।
2: चलिए अभी दिल्ली।
0: बतौर चरित्र अभिनेता भी, बतौर कॉमेडियन भी।
4: ए खालिद भाई, मेरा नंबर है।
5: अरे यार तू दोस्त है अपन का, मैं गया तू गई की बात?
4: ना ना, दोस्त है तो घर पे आ।
5: क्या बात करता है, सिर्फ 50 रुपया? ये तो बहुत कम है यार, तू टेंशन मत ले यार, कोयला ले और 50 के आगे एक जीरो लिख डाल, 500 हो जाएगा, बात खत्म।
6: क्या बात सु? खालिद भाई मेरी बीवी क्या?
5: अरे सॉरी सॉरी, ये तो बहुत बुरा हुआ, सॉरी।
6: एक बार ये लिखने वाला खालिद भाई मेरे हाथ में आ जाए, मैं उसकी डेथ सर्टिफिकेट लिख डालूंगा, देखना।
5: मेरे को मालूम है किसने लिखा है।
0: और उन्होंने रंगमंच पर भी अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाई। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम सलाम कर रहे हैं जाने माने अभिनेता परेश रावल को।

परेश रावल का जन्म 30 मई 1950 को मुंबई में हुआ था। उनका परिवार जुहू में रहता था और उनका एडमिशन वहां जुहू स्कूल में करवा दिया गया। जब वो 11-12 साल के थे तो स्कूल के मंच पर अभिनय करने लगे और जुहू स्कूल की प्रिंसिपल ने उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने नन्हे परेश से कहा कि वो अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मंच पर वो अपनी अभिनय प्रतिभा की जौहर दिखाना जारी रख सकते हैं। स्कूल की पढ़ाई इसी तरह से चलती रही। रंगमंच और पढ़ाई को किसी तरह से परेश रावल ने बैलेंस किया और फिर मुंबई के नरसी मुंजी कॉलेज में पढ़ने लगे। यहां के प्रिंसिपल ने भी परेश रावल की अभिनय प्रतिभा को समझा और उनके साथ सहयोग किया, यानी उन्हें कॉलेज के लेक्चर्स छोड़ देने की अनुमति मिल गई क्योंकि वो अपने कॉलेज के लिए थिएटर किया करते थे। परेश रावल ने अपने कॉलेज को कई प्रतियोगिताओं में जिताया। उसके बाद 1973 आया जबकि परेश रावल ने पेशेवर थिएटर ज्वाइन किया। इंडियन नेशनल थिएटर के बैनर तले उन्होंने अपना पहला प्ले किया जिसका नाम था वेन छे मौत। ये वो दिन थे जब परेश फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे। वो थिएटर की दुनिया में खुश थे क्योंकि यहां उन्हें अपने मन मुताबिक एक्टिंग करने मिल रही थी। लेकिन फिर उनकी नजर पड़ी नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं के काम पर और तब उन्हें यह एहसास हुआ कि थिएटर के अलावा फिल्मों में भी अभिनय की दुनिया का विस्तार है। और तकरीबन 4-5 साल बाद सन 1978 से 1980 के बीच परेश रावल ने यह फैसला किया कि उन्हें फिल्मों की दुनिया में जाना है। फिल्मी दुनिया में संघर्ष करना शुरू किया। श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, कुमार साहनी जैसे कला फिल्मों के निर्देशकों से उन्होंने समय समय पर मुलाकात की और बताया कि वो फिल्मों में काम करने के इच्छुक हैं और फिलहाल थिएटर में सक्रिय हैं। लेकिन परेश रावल का काम नहीं बना।

अब परेश को ये समझ में आ गया था कि फिल्मों में उनके लिए फिलहाल तो जगह नहीं है। वो थिएटर में अपना पूरा ध्यान लगा रहे थे। एक दिन की बात है, मुंबई के मशहूर पृथ्वी थिएटर में परेश रावल के किसी नाटक का शो चल रहा था। जाने माने प्रोड्यूसर करीम मुरानी उस शो को देखने आए और उन्होंने नेपथ्य में जाकर परेश रावल से भी बात की और बाद में निर्देशक राहुल रवेल से परेश के नाम की सिफारिश की। राहुल रवेल उन दिनों फिल्म बना रहे थे अर्जुन, और सन 1985 में परेश रावल को फिल्म अर्जुन के लिए साइन कर लिया गया। शूटिंग का पहला दिन था, पहली बार परेश रावल कैमरे का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपना टेक इतनी अच्छी तरह से दिया कि निर्देशक राहुल रवेल ने कहा, परेश जी अब आप मेरी हर फिल्म में काम करेंगे। और इस तरह से परेश रावल थिएटर की दुनिया से होते हुए फिल्मों में चले आए। धीरे धीरे परेश रावल ने फिल्मी दुनिया में अपने पैर जमाने शुरू किए, लेकिन इन दिनों वो नाटक करते चले जा रहे थे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, सन 1976-77 का जमाना था। परेश रावल एक गुजराती नाटक कर रहे थे ठोकर, जो पीटर श्वाफर्स के नाटक इक्वल पर आधारित था, और इन दिनों उनकी मुलाकात हुई मॉडल और अभिनेत्री स्वरूप संपत से। परेश रावल को स्वरूप संपत से प्यार हो गया, लेकिन दिक्कत यह थी कि परेश रावल का ताल्लुक एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार से था और स्वरूप संपत एक अंग्रेजीदा परिवार से आई खूबसूरत मॉडल, मिस इंडिया और एक बेहद खूबसूरत नाजुक शख्सियत थी। दोनों का कहीं कोई मेल नहीं था। परेश कहते हैं कि ये उनके लिए सपनों जैसे दिन थे। आखिरकार एक दिन परेश रावल और स्वरूप संपत ने शादी कर ली।

0: परेश रावल कहते हैं कि फिल्मों में अभिनय के लिए अगर हिंदुस्तानी सिनेमा के कोई आदर्श हैं उनके लिए तो वो हैं बलराज साहनी, नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी। परेश रावल का ये भी मानना है कि अभिनय उन्हें बड़ा ही दिलचस्प करियर लगता है क्योंकि एक्टिंग की दुनिया में एक जीवन में कई जीवन जीने का मौका मिलता है। अर्जुन के बाद परेश रावल को फिल्मी दुनिया में अपना नाम अच्छी तरह से कमाने का मौका मिला तो वो थी महेश भट्ट की सन 1986 में आई फिल्म नाम। इसमें भी परेश रावल ने विलेन का रोल किया था। इसके बाद तो परेश रावल ने कई फिल्मों में तरह तरह के रोल किए। कभी वो बतौर विलेन नजर आए, कभी चरित्र अभिनेता के तौर पर, और कभी आपको हंसाते हुए नजर आए कॉमेडी करते हुए।
1: विश्वजीत, हाँ बोल, इसमें कौन सी साड़ी पहननी है, है?
2: पता नहीं इनकी नाम भूलने की बीमारी कब जाएगी। इतनी सारी साड़ियाँ लेकर क्या कर रहे हो?
1: अरे भाई, कल तुमने जो 15-20 साड़ी खरीदी थी ना, है ना, तो मैं ये पूछने आया हूँ कि इसमें कौन सी साड़ी को इस्त्री मारनी है। डार्लिंग विश्वजीत,
2: परमजीत।
1: कौन परमजीत?
2: मेरा नाम परमजीत है जिससे तुमने शादी की है।
1: अभी अभी सोना बेटा, तुम्हारी बात को बोलो ना। अच्छा क्या बात, बात में चिल्लाते रहने का है?
3: ओहो डैडी, मेरा नाम सोना नहीं मोना है।
1: ये साड़ी की उलझन में मैं इसका नाम भी भूल गया, परिमल।
4: डैडी जी, मेरा नाम परिमल नहीं, अनमोल है।
1: ए यार, तेरे को क्या हो गया चुनीलाल?
2: मणिलाल।
1: कौन मणिलाल?
2: तोड़ा नाम मणिलाल है, मणिलाल पटेल।
1: ये नाम मैंने कब रखा?
2: बचपन से।
1: बचपन से? बचपन से मेरा ये नाम है, और मुझे अभी बताती हो तुम? ले, अभी मैं याद रखूंगा, मेरा नाम मेथीलाल है बस।
2: ओ जीसस।
1: जीसस, अभी तुमने बोला ना मेरा नाम मेथीलाल है, अभी जीसस
2: की। गेट आउट।
0: परेश रावल की सबसे मशहूर कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी। परेश मानते हैं कि हेरा फेरी की सफलता का सारा श्रेय जाता है इस फिल्म के लेखक नीरज वोरा को, जिन्होंने कॉमेडी को बड़ी अच्छी तरह से निभाया था।
5: भैया, आप गांव में घर है ना आपके?
6: नहीं है। क्यों
5: नहीं? क्योंकि अगर कल शाम ने आपको घर से निकाल दिया है? तो मेरा तो ठीक है, आप इस उम्र में कहां कुत्ते की तरह भटकोगे।
7: देख राजू, जबान को लगाम दे, समझा?
5: देखा, चोर की दाढ़ी में तिनका।
6: सच बात बोलता तो मेरे को कोरा कागज पे अपना दस्तखत दे दे रे बाबा।
7: आपको मुझ पे भरोसा नहीं?
5: ये इसके दिल में खोट है।
7: तेरे दिल में खोट है? मैं तो किराया देकर रहता हूँ, तू तो मुफ्त में रहता।
5: हाँ तो मुफ्त में रहता हूँ तो क्या हुआ, मैं दस्तखत करने को तैयार हूँ।
7: तो मैं भी दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ।
5: हाँ तो करना तू।
7: हाँ तो तू भी करना।
5: हाँ तो कागज लेके आना तू।
7: तू कागज ले।
5: अरे मैं क्यों लेके? तुम दोनों बाहर जाओ, पेपर लेके आओ, जाओ।
6: इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले।
5: हेलो, पेपर पे साइन किया है, इसने अभी तक नहीं किया, खोट है इसके दिल में।
7: करता हूँ ना, साइन कर रे बाबा, साइन कर। तू कर रे साइन, साइन कर।
8: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
7: क्या हुआ? आपको गाना सुनाई दिया?
5: गाना? ये सब बहानेबाजी है, मैं चैलेंज मार के बोलता हूँ ये साइन नहीं करने वाला।
7: ये तो साइन कर रहे बाबा, साइन करना, जल्दी साइन कर रहे, साइन कर।
8: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।

0: आप गाना नहीं सुना दे रहा?
1: कौन सा गाना
0: साफ सुनाई दे रहा है?
2: ये गुरु घंटाल आदमी है, साइन नहीं करने वाला। मैं कहता हूँ इसका बोरिया पिस्तौल उठाओ, बाहर फेंक दो इसको।
3: ये तो साइन कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, गाने गाने लगाए ले, साइन कर रहे हैं गाने।
4: हेलो
2: हेलो देवी प्रसाद।
3: नहीं देवी प्रसाद नहीं है, तुम क्या करोगे?
2: सर वो मेरी मछली का क्या हुआ?
3: वो तो मैं खा गया।
2: खा गए?
3: हाँ, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया।
5: बतौर विलेन परेश रावल अपनी दो फिल्मों को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, एक है फिल्म डकैत और दूसरी फिल्म कब्जा। आज परेश रावल 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं और एक कलाकार के लिए सबसे मुश्किल होता है अपनी कुछ प्रतिनिधि फिल्मों का चुनाव करना। लेकिन अपने एक इंटरव्यू में परेश रावल ने अपनी पसंदीदा फिल्मों के बारे में बताया है। उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है केतन मेहता की फिल्म सरदार, जिसमें उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार निभाया था। परेश रावल से जब पूछा गया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने तैयारी कैसे की, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल से तो वो मिल नहीं सकते थे, वो इस दुनिया में नहीं है, तो परेश का जवाब था कि उन्होंने असंख्य तस्वीरें उनकी देखी और उन तस्वीरों के जरिए ये अंदाजा लगाया कि सरदार पटेल किस तरह से बोलते होंगे, किस तरह से चलते होंगे और उनका स्वभाव किस तरह का होगा। इसके अलावा उन्होंने इस अभिनय के लिए बहुत सारी रिसर्च भी की।
6: फिर वही बात, हम यहाँ पे आजादी की बात करने आए हैं, बंटवारे की नहीं। और अगर बंटवारा होना ही है तो उसका निर्णय एक आजाद देश के आजाद लोग करेंगे, अंग्रेज सरकार नहीं।
5: पूजा भट्टी की फिल्म तमन्ना को वो अपनी बहुत महत्वपूर्ण फिल्म मानते हैं, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने एक वृहन्नला का, एक हिजड़े का किरदार निभाया था। परेश ये कहते हैं कि ऐसे किरदार भी मानवीय होते हैं, उनका अपना संघर्ष, उनकी अपनी तकलीफें होती हैं और इस फिल्म के जरिए उन्होंने इस तरह के चरित्र की तकलीफों को सिनेमा के पर्दे पर जीवंत कर दिया था।

0: हीरा फेरी फिर हीरा फेरी, आंखें आवारा पागल दीवाना, गरम मसाला, दीवाने हुए पागल, मालामाल वीकली, गोलमाल, हलचल, छुप छुप के, भागम भाग, शंकर दादा, भूल भुलैया, वेलकम, मेरे बाप पहले आप, दे दनादन और हंगामा जैसी ना जाने कितनी फिल्में हैं जिनके जरिए परेश रावल ने आपको हंसाया है।
1: और नाचते नाचते तुम्हारे पांव कहां पड़ रहे थे और घुंघरू किस ताल में बज रहे थे वो मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। अब जब तुम्हारी चोरी सामने आ गई है तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा कर लौंडे के साथ गुलछर्रे उड़ाने का बहाना बना रही हो।
2: अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे?
1: अरे नौटंकी, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? क्या बेवकूफ समझ रखा है मुझे? इतना याद रखना, हम सब समझ गया हूँ और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और ये जो महंगी महंगी साड़ी है जो तुम्हारी इस गोल घूमर जैसे बदन को पहनाई है उसका क्या? और दिन रात जो तरह तरह के खाने जो तुमने चाट चाट के रसोई घर में खाए हैं उसका पैसा कौन देगा?
0: सन 1994 में परेश रावल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला फिल्म वो छोकरी के लिए, और फिल्म सर के लिए उन्होंने जीता फिल्म फेयर पुरस्कार।
3: हम लोगों को इतना खुश देखकर आपको अजीब लग रहा है ना? मैं बताता हूँ, बात यह है कि जब यह छोटी थी ना तो खुश रहती थी, खेलती रहती थी। हाँ, लेकिन जिस दिन से इसकी माँ गई है ना, चुप हो गई है, घर एकदम शमशान हो गया था। और इतने साल के बाद आपने सर पे हाथ रख दिया, मेरे घर में जान आ गई है।
0: सन 2001 में फिल्म हेरा फेरी के लिए परेश रावल चुने गए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन फिल्म फेयर की ओर से। सन 2000

0: 2003 में आवारा पागल दीवाना फिल्म के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता।
1: ये मेरा गला बैठने को आया है? तू क्या कान दुकान पे बेच के आया है? साला बेरा, इधर कचरा नहीं डालने का। ये तो तू नया है ना, इसके लिए मैं प्यार से बात करता हूँ। ये गुलाब वाले, तेरा नाम क्या है?
2: लिसन जेंटलमैन,
1: ये साला कौन सा नाम है? समझ में नहीं आता, इधर कचरा नहीं डालने का।
2: I'm sorry.
1: अबे सॉरी क्या, इंडिया समझा है? गुना करो, सॉरी बोलो।
3: क्या हुआ बड़ी जी?
1: अबे ये साला घन चक्कर को मैं एक कलाक से समझा भी नहीं, थकी गया। इधर कचरा नहीं डालने का, इसको बोल इधर से कचरा उठावे वरना।
0: परेश रावल की एक महत्वपूर्ण फिल्म है अंदाज अपना अपना, जिसमें वो सलमान खान और आमिर खान के साथ नजर आए थे। परेश रावल रंगमंच पर भी सक्रिय हैं। उनकी कंपनी टेलीविजन के लिए सीरियल्स बनाती है और उन्होंने एक फिल्म का निर्माण भी किया है, ओ माई गॉड। ये फिल्म गुजराती के एक प्रसिद्ध नाटक पर आधारित थी।
4: किसे भेजनी है नोटिस?
2: भगवान को।
4: मिस्टर भगवान? सरनेम?
2: पता नहीं, क्योंकि हम लोग मिले नहीं है।
4: अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। अरे ये नोटिस किसे भेजूं?
2: हाँ, लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में रहते हैं।
4: अच्छा है?

0: सन 2014 में भारत सरकार ने परेश रावल को पद्मश्री से सम्मानित किया था। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी माने अभिनेता परेश रावल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: धन जवान।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: चिट्ठी, आज इसमें आप सुनेंगे हरदा जिले की चिट्ठी। आलेख लोकेश गौर का है, वाचन स्वर्दीपा सिंह का।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। ये वो चिट्ठी है जिसमें दर्ज होते हैं जिले की धड़कनों के सुर, विकास की आहट, जनजीवन की हलचल और बदलते समय की तस्वीर। आज हम लेकर आए हैं हरदा जिले की चिट्ठी, जिसे भेजा है हमारे संवाददाता लोमेश कुमार कौर ने। पिछले एक महीने में जिले में क्या कुछ खास हुआ, किन उपलब्धियों ने सुर्खियां बटोरी, किन अभियानों ने लोगों का ध्यान खींचा और प्रशासन से लेकर आम जन तक किन मुद्दों पर सक्रियता दिखाई गई, इन सब का लेखा जोखा हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही जानेंगे आने वाले दिनों में जिले के लिए क्या महत्वपूर्ण होने वाला है, कौन सी योजनाएं आकार लेंगी, किन कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही हैं और क्या हैं वो खबरें जो हरदा के भविष्य की दिशा तय कर सकती हैं। तो आइए खोलते हैं हरदा जिले की चिट्ठी और पढ़ते हैं बीते दिनों की कहानी, आने वाले कल के जुबानी। बात सबसे पहले मौसम की। प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों से इस भीषण गर्मी में अपना ख्याल रखने की अपील की है। नौतपा के चलते जिले में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कल जिले में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सुबह कुछ राहत जरूर मिली लेकिन दोपहर बाद गर्म हवाओं और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। हालात ऐसे रहे कि शाम तक सड़कें लगभग सूनी नजर आईं। वहीं हरदा जिले में जनगणना 2026-27 के पहले चरण का काम आज पूरा हो रहा है। 1 मई से शुरू हुए इस अभियान के तहत मकान सूचीकरण और आवास गणना का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए अधिकारियों, प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को पहले ही विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रगणक घर घर पहुंचकर भवनों का विवरण दर्ज कर रहे हैं, आवास संबंधी जानकारी जुटा रहे हैं। जिले में ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व पूरे उल्लास, श्रद्धा और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। शहर से लेकर गांव तक मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा कर देश में अमन, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और सौहार्द का संदेश दिया। भीषण गर्मी और बढ़ती पेयजल समस्याओं को देखते हुए प्रशासन भी सक्रिय है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। ग्रामीण नागरिक हैंडपंप या नल जल योजना बंद होने की शिकायत 07577223212 पर दर्ज करा सकते हैं। इसी कड़ी में हरदा विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने ने विधायक निधि से विधानसभा क्षेत्र के 24 गांवों को फायर फाइटर पानी टैंकर उपलब्ध कराए हैं। इसका उद्देश्य गर्मी के दौरान पेयजल संकट से राहत पहुंचाना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जिले में जागरूकता गतिविधियां जारी है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किशोरियों को माहवारी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, महाविद्यालयों में पोस्टर मेकिंग, रैली और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। किशोरियां चुप्पी तोड़ो, खुलकर बात करो का संदेश देकर सामाजिक संकोच दूर करने का प्रयास कर रही हैं। वह डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री स्वामी विवेकानंद शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय में ई ऑफिस प्रणाली का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में कर्मचारियों को दैनिक कार्यों में ई ऑफिस का बेहतर और प्रभावी उपयोग सिखाया गया। अब एक महत्वपूर्ण न्यायिक खबर। सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 21, 22 और 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है। वैवाहिक संपत्ति, मोटर दुर्घटना, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और श्रम संबंधी मामलों की सुनवाई राज्य, जिला और मध्यस्थता केंद्रों पर की जाएगी। जिले में कुपोषण दूर करने और स्कूलों में बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पोषण पैरी अभियान और विद्या आसन अभियान को समाज का व्यापक सहयोग मिलने लगा है। विभिन्न सामाजिक संगठनों और समाजसेवियों ने इन अभियानों में सक्रिय भागीदारी का भरोसा दिलाया है। किसानों के लिए भी एक अहम खबर है। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाएगा। किसानों का पंजीयन 15 जून तक जारी रहेगा। वहीं खरीदी केंद्रों पर उपज बेचने से पहले किसानों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया है ताकि योजनाओं का लाभ सही किसानों तक पहुंच सके। दूसरी तरफ पुलिस परिवारों के स्वास्थ्य और कल्याण को ध्यान में रखते हुए हरदा पुलिस ने कंट्रोल रूम में विशेष शिविर का आयोजन किया, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, संतुलित आहार, पारिवारिक सामंजस्य और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी। और अब एक और सुखद खबर। मुख्यमंत्री दूरदर्शन योजना के तहत हरदा जिले के 196 वरिष्ठ नागरिक आगामी 3 जुलाई को माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना होंगे। यात्रा राज्य सरकार के खर्च पर कराई जाएगी। इच्छुक वरिष्ठ नागरिक 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। तो श्रोताओं, हरदा जिले की चिट्ठी में आज बस इतना ही। कल सुबह

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: FM 101.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी खंडवा है। हमारे मेहमान क्रम के अंतर्गत आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं समाज सेविका रश्मि तिवारी से। आपसे बातचीत की है विद्याधर मुले ने। श्रोताओं, आज हमारे साथ सुश्री रश्मि तिवारी जी हैं, हम उनका स्टूडियोज में स्वागत करते हैं। नमस्कार।
2: धन्यवाद जी।
1: अगर आप आकाशवाणी खंडवा नियमित तौर पर सुनते हैं तो इससे पहले भी एक बार वो हमारे स्टूडियो आई थी और अपने जीवन के बहुत सारी बातें उन्होंने की थी। आप एक शिक्षिका हैं, एक शासकीय विद्यालय में आप पढ़ाती हैं, समाज सेविका हैं और जीवन में हर क्षण समाज को देने की इच्छा रखती हैं। और इसके अलावा उनका एक बहुत बड़ा परिचय है कि वो एक योद्धा हैं, एक फाइटर हैं। बातचीत की शुरुआत किसी नकारात्मक पक्ष से करना अच्छी बात नहीं होती रश्मि जी, लेकिन मुझे ये बताना पड़ेगा हमारे श्रोताओं को कि आप कैंसर सर्वाइवर हैं। 3 अलग अलग अंगों का कैंसर उन्हें हो चुका है और एक कैंसर तो फोर्थ स्टेज पे था, लेकिन निगेटिविटी से ही पॉजिटिविटी उसके बाद सामने आई। उन्हें अपने अंदर एक योद्धा होने का आभास हुआ और वो आज तीनों कैंसर को मात देकर लोगों को जीवन जीना सिखा रही है। एक प्रश्न मैंने पहले सोचा था कि अंत में आपसे पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले पूछ लेता हूं, आपको जीवन से कोई शिकायत है?
2: जी बिल्कुल नहीं।
1: आपको तकलीफ तो बहुत हुई है।
2: ऑफकोर्स हुई है तकलीफ। देखिए मैं एक टीचर हूँ
1: जी,
2: और मैं सबको यही समझाती हूँ, जैसे यदि मैं 8वीं क्लास को पढ़ा रही हूँ तो 8वीं क्लास के बच्चे को मैं पहली का प्रश्न पत्र नहीं दे सकती। उसी तरीके से पहली कक्षा के बच्चे को मैं 8वीं का प्रश्न पत्र नहीं दे सकती
1: जी।
2: तो यही ईश्वर है जो परीक्षा लेता है हमारी, जो उस लायक लगता है ईश्वर को वो उसे ही वो देता है। और मैं तो बहुत आभारी हूँ कि ईश्वर ने इस चीज़ के लिए मुझे चुना कि मैं लोगों को एक संदेश दे सकूं। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से लोग घबरा जाते हैं, छोटी मोटी चीज़ों से घबराना नहीं है, हर चीज़ का इलाज है। कैंसर सिर्फ एक बीमारी है और कुछ भी नहीं है, और उसका इलाज है। मेरे डॉक्टर्स थे जो मुझे बहुत सपोर्ट करे हैं, मेरे साथ वाला जो मेरा सर्कल था उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और हमेशा सब मेरी ताकत बन के रहे। मेरा बेटा, उसने तन मन धन सब कुछ मेरे लिए लगा दिया
1: जी।
2: और मेरे अंदर सिर्फ एक फाइट वाली थी भावना।
1: मैं आपसे आगे यही पूछने वाला था कि जो आपने सपोर्ट सिस्टम की बात की, ऐसा तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, कैंसर जैसी बीमारी से लड़ते हुए वो हार जाते हैं, लेकिन आप जीती। क्या आपका मनोबल कुछ ज्यादा था?
2: मुझे ये लगता था कि इस कैंसर की हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉडी में आने की। मेरे कुछ सपने थे रिटायरमेंट के पहले, मुझे ये करना वो करना, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, तो मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी, इतनी चिढ़ भरी थी, तो बिल्कुल एक ऐसा था कि नहीं मुझे इसे भगाना है कैसे भी। मैं डॉक्टर से पूछती थी कि मुझे इसे बेइज्जत करके निकालना है, ये मेरी बॉडी में आया कैसे
1: जी?
2: इसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो डॉक्टर बोले ये ऐसा हो रहा है, आप में सुधार हो रहा है, क्योंकि जब बॉडी में ये डिटेक्ट हुआ था तो थोड़ा सा था कि भाई दवा बॉडी सपोर्ट करे तो फिर साल भर लगेगा, नहीं करे। और कुछ लोग खंडवा में तो 90% को ये था कि अब मैं नहीं बचूंगी,
1: लेकिन आपकी सकारात्मकता, हाँ, अच्छी दवाइयाँ,
2: मतलब बहुत सारे लोगों का ये कहिए कि मैं उन लोगों की यार ऋणी हो गई हूँ।
1: आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का ऋण है, ऐसा आप मानती हैं।
2: बहुत
1: लेकिन
2: सारे।
1: लेकिन अब जिस विषय पे बात करने वाला हूँ उसको देख के समाज आपके प्रति कृतज्ञ महसूस करेगा, खासकर जिसे हम देव भाषा संस्कृत कहते हैं उसकी एक सेविका के तौर पर अब अपना जीवन आप व्यतीत करना चाह रहे हैं। श्रोतो, संस्कृत भाषा देव भाषा हम कहते हैं, हमारी जितनी भारतीय भाषाओं हैं उनकी जननी के तौर पर संस्कृत को देखा जाता है, लेकिन संभाषण करना, उसमें बातचीत करना, ये सभी लोगों के लिए संभव नहीं होता। लेकिन रश्मि तिवारी जी संस्कृत में संभाषण सिखाने का प्रयास कर रही हैं और एक ग्रुप के माध्यम से वो संस्कृत सिखाती हैं। ये बात कैसे आपके जीवन में जुड़ी और इसके लिए आप किस तरह से प्रयास कर रही हैं?
2: देखिए एक्चुअली कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि हमारे मोदी जी, पीएम मोदी जी ने एक विदेशी शिक्षक को पद्मश्री से विभूषित किया।
1: हाँ।
2: और वो इसलिए कि उन्होंने हमारे

0: देश की संस्कृति और संस्कृत को अपने देश में लगाया और संस्कृत में ही सब बातें करते थे, प्रार्थना होती थी। तो मुझे लगा जब एक विदेशी तो फिर हम देशी क्यों नहीं, हमारी भाषा हमारी संस्कृति हम क्यों नहीं कुछ कर सकते
1: जी।
0: तो ये ख्याल जब दिमाग में आया तो फिर 18 अप्रैल के दिन मैंने डाइट से डॉक्टर अजय उपरी से बात करी। मैंने कहा अपने को करना है संस्कृत ग्रुप का निर्माण और उसमें काम करना है संस्कृत पे। बोले बिल्कुल करो। फिर हमारे एक चंपालाल पटेल सर थे तो उनको मैंने जोड़ा। तो जितने मेरे संपर्क में थे तो उस समय हम लोग ने कम से कम 22 लोगों को जोड़ के ग्रुप बनाया। नामकरण भी उपरी सर ने किया, वदतु संस्कृतम।
1: वदतु संस्कृतम,
0: हाँ वदतु संस्कृत, संस्कृत में बात करें तो हम अपनी संस्कृति में संभाषणम करू। बहुत सरल है, बहुत ज्यादा सरल है। मतलब हम लोग बच्चों से भी स्कूल में ऐसे ही बात करते हैं। तो हम कुत्र गच्छसि, अहम शौचालय गच्छामि मैम, अहम मम गृह गच्छामि, वेरी सिंपल।
1: छोटे छोटे वाक्यों से किसी भाषा के प्रति परिचय हो जाता है। आमतौर पर आम धारणा है कि संस्कृत जो व्याकरण है वो जरा जटिल है, सहज रूप में लोगों को समझ में नहीं आता। तो आप जो बातचीत सिखाने की कोशिश करती हैं वो वाक्य रचनाओं से होता है या पहले व्याकरण सिखा रही हैं?
0: वाक्य रचना। अच्छा। व्याकरण हमारे दिमाग में होता है लेकिन जिसे हम सिखा रहे हैं उसके दिमाग में व्याकरण नहीं होता है। हम लोग जैसे वाक्य बनवा रहे हैं, पहले जैसे बनवाए तद पे प्रथमा विभक्ति कारक रचना में, तो लट लकार लिया वर्तमान काल, उसमें प्रथम पुरुष तद तो पहले पुल्लिंग लिया, फिर उसके बाद स्त्रीलिंग लिया, फिर मध्यम पुरुष युष्मत पे आए और उसके बाद फिर अन्य पुरुष अस्मत पे। वाक्य अब अभी हमारे भविष्य काल पे चल रहे हैं वाक्य।
1: अच्छा।
0: जब माँ अपने बच्चे को सिखाती है तो किसी अन्य भाषा का सहारा नहीं लेती है।
1: जी जी हाँ।
0: विद एक्शन वो सब सिखाती है।
1: हाँ।
0: हम लोग भी बच्चों को जैसे मोस्टली मैं यहाँ पे इंग्लिश टीचर के नाम से जानी जाती थी तो मेरा यही था कि इंग्लिश में नो हिंदी नो ट्रांसलेशन, इंग्लिश को इंग्लिश में बात।
1: आरंभ आपने अंग्रेजी शिक्षिका के तौर पर किया।
0: हाँ जी।
1: और अब जब करियर के आखिरी दौर पर हैं और आप पूर्णतः संस्कृत को समर्पित हो गई हैं।
0: जी पूरा संस्कृत पे हो गई हूँ मैं।
1: जी
0: इंग्लिश के लिए फिर भी इंटरेस्ट है लोगों में।
1: हाँ।
0: इंग्लिश स्कूलों में एडमिशन भी हो रहे हैं लेकिन संस्कृत तो हमारे देश की संस्कृति और हर भाषा की जननी है और कंप्यूटर ने आज संस्कृत को ही एक्सेप्ट किया है।
1: जी हाँ, सबसे वैज्ञानिक भाषा।
0: हाँ, वैज्ञानिक भाषा है ये। तो इसलिए भाई हमारी भाषा में यदि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सिर्फ एक ही हम लोगों का मकसद है कि अभी तो फिलहाल हमें सिर्फ इंटरेस्ट डेवलप करना है। छोटे छोटे वाक्य हम लोग देते हैं, सिर्फ कर्ता और क्रिया।
1: अच्छा।
0: अहम गच्छामि,
1: मैं जाता हूँ।
0: मैं जाता हूँ। आवाम गच्छाम, हम दोनों जाते हैं। वयम गच्छाम, हम सब जाते हैं।
1: हाँ,
0: ये बच्चों को बहुत सरल लगते हैं और सभी को सरल लगते हैं और सब बना भी रहे हैं इस पे वाक्य।
1: अच्छा।
0: इवन वीडियोज बना बना के भी वायरल कर रहे हैं सब। उत्साह तो है। मतलब बना था ये 22 लोगों का ग्रुप जिसमें आज 90 हो गए हैं।
1: अगर मैं संस्कृत सीख लेता हूँ तो क्या अन्य भारतीय भाषाएं सीखना मेरे लिए आसान हो जाएगी? ये बात
0: ऑफ कोर्स हो जाएगी। क्यों? कोई भी भाषा हो दुनिया की, यदि हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हम ये सीख सकते हैं तो हम जीवन में कुछ भी सीख सकते
1: नहीं,
0: हैं।
1: ये तो मनोबल की बात हुई।
0: हाँ।
1: पर एक तकनीकी तौर पर अगर सारी भाषाएं संस्कृत से ही उपजी हैं।
0: हाँ।
1: तो अगर मैं संस्कृत में संभाषण करने लगा तो क्या मेरे लिए बांग्ला या तेलुगु इन भाषाओं को सीखना जरा आसान हो जाएगा?
0: हो जाएगा, हर भाषा को सीखना आसान हो जाएगा क्योंकि शब्द तो वही रहते हैं ना।
1: जी
0: कई भाषाओं में और सबसे ज्यादा तो मराठी में है संस्कृत शब्द।
1: जी
0: साउथ की भाषाओं में बहुत ज्यादा संस्कृत के शब्द आते हैं।
1: हाँ।
0: तो जहाँ हमारा शब्द आता है तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। जैसे इंग्लिश में हम लोग यदि कार बोलते हैं तो कार हम शुरू से सुनते आए तो हम बोल सकते हैं कार।
1: हाँ।
0: बस स्टेशन प्लेटफॉर्म। लेकिन इसी को यदि हम हिंदी में बोलेंगे तो हमारी हिंदी में ही हम नहीं बोल पाएंगे, उसी में दिक्कत आ जाती है।
1: जी तो क्या आप जिन बच्चों को या फिर जो भी लोग आपसे जुड़ रहे हैं उन्हें संस्कृत सिखाने के लिए किसी तरह का शुल्क आप लेती हैं?
0: निःशुल्क,
1: पूर्णतः निःशुल्क।
0: निःशुल्क है,
1: यानी एक सेवा है ये।
0: बस सेवा है, एक समर्पण है। एक ही अनुभव है मेरा इतने 62 साल का कि किसी भी चीज को किसी भी शौक को आप जुनून के हद तक पहुंचा दो तो कामयाबी 100% मिलेगी आपको।
1: जी
0: कोई भी चीज हो।
1: जी जिन बच्चों को आपने संस्कृत सिखाई है उनको देखकर जो दूसरे लोगों को प्रेरणा मिली है या वो लोग भी आपके पास आए हैं?
0: कुछ लोग आए हैं, कल ही मेरे से कुछ लोग जुड़े, बोले हम दो लोगों को और जोड़ेंगे संस्कृत में, ये भी हैं जो काम कर रहे हैं। मतलब मेरा तो ये है कि अभी जुलाई से जब स्कूल शुरू होंगे तो हमारे जितने टीचर्स हैं उनको भी कहा जाएगा कि अपने स्टूडेंट्स को आप इस ग्रुप में ऐड करिए और मैं भी अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को ऐड करूंगी और हमको

0: वहाँ से फिर वापस पुनः शुरुआत करनी है, क्योंकि सारा नया जो हमारा होगा ना वो उसी समय बनेगा, जुलाई में
1: जी।
0: बस मेरा इतना काम है कि ग्रुप में मैं सेंटेंस बना के डालती हूँ, अब वो भी पहले एक दिन पहले अपने गुरुजी को डालती हूँ, भाई ये डाल दूँ सही है गलत तो नहीं है।
1: हाँ।
0: फिर वो डाल देती हूँ और उस पर फिर दूसरे लोग वाक्य बनाते हैं, और जब वाक्य बनाते हैं तो उन पर मैं कमेंट दे देती हूँ
1: जी। बहुत से लोगों को संस्कृत से एक भय सा है, उन्हें लगता है कि भाषा क्लिष्ट है, शायद हम सीख नहीं पाएंगे, पर आपका अनुभव क्या कहता है कि कितने दिनों में या कितने महीनों में कार्य साधक ज्ञान संस्कृत का मिल सकता है, अगर नियमित रूप से व्यक्ति मेहनत करे तो कितने दिनों में बोल सकते हैं?
0: मुझे नहीं लगता ज़्यादा समय लगेगा, मुश्किल से विद इन अ वीक,
1: एक हफ्ते में,
0: एक हफ्ते के अंदर।
1: अच्छा, तो कुछ कुछ
0: बात करना तो शुरू करें ना। अब हाँ। यदि आप पूछ रहे हैं पुत्र त्वम कुत्र गच्छसि, आपने एक बार पूछा, दो बार पूछा, नहीं जवाब दे पाए, आप उसे जवाब सिखाओगे, बोलेगा अहम क्रीडांगणे गच्छामि, अहम विद्यालय गच्छामि, हम शौचालय अच्छा में। जब एक चीज को बोलता जाएगा तो कितना टाइम लगेगा उसे सीखने में
1: जी।
0: मतलब आप तो ये सोच रहे हैं, मैं तो आंगनवाड़ी के बच्चों के साथ जाके इंग्लिश में बात करती थी तो वो भी इंग्लिश में शुरू हो जाते थे, अब मैं वहां सोच रही हूँ कि मैं आंगनवाड़ी में जाऊं और वहां हमें अपनी जड़ में डालनी है संस्कृत। अच्छा। पत्तियों को नहीं सींचना है, जड़ में संस्कृत डालनी है, हमारी जड़ तैयार करनी है। जब बच्चे लोग आपस में करेंगे तो घर में भी एक अलग माहौल बनेगा।
1: मेरा आपसे आखिरी सवाल, अगर कोई व्यक्ति संस्कृत सीख लेता है तो उसके पर्सनैलिटी में क्या परिवर्तन आएगा, और अगर संस्कृत नहीं सीखे तो क्या फर्क पड़ जाएगा?
0: बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं कर रहे हैं लोग, क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं कर रहे लेकिन देखिए यदि हम हिंदी बोलते हैं तो सामने वाले पे कोई ऐसा विशेष फर्क नहीं पता, हाँ भाई ये हिंदी भाषी है, गाँव में हिंदी बोलोगे तो अरे तो शहर का है।
1: हाँ।
0: यदि आप इंग्लिश बोलेंगे तो सामने बोलोगे ये तो बहुत स्मार्ट है, बहुत होशियार है। लेकिन वहीं यदि आप संस्कृत में शुरू हो गए तो सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है, सोच बंद हो जाती है, और बाप रे तो संस्कृत में बात कर रहा है,
1: यानी विद्वत्ता का परिचय,
0: विद्वत्ता का प्रतीक है ये
1: जी।
0: बहुत ज्यादा सरल है संस्कृत, बहुत ज्यादा सरल है, हम उसे पढ़ेंगे नहीं, हम उसमें ग्रामर में नहीं जाएंगे, हमसे शुरुआत बेसिक नॉलेज। देखिए जब हम बात करने लगते ना तो हमें ऐसा लगता हम बहुत बड़े होशियार हो गए, और जब ये चीज हमारे अंदर आ जाती ना तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, फिर वो सब सीख लेते हैं, फिर इतनी कठिनाई नहीं लगती, वो कठिन शब्द को भी पढ़ लेते हैं
1: जी।
0: ऐसा मेरे यहाँ मेरे बच्चों को स्कूल में महामृत्युंजय, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा याद है।
1: अब मैं भूल रहा हूँ उस गांव का नाम, कर्नाटक का कोई एक गांव है जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति आपस की बातचीत संस्कृत में ही करता है, वो सौदा लेने के लिए बाजार जाते हैं तो भी संस्कृत में ही बात करते हैं, और एक दूसरे से अगर कभी झगड़ा भी होता है तो भी वो संस्कृत में ही शिकायत एक दूसरे से करते हैं। अगर आप जैसे सिखाने वाले हुए और आप जैसे जुझारू व्यक्तित्व किसी एक भाषा के प्रति इतने आग्रही हुए तो निश्चित ही ये परिस्थिति पूरे देश में होगी, और ये सूरत पूरे देश में हो सकती है कि हम सभी लोग संस्कृत में संभाषण कर सकेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए रश्मि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: धन्यवाद, धन्यवाद।
1: शिक्षिका और समाज सेविका रश्मि तिवारी से विद्याधर मुली की बातचीत आप सुन रहे थे श्रोताओं।

0: फोन करें गीत सुने।
1: सर फोन लगा लगा के सर जी मैं पसीने में तर बतर हो गया हूँ, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है भीषण।

0: दिलचस्प बातें, मधुर गीत। सुनिएगा जरूर इस रविवार प्रातः 10:05 पर। फोन करें, गीत सुने।
1: मुझे कहना कहना तुझसे है कहना।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी खंडवा से। निवाड़ी लोक गीतों के कार्यक्रम में आज आपको सुन पाते हैं एक गम्मत, कलाकार प्रभाकर दुबे और उनके साथी।

0: अरे क्यों रे भाई, तुखा मैंने कहती हाक पाड़ी, थारो कहीं पतो नहीं, कहाँ गयो तो तू?
1: अरे पटेल साहब मग माफ कर दियो, अरे हाँ ये बड़गांव बावड़ी खेड़ा ने पांजरिया ने बड़गांव गयो तो बाल बनाओ ना।
0: अरे बाल बनाने पर महारा भी तो बाल बनानु तो।
1: चलो लियो बैठो, अरे अंगो तो उतारो।
0: अरे यो अंगो उतार दियो यार, ले
1: जरा सिल्ली पर जरा उस तरह घिस लियो।
0: हाँ घिस, देख तो भाई क्यों रे वो तू अभी तीन चार गांव से आयो।
1: हाँ।
0: तो वहाँ का कहीं हाल चाल बताओगे कि नहीं?
1: हाल चाल ले, अरे वो नानो छे नी, नाना की छोरी का हम मल रही गो थो, तो वो को लोग लाएगा दूसरा गांव।
0: अरे के को थो?
1: अरे लोग कैद की सखाराम को थो। अरे पटेल दाजी तुम हाथ से कब तक रिता रहोगा? अरे ये सुनसान घर आप खाना के दौड़े, अरे ब्याह क्यों नहीं करता?
0: अरे हाँ यार बुआनिया, बिना लुगाई का सब सुनो छे, मारी लुगाई मरी जब से घर सुनसान हुई गई, ये घर मगा काटना का दौड़े।
1: तो तुम कहो तो नात्रा को सोए फिड़ाऊं, अब उठो बनी गया बाल।
0: आता यो मैं कुर्तो पेरियो, कहाँ चला बोल, चलने का तैयार छाऊ।
1: हाँ तो चलो, नया काम में देर नहीं होनी चाहिए, चलो जल्दी चलो।
0: हाँ चलो।

0: चलो। अरे अरे थोप थोप, अरे पोरा जरा गाड़ी के थोप रे। अरे पटेल, अरे जरा, अरे पटेल जरा गाड़ी के थोबार जा। अरे अरे हाँ सो जरा पोरा थोप थोप थोप। अरे देख देख, अरे कुआ भाई देखे रही कुआ पर। अरे ओका से सोई भेड़े नाव थारो। अरे बरका से बाल्टी पानी पीना का बाल्टी मांगूंगा इना भाना जाऊं
1: छोटी
0: न थारो सोई जमे नाव। यहां रजे पटेल गाड़ी जोड़े खड़े रजे
1: छोटी बड़वानी को।

0: ओ जीजी, अरे वो बहन, अरे वो काकी, ओ मारी लुगाई।
1: थारी सीढ़ी बांधू थारी मरी गया, तू ना मखा लुगाई क्यों कयो?
0: देख देख देख, मैंने तू का जीजी कयो तो तू बोली नहीं, अन पर तू का बहन कयो अन तब भी नहीं बोली, अन कार में तू काकी कयो अरे तब भी तू बोली, ना लुगाई कयो तो क्यों तूने सुनियो क्यों हुआ?
1: वारे तू लुगाई कय ना हम सुनिया करूं, जीभ नहीं खाई लूंगा थारी।
0: अच्छा चल चल चल चल, अरे बोरिया, अरे गाड़ी में से रुपया ना उड़ना दे उड़ना दे, मत पकड़ा उनका, ना कलदार ना जरा दाबी दे तो उन्हें ना बांडिया बेल की जरा छमटिक मोड़, अने उन्हें बिना पटाख की गाड़ी जरा गिर रे, अने कलदार ना दचक।
1: क्यों रे भाई, या काई बात है, ये रुपया ना का क्यों उड़ाई रहा है?
0: अरे वो पटेल छे नी गाड़ी में, ओका आनो लगानो, उनका वाटा लुगाई लाउनो।
1: तुमरा पटेल का पास में कितरा कलदार छे, काई आसामी अच्छी छे?
0: अरे काई बात करो, उनका यहाँ एक एक भैंसी नाक पाछ बारह बारह हेलगा पैड़ा चले, न मई मांगने दूसरा घर जाओ।
1: क्यों भाई, तुमरो नाव काई छे?
0: अरे मारो नाव भुआनिया छे।
1: भुआनिया भाई, पटेल का यहाँ मई दूध की कहीं कमी तो नहीं होएगी मखा?
0: अरे मई की बात, अरे मई की काई बात छे, हम यानी एक तड़ाई खोदे देवाय, न ओका में सारो भैंसी नाक दूध नाखी देवाय, ने एक टाया बेल का ओका अंदर पटकी देवाय, न बेल का अल्यांगसी वल्यांगसी फेरिया कराय, न बेल का फेरते फेरते जब वो फूली जाए तो समझनो कि माखन आई गयो, न एक बेलदार का बुलाय ना, न फिर उन्हें माखन की दीवार खड़ी करनो, न भाभी तुम्हारो मन माखन खाना को हो तो आसो कर जो, दो हाथ ना के पाछे बांधी ले जो, न जबान का ऐसी हेड़ी ना चाय लेनू खाई लेनू माखन।
1: तो भुआनिया भाई, तुमरा पटील का यहाँ रकम भाव छे?
0: अरे भाभी की बात काई बात, नींदता नींदता यदि खेत में कभी बिच्छो मिली गयो तो ठीक छे, नहीं तो अपना पाँव तो पोसे रोज।
1: अच्छा

0: हाँ वाह लाई दे वांगे। चल भाई बैठा देगा गाड़ी में,
1: चलो आ जाओ,
0: चलो घेरो गाड़ी
2: तो चलो।
3: आपने सुने कम्मत, कलाकार प्रभाकर दुबे और उनके साथी।
4: इतने उदास बैठे हो?
5: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
4: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
5: क्यों?
4: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
5: वो कैसे?
4: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
5: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
4: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
5: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
4: आप कब आ रहे हैं?

0: आकाशवाणी खंडवा पर।
1: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से अब प्रस्तुत है ग्रामीण बच्चों के लिए हमारा कोपल कार्यक्रम।

कोपल सुनने वाला सभी बच्चा ना होनी कार्यक्रम लेने ना आज आपका साथ छे आपकी दीदी प्रतिमा तो स्वीकार करो मारी राम राम बच्चा ना होनी कदी आपने सोचे हो कि सुबह को अखबार नहीं होए मोबाइल न टीवी पर खबर न नहीं होए तो काई होएगा बच्चा ना होनी असो होना पर हमका एक जगह की खबर दूसरी जगह पर नहीं मिली पाएगा बच्चा ना होनी खबर न की बात हूँ आज एकालेंट कही रही कि आज 6-30 मई ना आज का दिन ख हिंदी पत्रकारिता दिवस का रूप में मनाया जाए बच्चा ना होनी आज से कई साल पहले 30 मई 1826 ख भारत देश में हिंदी को सबसे पहलो अखबार छपियो थो कई आप सभी उन अखबार का बारे में जानोगे उन अखबार को नाम थो उदंत

0: कदी आपने सोचियो कि सुबह को अखबार नहीं होए, मोबाइल न टीवी पर खबर न नहीं होए तो काई होएगा। बच्चा न होनी असो होना पर हमका एक जगह की खबर दूसरी जगह पर नहीं मिली पाएगा। बच्चा न होनी खबर न की बात हूँ आज एकालेन कही रही कि आज 6/30 मई न आज का दिन ख हिंदी पत्रकारिता दिवस का रूप में मनाया जाए। बच्चा न होनी आज से कई साल पहले 30 मई 1826 ख भारत देश में हिंदी को सबसे पहलो अखबार छपियो थो। काई आप सभी उन अखबार का बारे में जानोगा? उन अखबार को नाम थो उदंत मार्तंड। नाम थोड़ो कठिन तो थे तो आओ एक आसान करा। बच्चा न होनी उदंत मार्तंड को मतलब छे उगतो हुओ सूरज। जसो कि सुबह को सूरज आए न धरती पर उजालो फैलाए, वसो चुना समय में अखबार न जनता का जीवन में खबर न को उजालो फैलायो थो। बच्चा न होनी अब आप सोची रहा होएगा कि पत्रकारिता काई होएज, ताओ जानो एक हम एक उदाहरण सी। आज आप सभी जब शाला स्कूल गया होएगा न शाला में जब खेल दिवस मनाया होएगा तो एक बच्चो दौड़ी कर प्राचार्य कक्ष में जाए न ये मालूम कर कि खेल दिवस पर कौन कौन सा खेल होएगा न फिर आई कर पूरी कक्षा का बच्चा न का बतावा। बस इससे पत्रकारिता। बच्चा न होनी कहने को मतलब ही कि पत्रकारिता में सच को मालूम करी कना ओख दूसरा व्यक्ति न ख बतायो जाए। पत्रकार हमका देश दुनिया की खबर न ख बतावज। एक पत्रकार का पास कलम की ताकत होएज जी तलवार से भी बड़ी होएज। बच्चा न होनी समय बदलो न समय का साथ पत्रकारिता को रूप भी बदली गयो। पहला का समय में खबर का लेन अखबार छपता था, फिर रेडियो आयो जेखा आप अभी सुनी रहाज, एका बाद आयो टेलीविजन जेमा आप खबर ख देखने का साथ साथ सुनी भी सकोज। न फिरी धीरे धीरे सारी खबर न मोबाइल पर आने लगी। बच्चा न होनी आज को पत्रकार खबर का लिखने का साथ साथ ओखा वीडियो का माध्यम से भी जनता तक पहुंचावज। आज तकनीक न पत्रकारिता का बड़ो आसान न तेज बनाई दियो। बच्चा न होनी आजकल कई लोग सोशल मीडिया का माध्यम से भी खबर न का फैलावज, जेमा कुछ खबर न असी रहेज जिनकी सच्चाई पर हमका 100% विश्वास नहीं करी सकता है। गलत खबर न का फेक न्यूज कयो जाएज जी आपने भी सुनियो होएगा। कभी आपको भी कोई ऐसी खबर लग जी गलत हुई सकस तो उन्हीं खबर का बारे में अपना घर का बड़ा न शिक्षक न सी विचार विमर्श जरूर करा। बच्चा न होनी पत्रकारिता देश की जनता का जागरूक बनावज। पत्रकारिता नागरिक न का सही और गलत को अंतर दिखावज। बच्चा न होनी आज का दिन यानी कि हिंदी पत्रकारिता का दिवस पर हम सभी का उना सभी पत्रकार न का धन्यवाद करनो चाहिए जी धूप मा ऊंचा पहाड़ न प भी और कई प्रकार की आपदा का संकट में भी हम सभी तक सच्ची खबर पहुंचावज। चल बच्चा नौनी अब आप सभी इन्हीं बात का समझी गया होएगा कि पत्रकारिता हमारा समाज को दर्पण यानी कि आईनो होएज। न बच्चा नौनी पत्रकारिता का लोकतंत्र को चौथो स्तंभ भी कहो जाए। बच्चा नौनी आप सभी भी अपना आप खबर न सी जोड़ी न अपना भीतर परिवर्तन देखी सकोज। बच्चा नौनी आप सभी भी अपना दिन की अच्छी न बुरी बात न कर डायरी में लिखी सकोज। डायरी लिखना सी आपकी भाषा अच्छी होएगा न सोचना विचारना की शक्ति भी बढ़ेगा। तो आप सभी नन्ना पत्रकार न कभी हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत बधाई। बच्चा नौनी आप सभी न का खेलनू खूब पसंद होएगा। न आप सभी जानोच कि जिना प्रकार पढ़नू लिखनू जरूरी छे उनाज प्रकार खेल खेलनू भी जरूरी रहेज। खेल हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रहेज। तो बच्चा नौनी आ अवसुना वार्ता विषय छे खेलों का महत्व। वार्ताकार छे खेल शिक्षक नीलेश गावड़ेकर।
1: नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है बताऊंगा। खेल हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेल हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखते हैं। आज के समय में बच्चे

0: मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर में अधिक समय बिताने लगे हैं। इससे उनका शारीरिक विकास प्रभावित होता है। ऐसे में खेल बच्चों को सक्रिय, स्वस्थ और खुश रखने का सबसे अच्छा माध्यम है। जब बच्चे दौड़ते हैं, कूदते हैं और विभिन्न खेल खेलते हैं, तब उनका शरीर स्वस्थ रहता है। खेलों से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियां मजबूत बनती हैं और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। नियमित रूप से खेलने वाले बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। खेल मानसिक विकास में बहुत मदद करते हैं। खेलते समय बच्चों को जल्दी निर्णय लेना पड़ता है। इससे उनकी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। खेल हमें तनाव से दूर रखते हैं और मन को प्रसन्न बनाते हैं। जब बच्चे मैदान में खेलते हैं, तब वे खुशी और आत्मविश्वास महसूस करते हैं। खेल हमें अनुशासन सिखाते हैं, क्योंकि हर खेल के कुछ नियम होते हैं। जब बच्चे उन नियमों का पालन करते हैं, तो उनमें अनुशासन की भावना विकसित होती है। वे समय का महत्व समझते हैं और जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। खेलों से हम टीम वर्क सीखते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और हॉकी जैसे खेलों में सभी खिलाड़ियों को मिलकर काम करना पड़ता है। इससे बच्चों में सहयोग, मित्रता और एक दूसरे की मदद करने की भावना पैदा होती है। वे सीखते हैं कि अकेले नहीं, बल्कि मिलकर काम करने से सफलता मिलती है। इसके अलावा खेल बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। जब कोई बच्चा अच्छा प्रदर्शन करता है या कोई प्रतियोगिता जीतता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। हार मिलने पर भी वह दोबारा मेहनत करता है। खेल हमें सिखाते हैं कि हार और जीत जीवन का हिस्सा है। आज भारत के कई खिलाड़ियों ने दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। खिलाड़ियों की सफलता हमें प्रेरणा देती है कि खेलों में भी उज्जवल भविष्य बनाया जा सकता है। खेल सिर्फ मनोरंजन, स्वास्थ्य और प्रतिभा दिखाने के लिए ही नहीं खेले जाते, अपितु आज खेलों में पैसा, व्यापार और रोजगार भी जुड़ गया है। खेलों से नौकरियों में भी कई अवसर मिलते हैं, जैसे अच्छे खिलाड़ियों को पुलिस, सेना, रेलवे, बैंक आदि में स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा कोच जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं, स्कूलों में खेल शिक्षक के रूप में, कॉलेजों में खेल अधिकारी और रेफरी, अंपायर, फिटनेस ट्रेनर, स्पोर्ट्स पत्रकार और भी कई प्रकार की सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नौकरी के अवसर मिलते हैं। इसीलिए बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ प्रतिदिन कुछ समय खेलों के लिए भी देना चाहिए।
1: बच्चा न होनी अभी

वार्ता सुन रहा था विषय थोक खेलों का महत्व। जानकारी दे रहा था खेल शिक्षक निलेश गावड़ेकर। न बच्चन होनी, आप सभी का मन में एक जिज्ञासा रहती होएगा कि चींटी ने हमेशा एक सीधी लाइन बनाई न क्यों चलती होएगा। त बच्चन होनी, जब चींटी न भोजन की तलाश में निकलस तो रास्ता में फेरोमोन्स नाम को एक केमिकल छोड़ती जाए। फिर पीछे आने वाली चींटी ने अपना सिर पर लगे एंटीना सी उना केमिकल की गंध का सूंघज न अपना आप आगे वाली चींटी का वो गंध छोड़ती जाए। बचानोनी ओ गंध सी पीछे चलने वाली चींटी उन्हीं लाइन पर चलत जेका से एक सीधी कतार बनती जाए। कभी हम बीच में उंगली रखांस तो गंध गायब हो जाए न चींटी न कुछ समय का लेन अपनो रास्तों भटकी सकज। न बच्चों ने आ अवसुना कृष्ण भजन जेखा गायोज कांता जोशी ना।

बच्चा नौनी अभी हमने भजन सुनियो न बच्चा नौनी आ अब चला कहानी की ओर। कहानी गौरी गाय अरु दहाड़ू शेर की आए। बच्चा नौनी एक बार की बात आए, जंगल किनारा पर गौरी नाम की एक छोटी सी गाय रहती थी। गौरी सफेद रंग की सुंदर गाय थी, जी रोज अंबा अंबा करती हुई हरी घास खाना जंगल जाती थी। जंगल में

एक दहाड़ू नाम को शेर भी रहतो थो। दहाड़ू तेज आवाज में दहाड़ करतो थो, पण ओको पेट खाली रहतो थो। एक शाम गौरी खाता खाता भूली गई अरु ओखा देर हुई गई। तवस दहाड़ू शेर सामना आयो, न जोर सी दहाड़ लगाई, न दहाड़ी न कयो कि गौरी आज हूँ तुमख खाऊंगा। गौरी गाय की डर का मारा आग बंद हुई, फिर उन्हें हिम्मत करी का न कयो, दहाड़ू भाई मखा मत खाओ, मारा घर में छोटा छोटा बछड़ा न छे, जी मारी राह देखी रहा होएगा, हाँ एक बार उनसी मिली न आई जाऊं, फिर तुम मख खाए लीजो, ये मारो पक्को वादो रहो। दहाड़ू शेर न सिर खुजायो, न गोरी गाय का कयो कि आड़ा को पक्को वादो याद रख जो, न फिरी शेर न सोचियो कि अभी एक जाना देऊं। गौरी दौड़ी करना घर गई और अपना बछड़ा ख गल लगायो, न ओख कयो कि अब हूँ जाऊँच न फिरी नहीं आऊँगा, न वो चली गई। गौरी का आँख में आंसू था, न वो जंगल चली गई। दहाड़ू पहले से वहाँ गौरी गाय की राह देखी रहो थो। जब गौरी दहाड़ू का सामना पहुँची तो दहाड़ू चौकी गयो। गौरी गाय न कयो कयो कि मैंने अपनो वादो पूरो कियो, जेका से दहाड़ू को दिल पिघली गयो। दहाड़ू ने कहो, गौरी तुम बड़ी बहादुर छे, ना आज सी हम सच्चा मित्र रवांगा, अब तुम अपना बछड़ा न का पास जाई सकोज। बच्चा न होनी इनी कहानी सी हम सबई न ख ई सीख मिलज कि हमका कदी भी झूठ नहीं बोलनू चाहिए, न कदी हम कोई व्यक्ति सी कोई वादो करा तो ख याद जरूर रखा, न ख पूरो जरूर करा। बचनोणी ई तो थी कहानी, न बचनोणी आओ वसुणा नारायण यादव न साथी न को गायली भजन।

0: बचनहोणी, अभी हम नारायण यादव न साथी न को गायल भजन सुनी रहा था। बचनहोणी, अभी आप सभी न की ग्रीष्मकालीन छुट्टी न चली रही होएगा, जेमा आप सभी न खूब मस्ती करता होएगा, न जगह जगह पर घूमना फिरना भी गया होएगा। बचनहोणी, पण इना समय में गर्मी खूब छे, तो कदी आप सभी भी इनी छुट्टी न में कहीं घूमना फिरना जाओ तो गर्मी में अपनो ध्यान जरूर राखजो। गर्मी में घर से निकलते समय अपना सिर पर गमछो जरूर डाला। तेज धूप में रहने का बाद तुरंत ठंडो पानी नहीं पीवा है। साथ ही एक बात अरू कि कई बार आप खेलने में खाणो पीणो भूली जाओ, तो ऐसा में ध्यान रखा कि गर्मी में ज्यादा समय तक भूखा नहीं रहा है। कभी हम अकेला कहीं बाहर जावा तो घर को नंबर जरूर याद रखा, न घर में अपना परिवारजन न कह बताई न जावा। बचनहोणी, हमख अपना घर का सभी बड़ा न की बात माननू चाहिए, न कभी हम अपना जीवन में कोई शुरुआत करनू चाह रहा हो तो इन्हीं गर्मी की छुट्टी में आप सभी कुछ नयो करी सकोज। जिना काम में आप रुचि रखोज ओ ख सीखी भी सकोज। न बचनहोणी, अव कार्यक्रम को अपनी दीदी प्रतिमा ख राम राम।
1: श्रोताओ, आपने सुना कोपल कार्यक्रम एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी खंडवा। आइए अब सुने राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।
2: के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये

0: पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude oil.

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है मन चित्रपट संगीत। अब आपको सुनवाते हैं एग्रीमेंट फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, गुलशन बावरा के बोल, संगीत है बप्पी लाहिरी का।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं चंबल की कसम। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत को लिखा साहिल लुधियानवी ने, संगीत तैयार किया खयाम ने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी अपनी, थी धन्य वो उनकी जवानी।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।
1: दोस्तों नमस्कार, आज के मैटिनी शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व तंबाकू दिवस पर आइए सुनते हैं BEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल कुमार सिंगल से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के मैटिनी शो में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम सब जानते हैं 31 मई ये जो दिन है, इस दिन मनाया जाता है विश्व तंबाकू विरोधी दिवस।

0: और तंबाकू विरोध क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए, सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है BEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल कुमार सिंघल जी को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू।
0: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो लत है तंबाकू की, ये जो नशा होता है, ये लत के अलावा भी तंबाकू का कोई इस्तेमाल होता है, वो किस तरह से होता है?
1: जी एक्चुअली ह्यूमन ने तंबाकू का जो सेवन करने से पहले उसको
0: जी
1: कोई अलग तरीके से यूज़ करते थे।
0: हाँ हाँ
1: जैसे कि हमारा देश खेती प्रधान देश है,
0: जी जी
1: तो वहाँ पे खेती हमारा पूरा डिपेंडेंसी रहता है।
0: हाँ
1: तो खेती को जो दो तीन चीज़ें से जो खतरा है, जैसे कि
0: जी
1: वाइल्ड एनिमल्स या
0: हाँ
1: बड़े जानवर वगैरह,
0: जी
1: इनसे खतरा रहता था। तो उनके खेती के जो बॉर्डर पे ये तंबाकू के प्लांट्स लगाए जाते थे
0: अच्छा
1: और उनकी वो स्मेल से जो वाइल्ड एनिमल्स
0: हाँ हाँ
1: वो
0: हाँ
1: दूर चले जाते थे। दूसरा था कि खेती को दूसरा जो प्रॉब्लम था वो चूहे से, तो चूहे खेती खराब कर देते थे। तो अभी आज भी की तारीख में भी जो तंबाकू के जो लीव्स रहते हैं
0: जी जी
1: वो जो बड़े रहते थे वो सूखने के बाद उसको गर्म करके
0: अच्छा गरम करके
1: उसको आग लगा के उसको चूहे के जो अंडरग्राउंड जो उनके
0: बिल होते
1: बिल
0: हैं
1: होते
0: हाँ
1: उसमें डाल देते हो, चूहे भाग जाते या मर जाते थे।
0: अच्छा।
1: आज की तारीख में भी हमारे जो गाड़ियों
0: ग्रामीण
1: में,
0: इलाकों में ऐसा होता है और
1: हाँ इवन सिटी में भी,
0: सिटी में हाँ
1: जो ड्यूरिंग द मानसून सीजन वो
0: हाँ
1: चूहे गाड़ी के जो वायर्स
0: वायर कुतर जाते
1: का
0: हैं
1: काट का,
0: जी जी
1: तो उसको
0: जी
1: रोकने के लिए भी तंबाकू डाल देते थे उससे। तो
0: हाँ
1: उसके अलावा जो तंबाकू का जो पान रहते हैं
0: हाँ हाँ
1: उसको सूखने के बाद उसका पाउडर करते, उसको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड करके भी यूज होता था,
0: हाँ
1: जैसे
0: अच्छा
1: इंसेक्ट्स है जो खेत को या धान को खराब न कर दे।
0: जी जी जी
1: सो ये कुछ तरीके थे जो अदर देन
0: हाँ
1: सेवन हम इंसान इसको यूज करते थे। तो ये मुझे यहाँ पे कहना है कि तंबाकू से किसी को भी सेफ नहीं है, सब खतरे में है।
0: हाँ
1: अगर वो जीव छोटा है तो जल्दी मरेगा, अगर बड़ा है स्लोली स्लोली लेकिन मरेगा जरूर। तो
0: जी
1: तंबाकू के लिए कहा जाता है कि तंबाकू के जो सेवन करने वाले में से 50% लोग को तंबाकू मार ही डालता है। तो ये मैं श्रोताओं को मैं चाहता हूँ कि बात ध्यान से सुने और अपने दिमाग में उसको हमेशा के लिए स्थापित कर
0: जी
1: दे।
0: जी जी ये तो बस एक पेस्टिसाइड की तरह इसको जो इस्तेमाल किया जाता है वो केवल उतनी बात अच्छी है तंबाकू की, ये कह सकते हैं बस,
1: बाकी
0: बाकी कुछ
1: यूज
0: नहीं। चलिए एक और आपसे बात जाननी थी कि आप BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और 2014 से आपने एक मुहिम चलाई थी तंबाकू विरोधी, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट लाइन में जितने लोग काम करते हैं, खासतौर से जो ड्राइवर्स होते हैं बस के और ट्रकों के ड्राइवर्स होते हैं, इन लोगों में ज्यादा लत होती है तंबाकू की। तो आपने जो मुहिम चलाई है इसके विरोध में, तो उसके 12 साल हो गए, क्या फायदे आपको नजर आए?
1: या तो मैं श्रोताओं को बताऊं कि तंबाकू में 7,000 अलग अलग प्रकार के केमिकल्स रहते हैं,
0: ओ सात
1: रसायन,
0: हजार
1: 7,000।
0: रसायन ओ
1: जब कोई भी उसको कंज्यूम करता है तो वो शरीर में जाके अलग अलग अब बीमारियां करते हैं, जैसे कि सिंपल हार्ट बीट्स बढ़ जाती है,
0: जी
1: ब्लड प्रेशर बढ़ता है,
0: हाँ
1: हार्ट अटैक
0: हाँ
1: आ सकता है, देन लकवा मार सकता है, अपने जो बोन्स है वो वीक
0: जी
1: हो जाते हैं,
0: ओहो
1: और तंबाकू खाने वाले लोगों को बैक पेन या शोल्डर पेन या फ्रैक्चर के भी प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा तंबाकू की वजह से TB सरी की बीमारियाँ होती है, और
0: ओ
1: सबसे डेंजर जैसे कि कैंसर,
0: कैंसर
1: पर्टिकुलरली मुंह का कैंसर। तो ये सब बीमारी की वजह से हमारे पास हमारे एम्प्लॉयज जो कर्मचारी उसकी लत के वजह से पीड़ित थे, और
0: जी
1: उसके वजह से हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन भी कम हो रहा था बिकॉज बीमारी की वजह से वो काम पे नहीं आ सकते थे। तो हमने ये सब चीज़ को देख के हमने 2014 में तंबाकू मुक्त बेस्ट ये अभियान शुरू किया, और
0: तंबाकू
1: हमने
0: मुक्त बेस्ट
1: बीएसट
0: अच्छा
1: और आज तक उसको हमने कंटिन्यू किया है। तो 12 साल के आज ये अभियान को हो गए,
0: जी जी
1: तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये 12 साल में 5,000 हमारे कर्मचारी ने तंबाकू की व्यसन परमानेंटली छोड़ दिया है।
0: वाह
1: उसके अलावा एक जो सर्वे है उसको हम गेट्स बोलते हैं, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे,
0: अच्छा
1: उसके मुताबिक कि सरकार अगर 100 रुपीज़ टैक्स लेती है तंबाकू के ऊपर तो सामने 816 रुपया का हमें अतिरिक्त भार हमें भुगतना पड़ता है। वो
0: ओहो
1: जो भार है मेनली तंबाकू की वजह से जो बीमारियां होती है उसके
0: जी
1: ट्रीटमेंट के लिए, और दूसरा जो बीमारी की वजह से लोग काम पे नहीं जाते या प्रोडक्टिविटी लॉस के हिसाब से
0: जी
1: ये नुकसान। तो 12 साल में हमने देखा है कि

0: बीमारियां कम हो गई, उसका जो ट्रीटमेंट का खर्चा कम हो गया, बीमारियां कम हो गई, इसलिए सिकनेस एब्सेंटिज्म हमारे कम हो गया, और इसके वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और रेवेन्यू भी बढ़ गया, और साथ साथ में बीमारियां कम हुई है तो जो उसकी वजह से मॉर्टेलिटी थी
1: जी,
0: जो डेथ, वो भी हमारे इधर कम हो गई है, कैंसर के प्रमाण हमारे उधर कम हो गए, तो लोगों में एक अच्छी भावनाएं तैयार हुई है तंबाकू के विरुद्ध में। तो ये बीमारियां कम होने से ये जो लोग ठीक हो रहे हैं या जो बीमार कम पड़ रहे हैं, तो ये नोटिफाई किया गया और हमारी जो अभियान को नेशनली और इंटरनेशनल भी रिकॉग्निशन मिला है, एक्नॉलेज किया गया, अवार्ड भी मिला है।
1: क्या बात है।
0: तो ये तो मैं चाहता हूँ कि पूरी भारत में ऐसे अभियान अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में
1: चलाए जाए
0: जो लोग अच्छे हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े हमारी।
1: रूप से आप सभी, आप और आपकी पूरी टीम जो ये मुहिम चला रही है, अभियान चला रहे हैं, आप इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। पुरस्कार भी आपको मिल चुका है और काफी उपलब्धियां रही इस अभियान के। बेसिक एक बहुत ही सवाल ये है कि लोग क्यों खाते हैं तंबाकू, क्या होता होगा, ये नशे की शुरुआत कैसे होती है और वो खाने के बाद क्या उन्हें महसूस होता होगा कि वो फिर वो बार बार उसे खाने लग जाते हैं।
0: बेसिकली वो तंबाकू

0: आप और आपकी पूरी टीम जो
1: हाँ
0: ये मुहिम चला रही है, अभियान चला रहे हैं, आप
1: यस
0: इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं।
1: थैंक यू
0: पुरस्कार भी आपको मिल चुका है
1: यस
0: और काफी उपलब्धियां रही इस
1: यस
0: अभियान के। बेसिक एक बहुत ही सवाल ये है कि लोग क्यों खाते हैं
1: यस
0: तंबाकू, क्या होता होगा, ये नशे की शुरुआत कैसे होती है, और वो खाने के बाद क्या उन्हें महसूस होता होगा कि फिर वो बार बार उसे खाने लग जाते हैं।
1: बेसिकली वो तंबाकू खुद से तो कोई खाता नहीं है।
0: जी
1: मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि पीयर प्रेशर, स्कूल कॉलेज के ज़माने से दोस्त खा रहा है,
0: अच्छा
1: कलीग खा रहे हैं, ले लेना ले
0: अच्छा
1: लेना, तो छोटी
0: ओ
1: छोटी शुरुआत छोटे से होती है। लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक रीज़न ऐसा है, जब तंबाकू का सेवन किया जाता है
0: जी
1: आइदर स्मोक से या स्मोकलेस से, तो अपने ब्रेन में एक केमिकल्स जो है
0: जी
1: वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। वो केमिकल का नाम है डोपामिन,
0: ओके
1: और डोपामिन जो कहते हैं इसको हैप्पीनेस
0: हाँ
1: हार्मोन
0: हाँ
1: भी बोलते हैं।
0: जी
1: वो जब डोपामिन का लेवल ब्रेन में बढ़ता है तो लोग स्ट्रेस भी महसूस फील करते हैं,
0: हाँ हाँ
1: उसको खुशी महसूस करते हैं, और सिंपल भाषा में बोले तो किक आती है उनको,
0: ओ
1: और किक के वजह से
0: हाँ
1: लोग ये पर्टिकुलर ड्राइवर्स ये किक
0: हाँ
1: के वजह से ये तंबाकू का सेवन करते हैं। तो ये जो देन शुरुआत में बहुत कम मात्रा में तंबाकू की सेवन, बहुत कम मात्रा में डोपामिन लेवल बढ़ता है,
0: अच्छा
1: लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे आगे ये लत बढ़ती है तब वो डोपामिन लेवल बढ़ता है, तब तंबाकू का लेवल कंजम्पशन की मात्रा भी बढ़ जाती है।
0: अच्छा
1: उसको कहते हैं कि निकोटिन रिसेप्टर, डोपामिन रिसेप्टर्स
0: हाँ
1: वो जो है
0: हाँ
1: वो रजिस्ट हो जाते हैं, तब थोड़ा भी डोपामिन बढ़ने के लिए ज़्यादा मात्रा तंबाकू की कंज्यूम करने की जरूरत पड़ती है। तो ये विशेष साइकिल तैयार होती है।
0: यानी
1: और
0: पहले 1 ग्राम खाने पर भी जो खुशी मिलती थी
1: हाँ
0: वो 10 ग्राम खाने के बाद भी नहीं
1: नहीं
0: मिलती
1: मिलती
0: अब,
1: है
0: और
1: आगे
0: फिर वो
1: जाके
0: मात्रा बढ़ती जाती है।
1: मरते बाद, इसलिए वो उसकी लत लगती जाती है और पेशेंट
0: ओहो
1: उसके पूरी अधीन हो जाता है, उसकी पूरे डिपेंडेंस तैयार हो जाती है, और देन वो बीमारियां शुरू होती है।
0: अच्छा, फिर वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक बार लत लग जाए तो फिर वो कौन कौन सी बीमारियां, बहुत लंबी लिस्ट है वो
1: यस
0: बीमारी
1: बहुत
0: की।
1: बड़ी लिस्ट है। शुरुआत में लोगों को लगता है कि कैंसर, कैंसर ठीक है होता है, 100%
0: हाँ
1: होता है
0: हाँ
1: वो, लेकिन उसको टाइम लगता है।
0: जी
1: लेकिन उससे पहले जो होते हैं कि
0: हाँ
1: मैंने पहले बताया कि पहला तो जब तंबाकू खाते हैं तो पहला
0: जी
1: हमारी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है और कोई वो नोटिस नहीं करता है,
0: हाँ हाँ
1: हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, देन ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, देन ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है देन डेफिनेटली वो हार्ट पे उसकी असर होने लगती है, तो देन हार्ट अटैक आने के रिस्क बढ़ जाती है। देन जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो पैरालिसिस,
0: पैरालिसिस होता
1: उसके
0: है।
1: भी जब तंबाकू कंज्यूम करते हैं तो हमारे जो खाने की जो पाचन शक्ति है वो पुअर हो जाती है, और उसके
0: अच्छा
1: वजह से लोग उनको अपाचन समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की दिक्कत होती है। जब ये अपाचन होता है तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट विटामिन्स या
0: हाँ
1: कैल्शियम, मिनरल्स जो एब्जॉर्ब होने चाहिए वो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, और उसके वजह से पर्टिकुलरली कैल्शियम जो बोलते
0: डॉक्टर
1: हैं
0: साहब, आप तो बता रहे हैं तंबाकू खाने का ये असर है,
1: ये,
0: मगर
1: लेकिन ये
0: कई
1: साइड
0: लोगों को
1: ये
0: देखा गया है
1: हाँ
0: कि वो जब तक वो तंबाकू नहीं खा लेते सुबह सुबह चाय पीने के बाद, या सिगरेट नहीं पी लेते, तब तक उन्हें हाजत नहीं आती और वो टॉयलेट नहीं जाते।
1: वो एक मिथ है, वो ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ मिथ, इट्स अ मिथ जस्ट। अपचन होता है तो कैल्शियम, सबसे बड़ा कैल्शियम का प्रॉब्लम शुरू होता है, और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, इसलिए वजह से बेसिकली हड्डियाँ और मसल्स में कैल्शियम की बहुत नीड रहती है, जरूरत रहती है,
0: बिल्कुल,
1: तो ये मसल्स एंड हड्डियाँ भी वीक हो जाती है, और ऐसे
0: बोन
1: लोग
0: डेंसिटी कम हो
1: नहीं
0: जाती है।
1: बोन डेंसिटी कम हो जाए, तो ऐसे
0: अच्छा
1: ऐसे जो तंबाकू जो खाने वाले लोगों में बैक पेन, मसल्स पेन और फ्रैक्चर की मात्रा भी ज़्यादा रहती है। देन
0: अच्छा
1: तंबाकू खाने की वजह से हमारी जो रोग प्रतिरक शक्ति है, इम्यूनिटी बोलते हैं,
0: जी
1: वो
0: जी
1: कम हो जाती है। और उससे अलावा लोग ड्यूटी पे रहते हैं तो लंच या डिनर या स्किप करने के लिए भी लोग तंबाकू
0: अच्छा
1: खाते हैं,
0: ओ
1: तो ये सब की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। उसके वजह से जैसे कि जो क्षय रोग या टीबी शरीर की बीमारी का उनको ज़्यादा खतरा रहता है,
0: जी
1: और ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द एंड या नॉट द लीस्ट ये कैंसर की बीमारी।
0: जी जी
1: अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि तंबाकू को सबसे ज़्यादा मुंह का कैंसर होता है, और भारत देश पूरे विश्व में
0: जी
1: तंबाकू की वजह से होने वाले मुंह
0: कैंसर के नाम
1: के कैंसर के प्रथम नंबर पे आता है,
0: ओहो
1: और ये कलेक्टिवली जो भी मैंने बीमारियां बोली उसके वजह से भारत में हर दिन 3,500 लोग की मृत्यु होती है। तो ये श्रोताओं को जानना बहुत जरूरी है,
0: ये बहुत दर्दनाक
1: दर्दनाक चीज है, मैं
0: मगर
1: तो
0: सत्य है।
1: लेकिन ये
0: अब
1: सत्य है,
0: जी
1: और
0: जी
1: ये
0: जी
1: मैं नहीं बोल रहा हूँ,
0: हाँ
1: ये ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के रिपोर्ट में लिखा है।
0: जी जी जी, हमने ये भी सुना है डॉक्टर साहब कि तंबाकू खाने से डायबिटीज होता है, मधुमेह।
1: यस, इस पे थोड़ा बाहर दूंगा।
0: जी जी,
1: कि पहला तो हम समझ लेते कि पूरी दुनिया भर में,
0: हाँ,

0: दो देश में सबसे ज्यादा तंबाकू प्रोडक्शन होता है, उसका कंज्यूम भी होता है,
1: हाँ
0: वो है, एक है चीन और दूसरा नंबर पे हमारा भारत देश है।
1: अच्छा
0: और दोनों देश में ही सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट है, मधुमेह के पेशेंट है।
1: ओ अच्छा
0: तो ये इनडायरेक्टली कोरिलेशन है
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: तंबाकू वजह से डायबिटीज हो सकती है। आज की तारीख में देखें तो पूरी दुनिया में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज भारत में पाए जाते हैं। पहले
1: जी
0: 2 साल पहले चाइना में था, अभी भारत में हो गया, और दोनों में ज्यादा ही कंजम्पशन होता है। जैसे मैंने बताया कि तंबाकू में 7,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स रहते हैं, वो कंज्यूम करने के बाद हमारे जो डायबिटीज का जो मेन जो कंट्रोल मैकेनिज्म है इंसुलिन,
1: जी।
0: ये जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को और इंसुलिन के फंक्शन को ये तंबाकू ऑल्टर करता है।
1: अच्छा
0: और बहुत सारे रीजंस है, और इसके वजह से शुगर कंट्रोल मैकेनिज्म हमारी बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है।
1: अच्छा
0: अगर आप WHO की साइट पे जाओगे और डायबिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन मांगोगे तो
1: जी
0: उसके
1: जी
0: जो 5 प्रमुख कारण है उसमें 5वां कारण है तंबाकू का व्यसन।
1: अच्छा
0: तो लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि तंबाकू वजह डायबिटीज भी होती है।
1: ओहो, मगर जरूरी नहीं कि डायबिटीज है तो उसको तंबाकू की लत होगी,
0: नॉट नेसेसरी, बट तंबाकू खाने वालों को रिस्क ज्यादा रहती
1: इसकी
0: है।
1: रिस्क है, तो डायबिटीज हो सकता है
0: यस,
1: उसे।
0: हो सकता है। और वो डायबिटीज मतलब वो बहुत कड़वी बीमारी है।
1: जी। तंबाकू अगर कोई किसी को अगर उसका नशा है, लत है और वो छोड़ना चाहे, तो निश्चित रूप से बहुत उसके फायदे उसको मिलेंगे,
0: यस यस
1: मगर उसके विड्रॉल सिम्टम्स भी होते होंगे।
0: यस
1: तो हमें दोनों बातें बताइए,
0: या
1: छोड़ने के बाद में विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं,
0: यस
1: कैसे होते हैं,
0: यस
1: और
0: यस
1: एक बार वो छोड़ दे, निश्चय कर ले, अपना निर्धार पक्का हो जाए उसका कि छोड़ना है, तो उसके क्या-क्या फायदे उसे
0: यस
1: होने वाले हैं।
0: तो पहला हम उसके फायदे के बारे में बोलेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जब तंबाकू अगर सपोज वो सिर्फ हर 1 घंटे में खाता है,
1: जी।
0: या किसी बहुत बार तो वो जब नींद से सुबह में उठता है तो अब कितने समय में उसको तंबाकू की जरूरत पड़ती है, वो एक भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फैक्टर है।
1: अच्छा
0: उसकी उसकी लत के बारे में हमें मालूम पड़ता है कि
1: हाँ
0: उठने के बाद कितने समय के बाद उसको तंबाकू खाने की जरूरत पड़ती है। तो जब तंबाकू उस समय पर नहीं खाया तो पहला तो उसकी हार्ट बीट्स नॉर्मल रहती है,
1: अच्छा,
0: वो बहुत जरूरी है
1: बहुत
0: हार्ट हेल्थ
1: जरूरी,
0: के लिए,
1: बेशक बहुत
0: हृदय
1: जरूरी,
0: की स्वास्थ्य के लिए उसकी हार्ट बीट्स नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है।
1: हाँ
0: तो वो नॉर्मल रहने लगती है।
1: जी
0: देन उसके बाद ब्लड प्रेशर, जो इसलिए अब हम जब भी एज अ डॉक्टर हम जब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं
1: हाँ
0: तब हम उसको पूछते हैं अगर तंबाकू आप एडिक्ट हो तो आधे घंटे के बाद ही हम आपका BP चेक करेगा अगर आपने, क्योंकि हमें मालूम है वो ज़्यादा ही दिखाने वाला है। तो
1: अच्छा
0: इसलिए तो इनडायरेक्टली जब तंबाकू का लत या एडिक्शन छोड़ते हो तो
1: हाँ
0: BP नॉर्मल होना शुरू हो जाता है।
1: अरे वाह,
0: तो ये दोनों हार्ट बीट्स और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है तो 100 का हार्ट अटैक के रिस्क भी कम हो जाते
1: कम हो
0: हैं।
1: जाती है। जी।
0: देन मैंने बताया कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होने लगती है, हमारी जो पाचन शक्ति है वो
1: वो
0: इम्प्रूव हो
1: सुधरने
0: जाती
1: लगती
0: है,
1: है। हाँ
0: हमारे हड्डियाँ हमारे मसल्स वो स्ट्रांग होने लगते हैं।
1: वाह,
0: देन आगे जाके 100 का तंबाकू के जो खाने वाले जो सबसे डेंजर प्रॉब्लम है वो है कैंसर, उसकी भी
1: जी,
0: रिस्क कम हो
1: उसकी
0: जाती
1: रिस्क
0: है।
1: कम हो जाती है। हाँ
0: देन डायबिटीज में हमारे पास लोग हैं जिन्हें
1: जी
0: तंबाकू छोड़ दी है
1: हाँ
0: उनकी डायबिटीज की गोलियां भी बंद हो गई क्योंकि शुगर भी नॉर्मल होने लगी है अभी उसकी।
1: अच्छा
0: ऐसे बहुत सारे हमारे पास पेशेंट है
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: तंबाकू की लत छोड़ने के बाद उनकी डायबिटीज की गोलियां भी बंद हो गई है।
1: क्या बात है।
0: तो ये सब उसके फायदे हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि इसके क्या फायदे हैं छोड़ने के बाद।
1: जी बिल्कुल।
0: तब यस ये जरूरी है कि जब तंबाकू में जो 7,000 केमिकल है उसमें से एक केमिकल का नाम है निकोटीन,
1: जी
0: और
1: जी
0: निकोटीन की वजह से हमारे ब्रेन में डोपामिन बढ़ता है और उसकी वजह से उसकी लत लगती है।
1: अच्छा
0: तो जब तंबाकू सडनली आप छोड़ देते हो, लोग कहते हैं कि हम आज मैं अगर 5 बार खाता हूं तो कल 4 बार
1: हाँ
0: खाऊंगा, तीन तीन,
1: हाँ
0: तो ऐसा कभी नहीं होता। उसको झटके से ही छोड़ना है
1: अच्छा
0: तो ही फायदा होगा, तो ही उसकी लत छूटेगी। तो जब झटके से छोड़ते हो तब आपको निकोटीन का विड्रॉल सिम्टम 100% महसूस होएगा।
1: शरीर जो है अपनी प्रतिक्रिया देता
0: यस
1: है।
0: वो महसूस होगा
1: हाँ
0: ही,
1: हाँ
0: वो जो विड्रॉल सिम्टम जैसे कि वो वीकनेस आ जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा, पर्टिकुलर
1: अच्छा
0: ड्राइवर कंडर को ये बहुत होता था हमारे
1: हाँ
0: पास।
1: हाँ हाँ
0: तो ये लेकिन यहाँ पे जरूरी है कितना टाइम तक ये विड्रॉल सिम्टम रहता है,
1: अच्छा
0: वो 2 दिन से ज्यादा 2 हफ्ते चलता है, उसके बाद अपनी बॉडी खुद को
1: नॉर्मल हो
0: एडजस्ट करने
1: जाता है।
0: लगती है,
1: जी।
0: उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है,
1: तो पूरा शरीर अपने जो है सामान्य स्थिति में आ
0: वो
1: जाता
0: आ
1: है
0: जाता है, बस
1: जैसा तंबाकू खाने से पहले
0: पहले
1: था।
0: था वैसा है।
1: वाह,
0: बस थोड़े दिन के लिए अपने को सहन करना है और वो समय अगर निकाल डाला तो वापस कभी तंबाकू खाता
1: देखिए
0: नहीं।
1: ये कितनी जरूरी बात है।
0: यस
1: हमारे श्रोताओं को, उनमें से किसी को अगर ये लत है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो छोड़ना चाहते हैं तो तुरंत छोड़ दें,
0: झटके से छोड़ना है,
1: झटके से एक
0: बस
1: साथ,
0: बस
1: और उसके बाद तंबाकू
0: 2 दिन से
1: के
0: दो
1: बारे में सोचना ही
0: हफ्ते
1: नहीं, दो
0: बस

0: हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा दो हफ्ते,
1: ज्यादा से ज्यादा दो
0: ये लक्षण रहेंगे,
1: बस विड्रॉल सिम्टम्स,
0: विड्रॉल सिम्टम्स, और उसके बाद वो सामान्य
1: सामान्य हो जाएगा, अपनी बॉडी अपने आप को रिकवर करती है।
0: वाह वाह, तो फायदे हमने जान लिए। हम तंबाकू की बातें जब होती है तो एक एक्ट है, एक ऐसा नियम है, कुछ वो कानून है, कोप्टा एक्ट कुछ ऐसा कहते हैं।
1: यस,
0: ये क्या होता है, क्या कोप्टा एक्ट क्या है?
1: सी, जैसे तंबाकू की वजह से हमारे पास जैसे सबसे ज्यादा मौतें होती है, खर्चा होता है।
0: जी जी,
1: 100 रुपए के टैक्स के सामने 816 रुपए का हमें खर्चा हो रहा है। तो ये उसको और कम करने के लिए कुछ कानून बनाया है, उसको कोप्टा एक्ट बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म है कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट एक्ट।
0: अच्छा, कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, कोप्टा एक्ट,
1: कोप्टा एक्ट। उसके अंतर्गत आपको पब्लिक प्लेस में तंबाकू का कोई भी प्रकार का सेवन प्रतिबंध है, इज अ पनिशेबल ऑफेंस।
0: जी जी,
1: देन वो खाके पब्लिक प्लेस में थूकना भी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। देन उसके एडवर्टाइजमेंट
0: जी
1: जो होती है, हाँ, वो भी अलाउड नहीं है आपको कोई भी प्रकार के। सो ये एक एक्ट इसलिए लाया है कि लोग एक दूसरे को देख के जो खाते है वो ना खाए और उसकी लत और उसको कम करते जाए हम लोग। उसका फायदा हुआ है, कम हुई है,
0: हाँ,
1: जो लोग खाने वाले परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन जो उसे और हमें आगे लेके जाना है उसको एक्ट को, और अभी कुछ सरकार ने उसको कड़क किया है कि उसके अंतर्गत वो सरोगेसी एड बोलते हैं,
0: अच्छा,
1: उसको भी बैंड किया है,
0: हाँ,
1: कि कुछ नाम सेम रखते हैं लेकिन कुछ अलग प्रोडक्ट रहता है। एक्स तंबाकू का जो प्रोडक्ट था पहले
0: जी,
1: उसको खाली नाम सेम रखते हैं और प्रोडक्ट कुछ अलग रहते
0: होता है, तंबाकू ही है मगर उसको कुछ एक नया नाम और नया रूप दे देते हैं,
1: या तो फिर उसका प्रोडक्ट अलग कर देते हैं।
0: अच्छा,
1: कि जो पहले वो नाम तंबाकू के वजह से के लिए यूज होता था, अब वो तंबाकू की वजह से नहीं होते, कुछ अलग प्रोडक्ट जो नॉर्मली लोग खाते पीते हैं उसके लिए, तो सरोगेट एड बोलते हैं, उसको भी बैन किया है।
0: जी, जी।
1: तो ये इसका उद्देश्य यही है कि तंबाकू का कंजम्पशन कम हो जाए, उसकी वजह से जो बीमारियां है कम हो जाए और खर्चे भी कम हो जाए।
0: तंबाकू तो नहीं मगर तंबाकू जैसे और तंबाकू इस्तेमाल करके कुछ नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इसी की अभी बात कर रहे थे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि लोग सीधे सीधे तंबाकू तो नहीं खाते मगर ऐसे प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्टली जिससे तंबाकू उनके शरीर में जाता है।
1: जैसे अभी बहुत कुछ आ गया है, इनहेलेशन आ गया है,
0: हाँ हाँ,
1: भले सिगरेट नहीं पीते लेकिन कुछ इनहेलेशन तरीका ई सिगरेट आ गई है, उसको भी अलाउड नहीं है, वो भी हानिकारक है।
0: जी जी,
1: उसमें हानिकारक।
0: तो ये जो तंबाकू ना खाके अगर ये ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी उतना ही धोखा, उतना ही रिस्क। जो व्यक्ति तंबाकू नहीं खाता वो गलती से उसके शरीर में तंबाकू चला जाए तो पहला रिएक्शन बॉडी का तो ये होता है कि जैसे कभी पान खाते हुए पान में किसी ने हल्का सा तंबाकू डाल दिया और वो हमने खा लिया तो तुरंत उल्टियां होने लगती।
1: यस यस यस, और बहुत बार तो जैसे,
0: लेकिन जिनको लत लगती है उनको पहली बार ऐसा नहीं होता,
1: उनको नहीं होता। ये जो आपने बताया वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है पैसिव स्मोकिंग बोलते उसको।
0: हाँ,
1: हस्बैंड स्मोक करता है,
0: जी जी,
1: उसके वाइफ है या उसके बच्चे है,
0: हाँ,
1: तो उसमें भी वो धुआं जाता है ना,
0: बिल्कुल, हाँ,
1: वो धुआं जाता है। देन या घर में कोई तंबाकू खाता है तो उसको देख के बच्चे भी उसके खाने लगते हैं।
0: अच्छा,
1: तो ये बहुत जरूरी है। तो पैसिव स्मोकिंग के वजह से इट हैज बीन एस्टैब्लिश कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, जैसे कोई एक फैमिली में एक हस्बैंड स्मोक करता है और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उसके वो धुआं उसको जाए तो उसके बच्चे को भी खतरा है
0: जी,
1: जो अभी तक दुनिया में आया नहीं है, उसको भी खतरा है,
0: तो उस पर भी असर हो रहा है,
1: बहुत खतरा है उसके लिए, सबसे ज्यादा खतरा है उसको तो।
0: जी,
1: द पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं उसको।
0: हाँ,
1: ये सिर्फ चीजें लोगों को आई डोंट नो मालूम है या उसको इग्नोर करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, आई डोंट नो, बट लोगों को मालूम होना जरूरी है ये बातें।
0: अच्छा, हमने सुना है कि कुछ दवाइयों के तरीके में कुछ तरह के मेडिसिन है उसमें तंबाकू का इस्तेमाल भी होता है?
1: नहीं, आई डोंट थिंक सो।
0: अच्छा,
1: आई डोंट थिंक सो।
0: या कुछ लोगों ने कहा कि हमें तो फला डॉक्टर साहब ने कहा है कि पान में थोड़ा तंबाकू खा लिया करो ताकि आपका पेट अच्छा रहे।
1: नहीं, ये सब मिथ्स है, मिथ्स। अच्छा, है, मिथ्स है,
0: ऐसा कुछ।
1: सी, तंबाकू इतनी क्वांटिटी इज नॉट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी।
0: बस वो
1: बस उसको छोड़ना ही है ना, उसको नजदीक जाना ही नहीं उसके। बस
0: हाँ,
1: बस
0: हाँ,
1: जैसे शुरुआत में बताया, छोटा जीव है तो जल्दी मरेगा, बड़ा है तो बाद में मरेगा।
0: मरेगा जरूर,
1: मरेगा जरूर।
0: तो इस कठोर सत्य को, इस कटु सत्य को जो हमें जान लेना चाहिए,
1: एक्सेप्ट करना है हमें,
0: एक्सेप्ट करना है। कोई जादुई मिक्स आपने बनाया है?
1: यस, उसको हमने,
0: ये कैसे हुआ?
1: Yes,
0: कब हुआ?
1: Yeah,
0: और इसका क्या आपको परिणाम कैसा देखने को मिला?
1: उसको हमने नाम दिया मैजिक मिक्स।
0: अच्छा,
1: या मैजिक चूर्ण,
0: जादुई चूर्ण,
1: जादुई चूर्ण।
0: वाह,
1: जैसे अभी तंबाकू की जो एडिक्ट लोगों में है, दो प्रकार की एडिक्शन है। एक है साइकोलॉजिकल एडिक्शन जो 90% लोगों में, 10% लोग में फिजिकल डिपेंडेंसी है।
0: अच्छा,
1: तो 90% लोग बस उसको वो कलर का

0: चूरण मांगता है और उसको हाथों में घसना है और खाना है, और उसका जो कैनिस्टर है या डब्बी बोले जो महाराष्ट्र में मिलती है, तो वो उसको दिख गई तो उसको लगता है मैंने तंबाकू खा लिया।
1: अच्छा।
0: तो हमने वो बेस को ध्यान में रखते हमने चूरण बनाया है जिसमें दालचीनी, अजवाइन, जीरा, बड़ी शोप और लवंग का इस्तेमाल किया है। जब उसको आप ग्राइंड करोगे तो हुबहू तंबाकू सरीका ही लगेगा।
1: अच्छा।
0: और जो चूने की जगह पे हमने राइस पाउडर यूज करते हैं उसमें।
1: अच्छा।
0: तो जब आप उसको हाथ में लेके घसोगे तो फील सेम ही आएगा कि आप तंबाकू के घिस रहे हो।
1: जो लोग तंबाकू मल के खाते
0: हैं तो उसको कलर भी वैसा ही है उसका।
1: हाँ, हाँ।
0: ना उसमें साइंस ऐसा है कि जो दालचीनी है इसकी प्रॉपर्टी है कि जो निकोटीन के विड्रोल को और कम करती है।
1: अरे वाह,
0: तो साइंस भी है उसके पीछे।
1: क्या बात है।
0: तो इसके वजह से हमने चूरण बनाया, उसका नाम रखा है मैजिक मिक्स।
1: मैजिक मिक्स,
0: मैजिक मिक्स,
1: वाह वाह वाह।
0: और वो मैजिक ने सच में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैजिक किया है।
1: हाँ।
0: और वो खा के बहुत सारे लोगों ने तंबाकू छोड़ दिया है।
1: वाह वाह।
0: तो मैं लोगों को बोलूंगा कि उसकी लिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब में।
1: अच्छा।
0: मैजिक मिक्स मेरा नाम डाल के आपको मिल जाए कैसे बनाना है।
1: हाँ।
0: हमने उसको कॉपीराइट किया है, आप कोई भी घर पे बना सकता है।
1: अच्छा।
0: और उसको यूज करे और अपनी जब भी तलब लगे तंबाकू की जगह उसको खाए।
1: मतलब ये मैजिक मिक्स कोई कमर्शियल प्रोडक्ट?
0: नो, इट इज नॉट कमर्शियल प्रोडक्ट।
1: ये सबके लिए है, सबके फायदे,
0: सबके फायदे के लिए। हमने उसको खाली कॉपीराइट किया कि उसको कमर्शियल यूज कोई ना करे उसको।
1: अच्छा। हाँ,
0: हाँ। आपके लिए ये, आप खाओ, खुद बनाओ,
1: सबके लिए ये मुफ्त है, फ्री है,
0: खुद बनाइए घर पर खाइए।
1: तो ये फॉर्मूला जो है वो यूट्यूब पे देख करके बनाया जा सकता है।
0: और मेन बात उसको खा के थूकना भी नहीं है।
1: हाँ।
0: तो स्वच्छ भारत अभियान को भी हम प्रमोट कर रहे हैं उससे।
1: क्या बात है, वाह वाह।
0: उसके खाने के बाद वो निगलना ही है क्योंकि वो निगलने के बाद बहुत सारे बेनिफिट देता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: सब ये अपने गर्म मसाले फायदेकारक ही है हमारे बॉडी को,
1: हमारे सुनने वालों के बेनिफिट के लिए।
0: यस।
1: हम इस मैजिक मिक्स का जो फॉर्मूला है उसे एक बार दोहराते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आपने डाली?
0: दालचीनी,
1: दालचीनी,
0: अजवाइन,
1: अजवाइन,
0: जीरा,
1: जीरा,
0: बड़ी सौंफ,
1: सौंफ,
0: सौंफ, और एकाद लौंग।
1: अच्छा।
0: उसको मिक्स करके,
1: लौंग तो एक ही ले
0: एक
1: रहे हैं,
0: बाकी
1: जितनी बाकी
0: इक्वल क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी,
1: इक्वल क्वांटिटी,
0: इक्वल वन।
1: अच्छा।
0: उसको ग्राइंड करना है मिक्सचर में, मिक्सचर होगा वो बहुत तंबाकू सरीका ही लगेगा।
1: अच्छा।
0: लेकिन उसमें तंबाकू नहीं है। चूने की जगह पे राइस पाउडर यूज करने का, वो भी घर चावल का आटा।
1: अच्छा।
0: तो ये आप करके उसको सेम कनेक्टर में
1: तंबाकू मलने की आदत है,
0: ऐसे ही मल के खाओ,
1: मल के जो है अपना पूरा एक्शन कंप्लीट करो,
0: एक्शन कंप्लीट,
1: और उसके बाद चाहे तो उसको होठों में दबा ले थोड़ी देर,
0: या दबा लो
1: उसका जो जूस निकलेगा
0: वो
1: आपके शरीर के लिए फायदेमंद।
0: उसको थूकना भी नहीं है।
1: क्या बात है, बहुत ही जादुई बात है ये तंबाकू के बारे में, इस लत को छोड़ने के लिए जो है कारगर सिद्ध होगी। तो डॉक्टर साहब, अब कार्यक्रम के आखिर में कुछ तंबाकू छोड़ने के बारे में कुछ पते की बात हो जाए, आप क्या बताना चाहेंगे इस मौके पे?
0: मैं भारत के वासियों को बताना चाहता हूँ कि तंबाकू कभी भी हमें फायदा नहीं करता है, उससे सिर्फ नुकसान नुकसान नुकसान ही होता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक भी नुकसान होता है।
1: जी जी,
0: वो लोगों को मालूम नहीं है। ऐसा सर्वे हुआ है कि अगर आपने तंबाकू की लत छोड़ दी तो आपका जो एक इंडिविजुअल घर की जो आर्थिक परिस्थिति 10% इंप्रूव हो जाती है।
1: क्या बात है। मुझे एक और बात याद आई कि मेरे कॉलेज के दिनों में मेरा एक दोस्त था।
0: हाँ।
1: और वो कृषि बैकग्राउंड से था।
0: हाँ।
1: उसके घर वाले जो है खेती करते थे। हाँ। तो वो कहता है वो तंबाकू खाया करता था बहुत नियमित रूप से।
0: हाँ।
1: और वो कहता है मुझे सांप ने अगर काट लिया तो मुझे जहर नहीं चढ़ेगा।
0: हाँ।
1: तो ये कितना बड़ा मिथ है, आप जरा
0: मिथ सी है, सब मिथ सी है,
1: बड़ी गलत,
0: बहुत गलत फहमी है। ये तंबाकू छोड़ना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: वो सिर्फ वो इंडिविजुअल को नहीं खाता है, पूरी फैमिली को बर्बाद कर देता है। जैसे हमने देखे, आप किसी को अगर देखना है तो टाटा हॉस्पिटल में जाके एक बार चक्कर मार के आए बस, खाली समझ जाएंगे ये तंबाकू से क्या गड़बड़ होती है।
1: जी,
0: लोगों को जिंदा है लेकिन मुंह में खाना नहीं खा सकते, नाक में नलीट से खाना खाया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने फैमिली को, अपने देश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए
1: जी,
0: उसको मजबूत करने के लिए, शारीरिक और मानसिक और आर्थिक मजबूत करने के लिए हमें तंबाकू की लत को छोड़ना ही है।
1: और कोई भी फॉर्म हो तंबाकू का,
0: कोई भी फॉर्म,
1: या तो कच्चा तंबाकू है या वो उसकी पाउडर
0: नसवाली
1: है,
0: स्मोकिंग है,
1: या स्मोकिंग है,
0: कोई भी प्रकार का
1: तंबाकू, किसी भी तरह से
0: बस उसको छोड़ दो, बस खत्म करो, अपनी फैमिली और अपने देश के लिए उसको छोड़ दो।
1: बहुत ही अच्छी बात है, आज तंबाकू विरोध जो है इसके बारे में आपने बताई, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी,
0: थैंक यू,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। तंबाकू की वजह से भारत में हर दिन 3,500 लोगों की मृत्यु होती है। तंबाकू की वजह से मनुष्य उसकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति

में पड़ जाती है और उसके वजह से उनकी फैमिली बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है। तो मैं आज तंबाकू विरुद्ध दिवस के निमित्त श्रोताओं को अपील करूंगा कि तंबाकू की व्यसन को पूरी तरह छोड़ दे और झटके से छोड़ दे और अपने फैमिली को और हमारे देश को मजबूत बनाए। धन्यवाद।

विश्व तंबाकू दिवस पर अभी आप सुन रहे थे BEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल कुमार सिंगल से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत। आज का मैटिनी शो बस यहीं तक, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि जाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक

0: यात्रा है।
1: दिस इज ऑफिशियल विजिट।
2: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
3: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
2: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजासुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। गुजरात टाइटंस पहुंची अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज अभिनेता परेश रावल का जन्मदिन है। बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं हम उन्हें और उनकी फिल्मों के गाने आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे। भागम भाग इस फिल्म का गाना रेमो फर्नांडिस और सुजेन की आवाजों में, समीर के बोल संगीत प्रीतम का।

अंतराल के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आंखें फिल्म का गाना, नितिन रायकवार आदेश और अरुण बख्शी की आवाजों में, नितिन रायकवार के बोल, संगीत है जतिन ललित का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये है राजा फिल्म का गाना, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये हंगामा फिल्म का गाना शान और साधना सरगम की आवाजों में। समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने करते।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।

0: हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
1: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: हे धन्य जवानों।

यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अगला गाना गोलमाल, इस फिल्म का गाना शेखर और स्नेहा पंत की आवाजों में, विशाल दादलानी और कुमार का लिखा हुआ गाना, संगीत है विशाल शेखर का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अतिथि तुम कब जाओगे, इस फिल्म का गाना अनुपम आमोद की आवाज, इरशाद कामिल के बोल, संगीत है प्रीतम का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

के इस सुरीला सफर कार्यक्रम में। कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। दोस्तों, आज जो इबारत या जो टेक्स्ट हमने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है, तो उसको आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं कि एक हसीन शाम को मन किया कि ठंडे ठंडे पानी से नहा लूं, ये सोचते हुए कि ऐ दिल तू किस पे आ गया है। मन में उथल पुथल थी कि पीते पीते कभी कभी यूं अंडे का फंडा भी समझ लेना चाहिए, इसलिए मैंने कहा सूरज जरा आपासा। तो उसने कहा आला बर्फी वाला। मैंने कहा जब तक समोसे में आलू रहेगा, इश्के दी चाशनी का बोलबाला रहेगा। इसके बाद मन सोचने लगा हाय रे वो दिन क्यों ना आए। ये आज की इबारत है। एक हमारे साथी लिखते हैं कि इबारत हो या शरारत हो, हमारी ये इनायत है, चलेंगे साथ सफ़र में चाहे कहीं कयामत हो। एक साथी लिख रहे हैं कि शाम तो नहीं, हमारा तो दिन सुबह से ही हसीन बन पड़ा है। सुबह से मौसम अटकेलियां कर रहा है, कभी धूप कभी छांव, कभी तेज़ हवा हल्की सी बूंदाबांदी। इस मौसम का क्या वर्णन करूं, मन सुबह से झूम उठा, ये मौसम का जादू है मितवा, अब दिल पर काबू है मितवा। दोस्तों, आज जो इबारत हमने पोस्ट की उसमें कुछ जो गाने हैं वो खाने पीने की चीज़ों को लेकर है। आपको बता दें कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। आलू को हम एक सब्ज़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे स्नैक्स या बनाने में या फिर जो छोटा मोटा नाश्ता शाम के समय का होता है उसमें आलू का बहुत महत्व होता है। हम सभी को पसंद होता है, चाहे वो समोसा हो, आलू बड़ा हो, या फिर एक कोई सैंडविच हो जिसमें आलू डाला जाता हो, इस तरह के बहुत सारे नाश्ते बनाए जाते हैं आलू से। तो आलू हमारे जीवन में या हमारे रसोई घर में क्या महत्व रखता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, या इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हमें मिल सके, इस बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे जब शाम के नाश्ते की बात होती है तो सबसे पहले हमारा मन करता है कि आलू के पकोड़े खा लिया जाए, या आलू से बनी हुई ऐसे ही किसी नाश्ते की हमें याद आ जाती है। वैसे सबकी पसंद जो है वो अपनी अपनी अलग होती है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पर हम थोड़ी आलू की बातें करेंगे, और इसके अलावा कुछ और भी गीत हम सुनेंगे। सबसे पहले जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो है दुल्हन एक रात की, इस फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, राजा मेहंदी अली खां के बोल हैं। गीत किसका है ये आप हमें बताइए। धर्मेंद्र और नूतन पर फिल्माया गया ये गाना है।

उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया। जी हाँ, शाम का वक्त हो और अगर आपको पता चले कि आपकी पसंद का आलू का बना हुआ कोई बहुत ही मज़ेदार नाश्ता आपके सामने आया है तो आप भी यही कहेंगे ना कि उनको था तो दिल उस पर आ गया है। मदन मोहन का इसमें संगीत है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आलू सब्जियों का राजा है और वो हर किसी के साथ मिलकर बनाया जा सकता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि बेफिक्र और रूमानी शाम की याद दिलाती है आज की इबारत। इसे पढ़कर मन में एक चुलबुली और हास्य से भरी तस्वीर उभर रही है जिसमें खुद से बातें करते करते अचानक से शायरी और फिर खाने पीने की चीज़ों जैसे कि ठंडे पानी, समोसे, बर्फ़ी पर आ जाते हैं। ये बोलचाल की भाषा का एक बहुत ही प्यारा और अनूठा मिश्रण है जो कह रहा है कि जीवन की उलझनों को भी हंसी मजाक के चाशनी में डुबोकर आसान बनाया जा सकता है। जिंदगी में चाहे जितनी समस्याएं हो, हंसी मजाक का स्वाद कभी कम नहीं होना चाहिए। गुजरे हुए उन सुनहरे दिनों की याद इस पूरी इबारत को एक बहुत ही भावुक और प्यारा सा मोड़ दे देती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि हर रोज़ हसीन शाम को इतने लू वाली गर्मी है, शाम को ऑफिस से आने के बाद ठंडे ठंडे पानी से दोबारा शावर में नहाना ही पड़ता है, उसके बाद ही आगे की दिनचर्या शुरू हो पाती है और हम थोड़े से रिलैक्स हो पाते हैं। तो चलिए आपके दिल दिमाग को हम थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और ठंडे पानी से नहाने का इसमें जो मज़ा है वो तो और भी ही। पति पत्नी और वो इस फिल्म का गाना, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, रविंद्र जैन का संगीत।

0: लगता है कोई आया।
1: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब, नहा रहे हैं।

आलू से बना हुआ कोई स्वादिष्ट नाश्ता जब आपके घर में बन रहा हो तो उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, और जब वो सुगंध फैलती है तो ऐसा भी कभी होता होगा ना कि आसपास में आपके कोई पड़ोसी, आपके कोई नाते रिश्तेदार, आपके कोई दोस्त आपका दरवाज़ा खटखटाते होंगे और पूछते होंगे क्या बन रहा है। एक साथी लिख रहे हैं, आलू वो सादगी है जो हर स्वाद में रंग भर देता है, इसलिए हर घर की रसोई में उसकी खास जगह होती है। हर सब्जी उसका साथ पाकर और भी स्वादिष्ट हो जाती है। आलू सच में रसोई का राजा है। आलू न दिखावे में बड़ा है न नाम में, लेकिन काम में सबसे बड़ा है। यही उसकी असली पहचान है, जो हर मौसम सब्जी और हर थाली में फिट हो जाए वही असली राजा कहलाता है। आलू, आलू की कहानी सादगी की जीत है, कम में भी सबसे ज्यादा स्वाद देने की कला है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज मैं आलू की टिक्की बना रही हूँ। एक साथी लिख रहे हैं कि मुझे बटाटा वड़ा और फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है। और एक हमारे साथी जो है उन्होंने हमें अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस की शुभकामनाएं दी है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की खोज दक्षिण अमेरिका में हुई थी और आलू की कहानी वहीं से शुरू हुई थी। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आलू की बात चल रही तो आलू के पराठे, समोसे, पकौड़े से लेकर चिप्स पापड़ तक सभी का स्वाद निराला है। सुबह सुबह आलू के पराठे मिल जाए, दोपहर में आलू की सब्जी और पूरी मिल जाए और शाम को समोसे मिल जाए तो कहना ही क्या। ये सिर्फ आलू ही नहीं, ये हमें सिखाता है कि हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे आलू हर सब्जी में मिलकर इसका स्वाद बढ़ा देता है, वैसे ही हमें जीवन में होना चाहिए, सबके साथ मिलकर चलना चाहिए ताकि हमारा महत्व हमेशा बना रहे। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के बिना भारतीय रसोई अधूरी है। यद्यपि आज आलू भारतीय रसोई का एक अभिन्न अंग बन गया है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से भारतीय मूल की सामग्री नहीं है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू महज एक सब्जी नहीं, ये एक एहसास है। ये वो निश्चल साथी है जो हर दूसरे के साथ अपनी पहचान मिटाकर घुल मिल जाता है। कभी वह गोभी के साथ जुगलबंदी करता है तो कभी मटर के साथ मिलकर एक नया स्वाद रचता है। वह किसी राजा के थाल का हिस्सा भी है और एक गरीब की झोपड़ी में तसल्ली का निवाला भी है। लिख रही, मुझे तो पता ही नहीं आज आलू दिवस है, आज अजीब संयोग बना है, आज हमारी श्रीमती जी ने आलू के पराठे दही के साथ सेवन कर रहे हैं हम। बहुत धन्यवाद आपका। एक साथी लिख रहे हैं कि बेहद खूबसूरत गीत के साथ शुरुआत की है। वैसे आलू दिवस पर हमारे यहाँ आलू पालक टमाटर की सब्जी बनी है, मुझे आलू बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चों को भी ये बहुत पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कि आपका दिल आलू से बनी हुई कौन सी रेसिपी पर सबसे ज़्यादा आता है, कौन सी रेसिपी है जब आप ये कहते हैं कि ये दिल मुझे बता दे कि क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। भाई भाई फिल्म का गाना, गीता दत्त की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत, अशोक कुमार और श्यामा पर फिल्माया गया गाना।

तो बताया क्या आपने कि आपका दिल आलू से कौन सी चीज पर आ गया है? बहुत सारे श्रोताओं ने इतनी सारी बातें लिखी है, लिखते हैं कि लाल टमाटर हरे मटर में मंडी चलने की ठानी, आलू भी तैयार हो गया साथ चली गोभी रानी। मुझे आलू इसलिए पसंद है कि वो सभी के साथ बहुत अच्छी तरह एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए सबको आलू भाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज भी लंच में दही वाले आलू बनाए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि उदयपुर जिले में फतेह स्कूल के पास में एक जगह है जहाँ के आलू बड़े बहुत फेमस है, मैं कल परीक्षा देने जा रहा हूँ, ज़रूर वहाँ के स्वादिष्ट आलू बड़ों का आनंद लूँगा। और एक साथी लिख रहे हैं कि इबारत कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया आपने।

आज आलू दिवस पर गीतों का मजा मिलेगा। और लिखा है कि आलू दुनिया के हर कोने में मिलते हैं, आलू बिना कोई रसोई बन नहीं सकती, ये सभी सब्जियों में मिक्स हो जाता है। चिप्स और पराठा तो आलू के ही स्वादिष्ट होते हैं, खिचड़ी और तहरी में मिलाकर उसका टेस्ट भी बदल दिया जाता है जो सबको पसंद आता है। अब तो मिठाइयों में भी आलू का प्रयोग होने लगा है, समोसा तो बिना आलू के बन ही नहीं सकता, आलू की पकौड़ी तो चटनी के साथ गर्मा गर्म खाने में बड़ा ही मजा आता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, आलू पौधे का भूमिगत तना होता है, जड़ नहीं होता है। एक साथी ये लिख रहे हैं कि आलू सब्जियों के राजा है, पर मैं तो कहूंगी रसोई की रानी है। एक माँ जानती है कि बच्चों को कैसे सब्जी खिलाना पड़ती है, आलू के साथ कुछ मिला दो तो खा लेते हैं। और हमारा जो बिहारी खाना है वो तो बिना आलू के पूरा ही नहीं बनता है, दाल भात चोखा लिट्टी चोखा, और अगर आलू नहीं है तो ये व्यंजन अधूरा है। संक्रांति में दही चूड़ा, उसके साथ आलू दम, सफर में जाना है पूरी के साथ आलू की भुजिया, बरसात के दिनों के लिए आलू का सूखोता, अतिथियों के लिए आलू के चिप्स, सर्दियों में आलू के अचार। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आलू सब सब्जियों के साथ घुल मिल जाता है, और अपने यहाँ आलू का रायता बहुत पसंद किया जाता है जो दही के साथ बनाया जाता है। और एक साथी ने हमारे ये बात लिखी है कि अगर ठंडे ठंडे पानी से ही नहाना था तो सूरज को और पास क्यों बुलाना था। बात तो आपकी सही है, लेकिन अगर इस गाने में अगर आप गौर करेंगे तो एक लाइन आती है कि आलू टमाटर का साग। जी हाँ, जब बहुत भूख लगी हो तो आलू टमाटर का जो साग होता है ना, वो हमारे मन को कितना ललचाता है, ये इसमें दिखाया गया है, इसीलिए हमने इस गाने को चुना है। तो सुनिएगा आप ये गाना। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू साधारण सा दिखता है लेकिन हर रसोई की जान है, हर मसाले और हर सब्जी के साथ मिलकर स्वाद दो गुना कर देता है, इसलिए उसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। जिस थाली में आलू हो वो थाली अधूरी नहीं लगती, वो हर स्वाद को पूरा करने की ताकत रखता है। आलू की खासियत यही है कि वो खुद में सादा होकर भी हर व्यंजन को खास बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हम और बैराग फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। ऐसा कभी होता होगा ना कि आपने फरमाइश की है कि मुझे आलू से बना हुआ समोसा खाना है, लेकिन बन कुछ और जाता है, आलू के पकोड़े बन जाते हैं या आलू की टिकिया बन जाती है, तो आपके दिल में यही आता होगा ना कि अरे मैंने तो ये बनाने के लिए कहा था पर आज तो ये बन गया है, कुछ अलग ही हो गया है। चलिए ऐसा ही कुछ गाना है, सुनते हैं बैराग फिल्म से।

कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि रेसिपी कौन सी बनने वाली होती है और क्या बन जाती है, हम कोशिश करते हैं एक नई चीज़ कुछ बनाने की और कुछ और बनाने का सोचते हैं, लेकिन वो बन नहीं पाता, कुछ और ही बन जाता है, हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा स्वादिष्ट, और कभी कभी वो स्वाद जिसकी हम उम्मीद रखते हैं वो कभी नहीं आता है, तो भी मन बड़ा खिन्न हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू को ध्यान से खाओ क्योंकि आलू बाहर से ठंडा होता है लेकिन अंदर से गर्म होता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू ज़्यादा खाओगे तो आलू जैसे हो जाओगे और लौकी खाओगे तो लौकी जैसे बनोगे। एक साथी लिख रहे हैं कि आज सचमुच संयोग है, मैंने आज आलू के पराठे ही बनाए, पतिदेव को बहुत पसंद है, मक्खन और अचार के साथ। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की लौंज एक प्रकार की मिठाई है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सर्दियों में नए आलू को मिट्टी की हांडी में जिसमें आग तपती उसमें रख देते हैं, उस पके आलू खाने का अलग ही आनंद और स्वाद है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आप सभी को बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई इसके भी दिन बहुरे हैं और वो भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के भल्ले भी बड़े स्वादिष्ट होते हैं, दही भल्ले की तरह ही। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू और दाल की बड़ी की चटपटी भाजी बहुत पसंद है, और तो और मैंने आपका कार्यक्रम सुनकर श्रीमती जी से वही भाजी का आग्रह किया और उन्होंने भोजन बन जाने के बाद भी मेरी फरमाइश के अनुरूप मुझे भाजी बनाकर वो दे रही है। एक साथी लिख रहे हैं कि किसी पड़ोसी ने तो दरवाजा नहीं खटखटाया, पर हाँ कई बार हमारी बेटी और उसकी सहेलियों ने जरूर कहा कि बाहर से अंदर आते ही कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आलू बेसन की, क्योंकि हम जब सैंडविच के लिए मसाला तैयार करते हैं तो उसमें अहम भूमिका तो आलू की होती है, पर उस पर और भी कई चीजें डाली जाती है, सबसे तेल, फिर उसमें थोड़ा जीरा सौंफ और खड़ा धनिया, और फिर थोड़ा सा बेसन डालकर भुनना, फिर अमचूर या नींबू डालकर उसमें उबले आलू को डालना, और फिर कहीं जाकर इस मसाले को ब्रेड में डालकर सेकना, तब जाकर सबको खिलाना, और फिर उसके बाद सबकी तारीफ पाना। एक साथी लिख रहे हैं कि बंगाल का आलू, बिहार और मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें आलू से बनाई जाती है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल थोड़ा मौसम का मिजाज ठंडा है, बारिश हो जाने से प्याज की पकौड़ी, समोसे और कुछ गर्म नाश्ता खाने का मन करता है, मौसम के साथ जुबान का मिजाज भी बदल जाता है तो अच्छा खाने का मन करता है, चाहे जितनी भी गर्मी हो पर बाजारों में चाट के ठेलों पर खूब भीड़ होती है, आलू की टिक्की समोसे बहुत खाए जाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब आलू का जो आकार होता है गोल गोल होता है, लेकिन एक लंबे आकार की भी चीज होती है, और उसके बारे में भी बहुत सारी बातें इस गाने में कही गई है।

वक्फा वो सिखाने की कोशिश की गई है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आलू की टिक्की के साथ चटपटी इमली की चटनी ऊपर दही से डाल दे फिर खाने में स्वाद आ जाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि व्रत में तो आलू बहुत इस्तेमाल किया जाता है, उबला आलू और दही का रायता फ्राई में फिंगर चिप्स, हर हाल में आलू बहुत अच्छा लगता है, समोसे तो आलू के बगैर बन ही नहीं सकते। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि आज ही मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि आलू टमाटर की रसीली सब्जी बनाना, कहते हैं कि डायबिटीज़ वालों को लाल आलू खाना चाहिए और उबले हुए आलू को 12 घंटे फ्रिज में रखने के बाद खाना चाहिए जिसमें से आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि कटक का आलू दम दही बड़ा जिस किसी ने खाया उसे कटक घूमने आने का मज़ा आया, विश्व प्रसिद्ध आलू दम दही बड़ा के स्वाद सभी मुसाफिर के पेट भरने के लिए ये याद किया जाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि जब हमारे बच्चे छोटे थे तो उनकी फरमाइश होती थी कि फिंगर आलू बनाने हैं, तो सच कह रहे हैं हम बनाते बनाते थक जाते पर वो सब खाते जाते थे, और तो और एक दो दोस्त भी आ जाते, वो दिन भी क्या दिन थे। आजकल तो मम्मी आलू ज़्यादा

शुद्ध आलू दम दही बड़ा के स्वाद सभी मुसाफिर के पेट भरने के लिए ये याद किया जाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि जब हमारे बच्चे छोटे थे तो उनकी फरमाइश होती थी कि फिंगर आलू बनाने हैं, तो सच कह रहे हैं हम बनाते बनाते थक जाते पर वो सब खाते जाते थे। और तो और एक दो दोस्त भी आ जाते, वो दिन भी क्या दिन थे। आजकल तो मम्मी आलू ज़्यादा नहीं खाने चाहिए ऐसा कहती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू तो हम लोगों के यहाँ पहले भी बोया जाता था और वो अगस्त सितंबर तक सब्जी का पूरा काम करता था, लेकिन धीरे धीरे जो है इसके कम हो गया है ये। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू भारतीय रसोई की रीढ़ है, इससे यदि इसे सही और संतुलित तरीके से जैसे कि उबाल कर या बेक करके पकाया जाए तो ये सेहत और स्वाद दोनों के लिए बेहतरीन है। आलू भारतीय रसोई का राजा है जिसके बिना हर घर का भोजन अधूरा माना जाता है। स्वाद पोषण और उपयोगिता के मामले में भारतीय व्यंजनों में आलू का स्थान सबसे ऊपर है। आलू वाकई स्नैक्स राजा है, ये इतना वर्सेटाइल है कि इसमें कोई भी लाजवाब डिश मिनटों में बनाई जा सकती है। तो फिलहाल अगला जो हम गीत सुनवा रहे हैं उसमें तो केवल आलू टमाटर का जो साग होता है उसे ही कितने इस तरीके से इसमें हम सुनेंगे इस गाने में कि भूख होती है तब तो वो चीज़ हमें और भी ललचाती है, लेकिन नहीं भी भूख हो तो बोलने का जो अंदाज़ है इस के बारे में सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ आलू टमाटर का साग खा लिया जाए। संगीत किसका है बताइए हमें।

उजाला फिल्म का गाना हमने सुना, शंकर जयकिशन का इसमें संगीत है। और ये सही बात है कि जब हम पिकनिक पर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो सब्जी कुछ चीज़ के लिए वो आलू की होती है, आलू की सब्जी और पूरियां, या फिर मसाले वाली पूरियां, या फिर आलू के पराठे, या इस तरह की चीज़ें हम बना करके ले जाते हैं। यहाँ तक कि हम जब सफ़र में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो भी सबसे ज़्यादा जो सब्ज़ी आपको दिखाई पड़ेगी वो आलू की सब्ज़ी ही होगी। एक साथी लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद शहर के जो आलू होते हैं वो भारत में नंबर वन तरह के आलू होते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि पुराने ज़माने और आज तक आलू बैंगन की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा गुजरात के घरों में खाई जाती है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि ज़्यादा खाओगे तो एसिडिटी करेगा। जी हाँ, कोई भी चीज़ हो उसे अति किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि छोटे छोटे आलू को जाड़े के दिनों में हर घर में तापने के लिए जो अलाव जलाते हैं उसमें भून कर बच्चे अक्सर कटोरी में नमक उसमें डाल करके खाते हैं। गर्म गर्म बड़ा टेस्टी होता है। पहले गन्ने की पेराई होती थी तो खोलते कढ़ाई में जब राब तैयार होने को होती थी तो छोटे छोटे आलू को धागे में गूँथ कर कढ़ाई में डाल देते थे। कितना मीठा और टेस्टी वो आलू के लिए जो है हम झगड़ा करते थे। अब तो गाँवों में गन्ने की पेराई बंद हो गई है तो मीठा आलू भी अब नहीं मिलता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल लाल आलू बहुत मिल रहे हैं जिनमें कम मात्रा में स्टार्च होता है और भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की भाजी, बैंगन का भरता, बोले जी बोलो तो क्या खाओगे, ये एक इस गाने के बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सबसे सस्ता आलू है, जो सभी सब्जियों के भाव ज़्यादा हो जाते हैं तो केवल आलू धनिया डालकर रसदार सब्जी चावल और रोटी के साथ खाने का जो मज़ा है वो बड़ा आता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आज आलू की बातें सुनकर हमारी बेटी ने भी फरमाइश कर दी कि अभी तो खाना बन गया है तो डिनर में आज मस्त आलू की रसेदार सब्जी जिसमें डाली हो थोड़ी सी केरी और उसके साथ हो जाए थोड़े से जीरा राइस, ऐसा इन्होंने लिखा। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की बात हो रही तो मुझे चूल्हे की आँच में सेक कर आलू बहुत पसंद आते हैं। जब कभी लंबी यात्रा पर जाता हूँ तो मम्मी हमेशा ही आलू के पराठे और आलू की चटनी ही रखती है जो सूखी रहती है और आसानी से हम ले जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आलू की बातें तो हम कर रहे हैं, उससे चटपटे व्यंजन भी, लेकिन हो सकता है कि हमारे कई साथी हो जिन्हें कुछ मीठी चीज़ें भी पसंद हो, जैसे बर्फ़ी वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी तो उन्हें पसंद आती है, या फिर आलू से भी हम आलू की बर्फ़ी भी बना सकते हैं। कई साथियों ने हमारे लिखा है कि आलू का हलवा बनाया जाता है, आलू की बर्फ़ी भी बनती है। तो चलिए एक गाना सुन लेते हैं, बर्फ़ी फिल्म का, स्वानंद किरकिरे के बोल, प्रीतम का संगीत है, आवाज़ किसकी है आप

मोहित चौहान की आवाज़ में ये गाना आपने सुना। हमारे एक साथी की बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। आलू को हम सब्जियों का राजा कह सकते हैं, एक ऐसी सब्जी जिसके सहारे हम कोई भी उत्सव मना सकते हैं, कोई भी त्यौहार की शान बढ़ा सकते हैं। सब्जियों को खाने में मुंह बिगाड़ने वाले बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। गोभी आलू, मटर आलू, परवल आलू, कटहल आलू, टमाटर आलू, किसी भी कॉम्बिनेशन में सुपर हिट है। आलू समोसे में आलू, पराठे में आलू, पकौड़े में आलू। और एक साथी ने हमारी ये लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र ने आलू के महत्व को समझाने के लिए हर साल 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया है। इस साल की थीम है, जहां आलू उगते हैं वहां आजीविका फलती फूलती है। और ये थीम ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे किसानों को सहारा देने में आलू की भूमिका को रेखांकित करती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि माँ के हाथ के बने आलू के पराठों का स्वाद अब कहाँ मिलेगा, आज आपने माँ की याद दिला दी। और एक साथी लिख रहे हैं कि भंडारे में आलू पूड़ी खाने का स्वाद तो खाने वाला ही जानता है। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि मेरी बेटी पूना के एक घर में रहकर पढ़ रही थी, मैं कभी कभार 10-15 दिन के लिए जाती थी। उसकी सहेलियों को बहुत आलू के भरवा पराठे दही का रायता बनाकर खिलाया था, आए दिन यही फरमाइश उनकी होती थी। चलिए धन्यवाद आपका। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, और देव कोहली के बोल हैं, अनु मलिक का इसमें संगीत है।

और अब एक बड़ी सुंदर बात, आलू का रस चेहरे पर लगाने से ग्लो आता है, ऑलराउंडर है आलू, ये हमारी एक साथी ने बात लिखी है। और इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार, आज की त्रिवेणी में बातें होंगी आशा की, उम्मीद की। आशा क्या है? वैसे तो इसे परिभाषित करना या इसका वर्णन करना कठिन है, लेकिन आशा को हम तब पहचानते हैं, हम इसे महसूस करते हैं और जब हमें इसकी ज़रूरत होती है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आशा है अपने लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना करना और उसे पाने की कोशिश करना। हम सभी के जीवन में आशा का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये निराशा से बचाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये एक सकारात्मक भावना है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमें जीवन का अर्थ, उद्देश्य और धैर्य प्रदान करती है। आशा कठिन समय में मानसिक शक्ति बनकर हमें लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। आशा एक भावना है और सोचने का एक तरीका भी। कई बार जब हम हर तरफ से थक हार चुके होते हैं, हमें आशा की कहीं कोई एक किरण कहीं ना कहीं से किसी बाहरी कारण से भी मिलती है, तब हम फिर से ऊर्जा से भर जाते हैं। मुश्किल हालातों से उबरने में आशा की ज्योत जलाए रखना बेहद ज़रूरी है। आशा को हमें एक इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। आशा एक भावना है, एक मानसिकता है, जिसके ज़रिए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन और प्रतिकूल क्यों ना हो, आशा एक विश्वास ही तो है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।

आशा का अर्थ है आगे बढ़ते रहना, हिम्मत बनाए रखना और जीवन के अर्थ के साथ हर मुश्किल से उबरने का रास्ता खोजना। आशा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के बहुत कठिन समय में भी सहारा दे सकती है। यदि हम किसी विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का अनुभव करते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम सकारात्मक निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं। कभी कभी हमारे दिलो दिमाग पर भय और निराशा आशा से कहीं अधिक आसानी से हावी हो जाती है। ये डर हमारे आशा के भाव को कमजोर करने लगते हैं। हालांकि हम अक्सर आशा को व्यक्तिगत स्तर पर देखते हैं, लेकिन आशा को सामूहिक रूप से भी अनुभव किया जा सकता है। राष्ट्र पर जब कोई संकट का समय आता है तब आशा और विश्वास का दामन थामे रहना आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। आशा हमें भविष्य के लिए बेहतर कल्पना करने और उसे पाने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करके जीवन को खूबसूरत बनाए रखती है, जिससे निराशावादी सोच दूर रहती है। आशा।

दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते समय यदि मन में आशा हो तो मस्तिष्क अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करता है और हम भी बेहतर महसूस करते हैं। आगे बढ़ते रहने की ये इच्छा शक्ति, जिसे हम उम्मीद या आशा कहते हैं, ये जीवन को गति प्रदान करती है। इसीलिए आशा को बनाए रखने पर बल दिया जाता है। आशा रखने से मन मस्तिष्क बेहतर ढंग से कार्य करता है और हम भी बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए कि आशा अपने आप नहीं मिलती, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है और इसे बनाए रखने के लिए हमें स्वयं से परे भी जुड़ना पड़ता है। आशा स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली औषधि भी हो सकती है। इसीलिए चाहे हम किसी भी कठिनाई से गुजर रहे हों या चुनौतियों से जूझ रहे हों, पहले से कहीं अधिक आशा की जरूरत है ताकि हम मजबूती से टिके रह सकें। आशा की एक किरण जीवन की मुश्किलों, असफलताओं और बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है, जिससे व्यक्ति हार नहीं मानता। आशावादी दृष्टिकोण से जीवन में बदलाव आते हैं और हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आशा हमें जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद करती है। आशा ही जीवन की वो धुरी है जिस पर सुखद भविष्य की कल्पना टिकी रहती है। ये हमें विश्वास दिलाती है कि परिस्थितियां सुधर सकती हैं और आगे चलकर सब ठीक हो सकता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने

0: स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
1: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंध और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
3: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग

0: 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बुद्धि खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराइकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।

0: कुदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुँच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमेनाउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आशिक फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अपना बना के देखो ये फिल्म का नाम है। आशा भोंसले और साथियों की आवाजें, SH बिहारी के बोल, संगीत है रवि का।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी।

0: Ara Típer.
1: आजाद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, श्री रामचंद्र का संगीत।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बाजे घुंघरू फिल्म का ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी, सबिता बनर्जी, सीता और साथियों की आवाज़ों में, शिवराज श्रीवास्तव का लिखा हुआ गाना, धनी राम का संगीत। अगला गाना बात एक रात की, इस फिल्म का गाना हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं, बगदाद की रातें। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन के बोल, संगीत है डी दिलीप का।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बनारसी ठग इस फिल्म का ये गाना है, लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको वो गीत सुनवाते हैं जिसमें हमारे श्रोताओं ने पत्र लिख करके हमें उस गाने को सुनने की फरमाइश भेजी है। तो पहला जो गीत है ये दिल फिल्म का गाना उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में समीर का लिखा हुआ गाना आनंद मिलिंद का संगीत है। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है शमसुद्दीन की बाड़ी पूरा बीकानेर राजस्थान से। ये पत्र आया है हमारे पास मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अनजान, सैफ अली, कमाल खान, मरियम बानो और मोहम्मद अली। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये अपराध फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ों में इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम हीवरखेड़ तहसील तेल्हारा जिला अकोला महाराष्ट्र से विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारस, पायल, श्वेता और उर्वी बेन अड़िया ने।

मनचाही गीत कार्यक्रम में अब जिन श्रोताओं की पसंद पर हम ये गीत सुनवा रहे हैं वो हैं रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। आप सुनना चाहते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना मुकेश और कंचन की आवाज़ों में। इंदिवर के बोल हैं संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना।

0: इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: प्रस्तुत है नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सी एल जोस, रूपांतरकार पी जी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। सुनिए इस नाटक का पहला भाग।

0: हेलो
1: जी,
0: इस तरह टकटकी लगाकर आकाश की ओर क्या देख रही हो?
1: आप मेरी ओर क्यों देख रहे हैं?
0: ऐसे ही।
1: मैं भी बस ऐसे ही बाहर देख रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका? मेरा मतलब है आप कौन हैं?
1: आप कौन हैं?
0: मैं जेल का अध्ययन करने आया हूँ।
1: और मैं जेल में सड़ने आई हूँ।
0: ये तो देखते ही मालूम हो गया था।
1: लेकिन आपको देखकर तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। आप कौन हैं?
0: मैं एक नाटककार हूँ। मैंने मलयालम भाषा में कई नाटक लिखे। इस बार मैंने जेल की पृष्ठभूमि पर नाटक लिखने का निश्चय किया है। इसी सिलसिले में आपके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ।
1: आप दूसरे कैदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं?
0: कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
1: मेरा नाम डेजी है।
0: डेजी?
1: क्या हुआ?
0: मुझे मुझे कुछ याद आ रहा है।
1: क्या?
0: कुछ महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था डेजी नाम की युवती को सेशंस जज ने सजा दी थी। तुम आप वही डेजी है ना?
1: हाँ।
0: आपने हाई कोर्ट में अपील नहीं की?
1: अपील तभी की जाती है

0: सजा पाने वाले को कोई शिकायत हो।
1: आपकी बातें बड़ी विचित्र लग रही हैं।
0: मेरी कहानी भी बड़ी विचित्र है।
1: क्या आप इस सब के लिए अपने को दोषी मानती हैं?
0: दोष परिस्थितियों का है या मेरे भाग्य का, जिसने मुझे उन परिस्थितियों में डाल दिया, कह नहीं सकती।
1: आपकी कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक हो उठा हूं। क्या आप?
0: हाँ, मैं सुनाऊंगी आपको अपनी कहानी। एक साधारण देहात के गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। मैं छोटी ही थी कि मेरे पिता चल बसे। खेतों में मजूरी करके और इधर उधर के छोटे मोटे काम करके मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा, बड़ किया। हायर सेकेंडरी की परीक्षा मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास की। मैं चाहती थी कि पढ़ाई जारी रखूं और कोई डिग्री या डिप्लोमा ले लूं। संयोग से तभी एक वैभव संपन्न युवक बेनी से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बेनी देखने में सुंदर नहीं थे, रंग भी उनका काला था, किंतु मन से वो बहुत सुंदर थे। हम दोनों का विवाह हो गया। बेनी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि विधाता को जैसे मेरे सौभाग्य से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सहसा उनकी छाती में एक विचित्र ही प्रकार का दर्द उठा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें इस तरह के 2-3 अटैक और हुए तो उन्हें मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया।
2: डॉक्टर रामदास, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर,
3: गुड मॉर्निंग बेनी, गुड मॉर्निंग।
2: कभी तबीयत कैसी है?
3: बीच बीच में कभी कभी सीने में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन थकान बहुत है डॉक्टर।
2: चिंता की कोई बात नहीं, अब डॉक्टर लॉरेंस तुम्हें एग्जामिन करेंगे। वो आज छुट्टी से वापस आ रहे हैं।
3: क्या ऑपरेशन होगा डॉक्टर?
2: क्यों, ऑपरेशन से डर लगता है क्या?
3: नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था।
2: क्या करने से तुम्हें आराम होगा ये निर्णय वही लेंगे। उन्होंने विदेश में शिक्षा पाई है और सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया है। अरे ये क्या, गिटार? गुड, कितना मधुर स्वर है इसका। बेनी, इसे बजाना आता है क्या?
3: डॉक्टर, किसी गुरु से तो शिक्षा नहीं ली है, फिर भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूं।
2: बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है।
3: एक तरह से इसमें मेरी जान बसती है।
2: अच्छा,
3: अपनी पत्नी के बाद मैं इसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। पत्नी जीवन में प्रेम भर देती है और गिटार मधुरता।
2: तब तो दोनों ही दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हुए, क्यों?
4: नमस्ते डॉक्टर।
2: ओ नमस्ते,
3: कहाँ गई थी तुम?
4: सुना था कि डॉक्टर छुट्टी के बाद लौट आए हैं।
3: अच्छा, तो तुम जल्दी से उनका पता लगाने गई थी।
2: मेरी पत्नी जो ठहरी उत्कंठा हो सकती है। डेजी, ये टॉनिक किसके लिए लाई?
3: हम दोनों के लिए।
4: नहीं डॉक्टर, सिर्फ इनके लिए।
3: इसकी बात पर ध्यान ना दीजिए डॉक्टर, खाएंगे तो हम दोनों एक साथ ही खाएंगे, वरना।
2: अच्छा अच्छा, मैं जरा वार्ड हुआ हूं, फिर मिलेंगे।
3: अच्छा,
4: तुमने डॉक्टर रामदास को ये सब क्यों बताया कि हम एक साथ खाते हैं? हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं।
3: इसमें हर्ज क्या है, सच तो यही है ना?
4: सच होने पर भी अपनी बातों को दूसरों के सामने इस तरह खुल्लम खुल्ला क्यों कहते हो? मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी।
3: इसमें शर्म का है कि क्या मुझे ये कहना चाहिए था कि हम दोनों में झगड़ा रहता है? देखो डेजी, सत्य किसी के सामने किसी भी समय कहा जा सकता है।
4: अच्छा जी, तब तो एक काम करें। इस कमरे के बाहर एक बोर्ड लटका दें। इस कमरे में रहने वाले पति पत्नी एक दूसरे के गहरे प्रेम में डूबे हुए हैं।

0: कल डॉक्टर रामदास ने हमसे एक सवाल पूछा था, तुम्हें ख्याल है?
1: क्या?
0: हमारे बच्चे हैं या नहीं?
1: हाँ, ख्याल है।
0: मुझे याद है, ये सवाल सुनते ही तुम उदास हो गई थी।
1: नहीं तो?
0: नहीं?
1: हाँ शायद। बेनी
0: हुँ?
1: बेनी तुम अच्छे हो जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेनी
0: तुम्हें लगता है मैं ठीक हो जाऊं?
1: हाँ बेनी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरे अच्छे बेनी।
0: इधर आओ ना
1: बेनी, ये अस्पताल है।
0: तो क्या हुआ? आओ ना।
1: बेनी क्या हुआ?
0: कुछ दर्द सा हो रहा है।
1: अरे मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। लेट जाओ बेनी, लेट जाओ ना तुम। अरे तुम्हारे तो चेहरे पर पसीना आ रहा है।
0: नहीं नहीं नहीं, फिक्र मत करो, जरा सी गिरी ना से चिंता की कोई बात नहीं।
1: नहीं नहीं, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ।
0: ठीक जी।

0: बेनी, बेनी, बेनी, बेनी, क्या हुआ?
1: कुछ दर्द सा हो रहा है।
0: अरे मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। तुम लेट जाओ बेनी, लेट जाओ ना तुम। अरे तुम्हारे तो चेहरे पर पसीना आ रहा है।
1: नहीं नहीं नहीं, फिक्र मत करो, जरा सी गिरी ना से चिंता की कोई बात नहीं।
0: नहीं नहीं, नहीं मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ।
1: ठीक जी।
0: बेनी, एक बात बताओ।
1: पूछो।
0: तुम्हें सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है, गिटार या मैं?
1: बताओ। दोनों।
0: मेरा मतलब है कि तुम्हें तुम्हें सबसे अधिक सुख किसमें मिलता है?
1: तुम्हें निहारते हुए गिटार बजाने में।
2: तो आप कलाकार भी हैं?
1: कलाकार तो नहीं, लेकिन कला प्रेमी रोगी हूँ। आप
0: डॉक्टर लॉरेंस है ना?
2: जी हाँ, मैं डॉक्टर लॉरेंस हूँ।
3: तुम बेनी हो ना?
1: हाँ डॉक्टर, तुम लॉरेंस हो ना?
3: हाँ मैं लॉरेंस हूँ भाई।
1: माय गुडनेस, तुमसे अचानक मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता।
3: और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
1: मैं तो तुम्हें पहचान नहीं सका लॉरेंस।
3: मैं ही तुम्हें कहाँ पहचान पाया बेनी।
1: कुछ भी हो, तुम यहाँ अस्पताल में मेरे डॉक्टर के रूप में, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने सुना कि अमेरिका से एक फेमस डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर लॉरेंस, तो सोचा कि जरूर कोई कॉम्पिटेंट डॉक्टर होंगे।
3: तो क्या मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ?
1: मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे वही पुराने दोस्त लॉरेंस हो। सुनो, हमें एक दूसरे से मिले कितने साल हुए होंगे?
3: यही कोई 14 या 15 साल।
1: और तुम मुझे देखते ही पहचान गए, खास तौर पर इस हालत में।
3: Exactly.
1: गजब की यादाश्त है तुम्हारी। अरे हाँ, मैंने परिचय तो करवाया ही नहीं। लॉरेंस, मेरी पत्नी डेज़ी।
3: नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। तो मैं देखते ही समझ गया था
0: आप आ गए हैं, तो लगता है जैसे।
3: सब वो बातें रहने दीजिए। अब बेनी, पहले बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है?
1: चेस्ट में पेन है।
3: हाँ।
1: दिल की तरफ भी पेन है।
3: वैसे
1: सांस लेने में अक्सर बड़ा कष्ट होता है।
0: ये ठीक से नहीं बताते। बस यही कह देते इन्हें कोई तकलीफ नहीं, इनकी आदत।
3: हाँ मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, स्कूल में हम 3 साल एक साथ पढ़े हैं। डेजी
0: जी,
3: मैं इन्हें ठीक करने में कोई कसर नहीं रखूंगा, जो भी जरूरी होगा जरूर करूंगा।
0: थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आप इनकी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं?
1: डेजी, मेरे सारे रोगों की लिस्ट तुम ही इन्हें दे दो। लॉरेंस, मैंने अपने को डेजी के सुपुर्द कर दिया है।
3: बेनी, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा कोई तो है जो तुम्हारी हर बात की तरफ ध्यान देता है।
1: हाँ, हूँ सौभाग्यशाली, लेकिन इस 24 घंटे की देखभाल से मेरा दम घुट रहा है।
3: खुद सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस पर देखभाल से भी दम घुटने लगे तो। हाँ। खैर जो भी हो भाई, बेनी तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करना होगा। अभी तो मैं वार्ड में जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। सही हो गया ना?
1: बाय।
0: भगवान की बड़ी कृपा है जो डॉक्टर लॉरेंस को यहाँ भेज दिया।
1: ये फ्लास्क क्यों ले रखा है?
0: अरे बाबा, मैं तो पानी गर्म करने को रखाई थी, शायद गर्म हो गया होगा। मैं अभी जाकर ले आती। सो रहे हैं क्या?
1: अरे गिरिजा, तुम
0: आप यहाँ?
1: हाँ, मैं एक बीमार की हैसियत से आया हूँ। सीने में और दिल में दर्द है।
0: दिल में दर्द? जिसके दिल ही नहीं उसके दिल में दर्द?
1: जरा शिष्टता से बात करो।
0: जो शिष्टता का मतलब ही नहीं समझता वो कह रहा है शिष्टता से बात करो।
1: जरा आहिस्ता बोलो।
0: मुझे पहचान लिया आपने?
1: हाँ पहचाना ही नहीं, इस दौरान बीच बीच में तुम्हें याद भी किया है।
0: अब भी मन में विष भरा है, दूषित विचारों का विष।
1: तुम ऐसा सोचती हो?
0: सोचती नहीं बल्कि अनुभव से कहती हूँ। मुझे देख पाएंगे इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों?
1: हाँ ये कल्पना नहीं की थी कि तुम्हें नर्स की ड्रेस में देखूंगा।
0: हाँ आपने तो मुझे किसी इन्वेश में देखने की कल्पना की होगी।
1: हा?
0: इसका दर गिर तो नहीं गई हूँ।
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है गिरिजा।
0: मैं किसी का आशीर्वाद नहीं चाहती।
1: क्या?
0: आपके पास खड़ा रहना तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
1: मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ गिरिजा।
0: ये तो आज की बात है, उन दिनों तो आप एक टेरर थे। चेहरर?
1: मेरी समझ में नहीं आ रहा है आखिर बात क्या है।
0: आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती?

0: समीर से बात करो। मैंने मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम ये सब कह रही हो?
1: अच्छा, 4 साल पहले उस दिन जो कुछ हुआ था आपको याद नहीं? मेरे पिताजी बीमार पड़े थे, उनके प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं था। मैं नौकरी की तलाश में आपकी संस्था में गई तो आपके दुष्ट मैनेजर ने मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की। मैंने बाघिन की तरह उसका सामना किया, मेरे कपड़े फट गए लेकिन वो भाग गया। उसके बाद कमरे में घुस आए आप, लेकिन मैं आपके चंगुल से भी भाग निकली।
0: देखो, मेरी पत्नी सुन रही होगी, प्लीज प्लीज चुप हो जाओ।
1: हो तो मुझे आपकी पत्नी से डरना होगा।
0: प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, इस समय कुछ ना कहो।
2: उस दिन मैंने गिरजा और बेनी की बात सुन ली थी लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात बेनी कुछ अस्वस्थ रही। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस ने बेनी का कंप्लीट चेकअप किया। 2 तरह के एक्सरे लिए, ईसीजी लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट हुए। रिजल्ट आने के बाद ही वो कुछ बता सकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन दिनों जब भी मुझे फुर्सत मिलती मैं पास के चर्च में जाकर बेनी के जल्दी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मैं चर्च से लौटी तो सुना बेनी और गिरजा बातें कर रहे थे।
1: मुझे कुछ नहीं कहना है।
0: लेकिन मुझे तो कहना है, कल जहां बात रुक गई थी मैं वहीं से शुरू करता हूं।
1: मैं कुछ सुनना नहीं चाहता।
0: तुम्हें सुनना पड़ेगा। सुनो, तुम जब आई थी मैं ऑफिस में नहीं था। तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई वो मुझे मालूम है। तुम्हें समझा बुझा कर शांत करने और तुमसे माफी मांगने के लिए ही मैं दौड़ा दौड़ा आया था, लेकिन तुम न जाने क्या समझी और मेरी बात सुने बिना चली गई। मैंने आवाज दी मगर तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम कौन हो यह मैं तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़कर ही जान गया था।
1: आप चाहते हैं मैं इन सब बातों पर विश्वास कर लूं?
0: नहीं, मेरी ओर से कोई ऐसा आग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है।
1: आप इतने ही सज्जन और भले मानस होते तो मुझे बुलाकर नौकरी ही नहीं दिला देते।
0: हाँ, लेकिन उस बीच कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं हुई कि मुझे इसका अवसर ही नहीं मिला। उसी दिन मैनेजर को नौकरी से हटा दिया गया, बाद में मैंने वो ऑफिस ही बंद कर दिया। आज ना वो संस्था है ना वो ऑफिस।
1: अच्छा।
0: हाँ अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पिता ऑपरेशन के बाद भी कई दिन अस्पताल में रहे थे या नहीं?
1: हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ?
0: कितने रुपए खर्च हुए?
1: करीब 600, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति पर तरस खाकर अस्पताल वालों ने वो रकम माफ कर दी थी।
0: माफ नहीं की थी गिरिजा, सारी रकम मैंने चुकाई थी। तुम्हें बिना सूचना दिए चेक भेज दिया था। चाहो तो अब भी पता लगा सकती हो, डिस्चार्ज होकर बाहर जाते वक्त तुम्हारे पिता के हाथ रुपए भी मैंने रखवा दिए थे।
1: क्या?
0: हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारी वेदना देखकर मेरा मन दुखी हो उठा। मुझे लगा कि तुम्हारी इन मुसीबतों के लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं, इसलिए मैंने ये सब किया। फिर एक दिन सुना तुम और तुम्हारे पिता दोनों ही कहीं चले गए। उसके बाद कल तुम्हें देखा।
1: मैं ये सब नहीं जान पाई, गलती हो गई, मुझे माफ करें।
0: माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं गिरिजा, मैंने जो कुछ भी किया वो अपना कर्तव्य समझकर किया। चेहरा कुरूप होने पर भी मेरा मन कुरूप नहीं है।
2: गिरिजा चली गई लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरे मन में बेनी के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना आदर, कितना प्यार और उमड़ आया, कह नहीं सकती। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस जांच की रिपोर्ट लेकर आए। क्या हुआ डॉक्टर? टेस्ट में क्या निकला? कोई खास बात?
3: वो बेनी कहाँ है?
2: चेरिन के पास गए हैं।

0: अभी आते होंगे। डॉक्टर, सारी रिपोर्ट्स आ गई ना?
1: हाँ डेजी, सारी रिपोर्ट्स आ गई।
0: कोई खास बात बताइए ना डॉक्टर।
1: डेजी, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बेनी के हार्ट के एक वॉल्व में गड़बड़ है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर वॉल्व बंद हो गया तो उसकी सांस रुक जाएगी और ऐसी इमरजेंसी किसी वक्त उठ सकती है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा इसी हफ्ते में। हाँ डेजी प्लीज, बेनी से कुछ नहीं कहना, मेजर ऑपरेशन है, लेकिन मैं अपनी पूरी जान लड़ा दूंगा।
0: डॉक्टर, डॉक्टर किसी तरह मेरे बेनी को बचा लीजिए डॉक्टर, उनके बिना।
1: अरे भाई, अभी तो ऑपरेशन हुआ भी नहीं और तुमने चिंता करनी शुरू कर दी।
0: डॉक्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर।
1: डेजी, इस तरह अधीर होने से कैसे काम चलेगा? तुम्हें तो बेनी को आत्मविश्वास और सहारा देना है। अब तुम इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे होगा? तुम्हें तो मुझे सब बात सच सच बतानी ही थी।
0: नहीं, मुझ में ये सुनने का साहस नहीं है डॉक्टर।
1: डेजी धीरज रखो, डेजी धीरज रखो, बेनी इस समय आ गए तो ये सब देखकर दुखी हो जाएंगे। लो बेनी आ रहे हैं। आइए आइए, कहाँ पे जाना?
2: ओ डॉक्टर,
1: भाई जब भी डॉक्टर पेशेंट को देखने आता है पेशेंट बेड पर नहीं मिलता। इस पैकेट में क्या है?
2: बता दूंगा, पहले ये बताओ मेरी रिपोर्ट्स देखकर तुमने क्या डायग्नोस किया?
1: मेरी रिपोर्ट सब ठीक है, घबराने कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़े।
2: कोई गड़बड़ है डॉक्टर?
1: अरे भाई गड़बड़ कैसी, डोंट वरी, मैं तो हूँ, आई विल डू माई बेस्ट।
2: लॉरेंस, ये बात इस डेजी से कह दो, इसी को ज्यादा डर लग रहा है। डेजी, अब तुम्हारी परेशानी दूर हुई ना?
1: और हाँ बेनी, एक बात और, इस तरह कमरा छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है। आई डोंट लाइक इट। अच्छा तो मैं चलता हूं अब। सी यू अगेन, बाय।
0: तुम तो चेरियन से मिलने गए थे बेनी, ये पैकेट कहां से उठा लाए?
2: तुम्हारे लिए एक चीज है।
0: अच्छा, देखो तो।
2: लो, देख लो।
0: ये अब काहे को? और यहाँ
2: मेरी ओर से प्रेजेंट।
0: प्रेजेंट?
2: हाँ, तुम्हें याद है आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? लो, मेरी डेजी के लिए जन्मदिन का प्रेजेंट है। ए, तुम उदास नजरों से मुझे घूर क्यों रही हो? लो ये रख लो।
0: इतना स्नेह जताकर तुम क्यों मेरा दम घोट रहे हो? बेनी, हमें एक दूसरे के लिए इतना अधीर नहीं होना चाहिए।
2: हाँ, ऐसा मुझे भी लग रहा है, तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं होना चाहिए था, तुम्हें इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए था। खैर, साड़ी पसंद आई?
0: तुम्हें अस्पताल में साड़ी नहीं लानी चाहिए थी।
2: अब अगर मैं और मौका ना पाऊं तो? तुम तो बड़ी ना समझो, तुम अगर ऐसी ही रही ना तो फिर चल गया काम। प्रेजेंट देखकर रोने लगी? नहीं नहीं नहीं, रो मत। देखो, अब अगर और ज्यादा रोगी तो मैं रूठ जाऊंगा। बोलो, रूठ जाऊं? नहीं नहीं ना। अच्छा तो फिर हंस दो। देखो ये ऐसे ऐसे।
0: क्या क्या क्या हुआ आपको?
2: यहाँ
0: लेट आइए, लेट। बेनी, बेनी, बेनी, डॉक्टर, डॉक्टर! कुछ ही मिनटों के अंदर डॉक्टर लॉरेंस दौड़ कर आ गए। दूसरे ही दिन बेनी का मेजर ऑपरेशन हुआ। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। गिरजा की निष्ठापूर्ण सेवा ने मुझे अचरज में डाल दिया। जब ब्लड

0: स्टॉक खत्म हो गया तो उस नाजुक परिस्थिति में गिरजा ने अपना खून दिया। बेनी धीरे धीरे बोलने चालने लगा तो मेरा मन खुशी से खिल उठा, लेकिन मेरा सुख क्षण भंगुर था। सहसा सब खत्म हो गया। चौथे दिन मेरा बेनी स्वर्ग से डर गए। सदा के लिए मुझसे बिछड़ गया।
1: आखिर ये हुआ कैसे?
0: ऑपरेशन के बाद एक दिन बेनी के हृदय में दर्द उठा, सांस लेने में बड़ा कष्ट होने लगा। फौरन डॉक्टर के पास आदमी दौड़ाया, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर लॉरेंस घर पर नहीं मिले। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी के प्राण फकीर उड़ चुके थे। टूटे हुए पेड़ की तरह मैं जमीन पर गिर पड़ी और फिर मुझे किसी बात की सुध नहीं रही। बाद मुझे होश आया, मैं बीमार पड़ गई। जिस कमरे को मेरे पति खाली कर गए थे, मैं उसी में भर्ती हो गई। 2 महीने बीत गए। एक दिन नर्स गिरजा मेरे पास आई।
2: डेजी, ये सब क्या है? छोटे बच्चों की तरह?
3: ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गिरजा।
2: दुख तो मुझे भी है डेजी, मैं भी उनको नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझ पर बहुत उपकार किया था।
3: मैं अब क्यों जीवित हूँ गिरजा? चिराग बुझ गया, रोशनी खत्म हो गई। मेरे सामने अब अंधेरा ही अंधेरा है।
2: ना डेजी, इस अंधेरे से तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। उठो, हाथ मुंह धो लो, हमेशा रोना धोना अच्छा नहीं। चलो देखो देखो, इससे पेड़ी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
3: गिरजा
2: डेजी, अच्छा अब मैं चलती हूँ, ड्यूटी खत्म होने पर आऊंगी, तब हम देर तक बैठकर बातें करेंगे।
0: इस तरह कुछ महीने और बीत गए। डॉक्टर लॉरेंस मेरी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। बेनी के प्रति वे बहुत स्नेह प्रदर्शित करते थे। और एक दिन सब लोगों को आश्चर्य में डालकर हम, मैं और लॉरेंस, विवाह सूत्र में बंध गए।
1: अच्छा?
0: लेकिन इस सब के बावजूद भी बेनी मेरे अंदर जीवित रहे। उनका प्रिय गिटार मैंने संभाल कर रख लिया था। एक दिन की बात है,
4: आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में।
5: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
6: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
5: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ

0: पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
1: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री साधना सिंह, यानी नदिया के पार की गुंजा।
2: जोगी जी प्रेम भरो
1: से बातचीत कर रही हैं विधि जैन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हमेशा आपके लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आती है जो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, हमारे श्रोता जिन्हें बहुत पसंद करते हैं। और आज एक ऐसी अभिनेत्री हमारे समक्ष हैं जिनको देखकर न जाने कितने दिलों ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसे ही होते, या हमारे परिवार की बेटियां, बहुएं सभी ऐसी ही होती। हर कोई ये विचार कर रहा था, वो मिट्टी की खुशबू, वो जिंदगी, वो किरदार, वो अभिनेत्री जो उस समय भी उतनी ही खूबसूरत थी और आज भी वही रूप, वही रंग और वही यौवन हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे सामने है, अच्छा श्रोताओं चलो एक प्रश्न पूछती हूँ। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा था, चंदन काहे का हम अच्छी लड़की नहीं है, ये किस फिल्म का डायलॉग था जरा विचार कीजिए। हाँ वही फिल्म जिसमें हमने होली की धुन पर भी नाचा है और गांव की एक प्यारी सी लड़की की चूहलबाजी, मस्ती और बहुत सारी शैतानी को भी देखा है। और वही मस्तीखोर बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है और नाम है साधना सिंह जी। मैं मंच से इस प्यारे से विविध भारती से आपका इतने प्यार से स्वागत करती हूँ।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नचित है आपको पाकर क्योंकि उन्हें उनकी गुंजा सुनने को मिल रही है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं। गुंजा जो है वो बहुत बदमाश भी है और कहीं मिर्ची पीस के खिला देती है कहीं पानी गिरा के चली जाती है। हाँ। कभी बाबा की डांट भी खाती है तो माँ के सामने झिझक के निकल भी जाती है।

0: और वही गुंजा जो है वो एक समय पे आके उदास भी हो जाती हैं अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने खुद के लिए। तो आप उन दोनों में से, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहली वाली गुंजा होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो गुंजा बैठी है वो कौन सी वाली गुंजा है।
1: एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में जो दिखा है चुलबुली बदमाश
0: जी
1: प्रैंक करने वाली
0: जी
1: हूँ मैं वही, लेकिन उसके साथ ही ये आता है साथ में जो
0: जी
1: सेंसिटिविटी है, जो उसका अलग भाव, जो
0: समझदारी है
1: सैडनेस है
0: जी।
1: या किसी के लिए फील करना है,
0: हाँ
1: वो अपने आप इसके साथ बायो प्रोडक्ट की तरह आता है।
0: हाँ
1: तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो गुंजा है वही मैं हूँ।
0: दिल की सच्ची अच्छी बच्ची
1: हाँ, जो भी है बदमाशी भी करती हूँ और आज तक करती हूँ। पहले मेरे बच्चे थोड़ा एम्बेरेस्ड हो जाते थे, क्या मम्मा रुको, अब वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको पता ही है औरत रुकने वाली है नहीं। तो मैं आज भी वैसे ही मस्ती करती हूँ, घर में भी,
0: हाँ
1: बाहर भी, फ्रेंड्स के साथ भी। और जब बोलते हैं गुंजा, गुंजा के कैरेक्टर में इतनी ढल गई मैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये मेरे अस्तित्व में कैसे शामिल हो गई।
0: अच्छा
1: और कुछ चीज़ें थी जो मेरी थी,
0: जी
1: और मेरे दादा जो ये थे डायरेक्टर गोविंद मुनीस जी, वो मुझसे सुनते थे, अच्छा बताओ तुमने और क्या बदमाशी की, तो वो सब बताती थी। जैसे कलर लगाया उसको, सचिन को लगाया ना,
0: जी
1: वो मेरा
0: जी जी जी
1: एक्चुअली रियल इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड के भाई को, सोया हुआ था और सुबह उठ नहीं रहा था होली में, तो उसको पूरा लगाया था ऐसे मैंने, तो दादा ने डाल दिया वो, और जो विर्ज खिलाई अभी भी करती हूँ मैं वैसे काम
0: यानी साधना जी जो हैं वो ये बदमाशियां कर चुकी थीं और अभी भी कर रही
1: कर
0: हैं,
1: रही हैं,
0: और गुंजा में
1: करती रहूंगी।
0: उन्होंने सच बात है, वो गुंजा का जो किरदार रहा है आपका, जो आपने किया है, उस समय बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही थी, यानी ऐसी ही फिल्में आ रही थी जो बहुत सेंसिटिव थी, लोगों के दिलों को छू रही थी, और उन फिल्मों के बीच में सन 1982 में नदिया के पार ने अपना एक अलग मुकाम बनाया। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि नदिया के पार करते समय या उसके पहले क्या आपने उसके बारे में पढ़ा था, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, या बस नेचुरली उतर गई थी मैदान में?
1: हाँ नहीं, उतर ही गई थी क्योंकि कहीं मैंने वो एक्टिंग सीखी नहीं
0: अच्छा
1: और कोई स्पेशल कोर्स नहीं कराया दादा ने मेरे साथ।
0: जी
1: उन्होंने बस एक ही चीज़ बोली, तुम जैसी हो वैसे ही रहना, ठीक है।
0: अच्छा
1: और लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं, एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ एक्टिंग, कहाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आया शुरू में। तो जब शूटिंग ख़त्म हो गई मैं कहा दादा एक्टिंग ही नहीं कराई
0: अच्छा
1: आपने, तो बोलते बस तुम देखना पर्दे पे, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि एक्ट्रेस बनना है,
0: जी
1: लेकिन चलिए जो बने। लेकिन उन्होंने देखा मुझे 14-15 दिन
0: जी
1: ऑब्जर्व किया,
0: जी
1: तब जाके उनको लगा यही मेरी गुंजा है।
0: अरे वाह,
1: हाँ
0: तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली। जब आप छोटी थी तो आप क्या चाहती थी? आप अभिनेत्री, आपने अभी बोला कि आपको पता नहीं था कि आप
1: हाँ
0: अभिनेत्री बनेंगी,
1: हाँ
0: तो साधना जी क्या बनना चाहती थी?
1: मुझे पैशन तो सिंगिंग का ही था,
0: अच्छा
1: तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे, कानपुर में मैं थी
0: जी
1: तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी। और टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना, लंच ब्रेक वगैरह, तो बोलती थी बुलाओ उस साधना को, और सब खा रही और मुझे बोल रही वो वाला गाना सुनाओ, अभी वो वाला सुनाओ, फरमाइशी चलता था गीत। तो
0: जी
1: इस वजह से मेरी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती थी
0: अरे
1: स्कूल
0: वाह
1: में भी, कि ठीक है जो भी है गाना तो गाती है ना। तो या कुछ क्योस होता था तो बोलते साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी।
0: अच्छा
1: हाँ तो ये था, रुतबा था मेरा अपना।
0: तो अच्छी बात है, लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि साधना
1: हाँ
0: गाओ, लेकिन अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दें। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती हैं आपके साक्षात्कार के साथ?
1: देखिए मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल की थी, 3 साढ़े 3 साल की, जब मैंने अचानक एक गाना गाया। उस समय तो रेडियो होते थे और मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, मेरी बेटी देखो गाना गा रही है, मेरी बेटी गाना गा रही है।
0: ओहो
1: वो गाना था तोरा मन दर्पण कहलाए,
0: आह, क्या
1: है ना।
0: खूबसूरत गीत है।
1: तो शुरुआत मेरी उससे हुई और फिर बस गाने लगी, और मतलब एज ए सिंगर छाने लगी। उससे वक्त आवाज़ अलग थी मेरी,
0: जी
1: मतलब आप 50,000 लोग खड़े कर दीजिए उन तक पहुंच सकती थी।

0: बुलंद आवाज
1: हाँ
0: थी
1: बुलंद आवाज थी।
0: जी। तो आपका जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब साध
1: हाँ
0: छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो वो गीत हम आपको विविध
1: हाँ
0: भारती परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप देना चाहते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल, थैंक यू।

0: अब साधना जी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आप गा रही थीं, आप हालांकि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, तब तो भला की खूबसूरत रही होंगी, तो लोगों का प्यार करना बनता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं शायद गलत नहीं हूँ कि आपने मंच में नृत्य, अभिनय, बहुत सारे काम स्कूल में जो होते हैं वो भी शायद किए
1: हाँ, मैंने
0: होंगे।
1: नृत्य कभी नहीं किया,
0: अच्छा
1: वो मेरी बहन करती थी, तो
0: अच्छा
1: मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही है तो मैं गाने में ठीक हूँ,
0: अच्छा
1: लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ, तो वो कत्थक करती थी बहुत जबरदस्त, बिरजू महाराज जी की बहुत फेवरेट ये थी डिसाइपल, और बिजली की तरह नाचती थी वो, तो कहीं ना कहीं कत्थक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए।
0: अच्छा
1: अब अफसोस की बात यह कि उनको अर्थराइटिस हो गया, तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना
0: बहुत
1: तो
0: दुखद घटना है जी।
1: मतलब टीचर्स भी बोलती थी तुम तो स्कूल में गाना गाती थी, और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूंगी, लेकिन वो था तो है अंदर।
0: नहीं, आप बहुत अच्छा नृत्यकी हैं, उस जोगीरा में और हमने देखा
1: जोगीरा
0: बड़ा
1: में
0: अच्छा
1: मार खा के क्यों
0: अच्छा वो किस्सा भी जरा बता
1: नहीं,
0: दें
1: वो ये था, बद्री जी थे
0: जी।
1: हमारे डांस डायरेक्टर,
0: जी
1: तो गाना तो बड़े मजेदार था। हाँ,
0: हाँ
1: और शीला जो है वो पूरी ट्रेन डांसर थी, तो
0: अच्छा
1: मैं तो
0: हाँ
1: नहीं थी, तो उसमें एक स्टेप है ना, थोड़ा मुश्किल स्टेप है, ऐसे करके ताली एकदम
0: जी
1: और घूम के आना था,
0: जी
1: मुझसे हो नहीं रहा था कि माइंड अटक गया था, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी ये, तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो बोलते हैं 3-4 दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है, तो एक बार आएगा आज तुमको डांस आएगा देखना, लेकिन डंडा मारा पैर में एकदम ठीक कर दिया मैंने
0: अच्छा एक
1: आपको
0: डंडे में डांस हो गया
1: तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि लातों के भूत, क्या कहते हैं
0: लाठी के भूत
1: लाठी के भूत, मारा पैर में बड़ी जोरों से लगी, मैंने कहा मैं कर लूंगी इसे
0: बद्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप हम तक
1: और
0: पहुंचाया।
1: क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी
0: हाँ
1: तो मैं देखती रहती थी, बड़ा मटक मटक के डांस किया उसने, फिर मैंने कोशिश की तो हो गया।
0: बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने। हमें नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना

0: खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार फिल्म में आप आई और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं, कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं और अगले ही पल आप चंदन को परेशान भी कर रही हैं। तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं, आप किसी रंगमंच की अभिनेत्री नहीं है, वो सब कैसे इतना छोटा छोटा अंतर, हम जब नदिया के पार देखते हैं तो मैं वो अंतर दिखाई देता है कि पल में शोला पल में माशा वाला, कि आप 1 सेकंड पहले उसी चंदन को देख के आपके अंदर से प्रेम के भाव आ रहे हैं और अगले ही क्षण वो प्रेम के भाव बदल गए। वो किरदार किया कैसे आप?
1: वो इसीलिए हो पाया कि मैंने कोई मेथड एक्टिंग नहीं सीखी थी। अगर वो सीखी होती तो मैं बंध जाती किसी भी चीज में।
0: अच्छा।
1: वो बह गया, बह रहा था जैसे, तो मुझे कुछ ऐसा खास ऐसा बोलना नहीं था, बहुत बड़ी स्पीच नहीं देनी थी। छोटे छोटे मोमेंट्स अगर आप देखो तो जैसे मैं बोलती थी वैसे ही बोलती हूँ, तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। मुझे लगता है उसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया, कि दादा बोलते थे जो मर्जी आए करो।
0: अच्छा।
1: हाँ, ये है, ये फ्रेम है, ये सचिन ने भी हेल्प की समझने के लिए कि हिलना नहीं पड़ता। पता चला तुमको बोलते हैं राइट तो चली जाती हो एकदम बाहर कैमरे की, तो यही सच। और दूसरा वो उसके जो डीओपी,
0: डीओपी
1: हाँ,
0: रहते।
1: उनको बड़ी खुन्नस थी मेरे से, तो वो बोलते सीधे नहीं, इतना सा बोलो तो 10 गुना आगे चली जाती है, इसको सिखाओ। तो
0: अच्छा।
1: दो तीन चीजें ये सीखी कि लाइटिंग लेना है, अच्छा थोड़ा अगर इधर बोला इतना ही जाना है,
0: हाँ।
1: ऐसे चल फ्रेम की बारी चली जाती थी। तो वो नेचुरली था अंदर तो आ गया,
0: जी।
1: मैंने कुछ उसमें पुट ऑन करने की मतलब कोशिश ही नहीं की।
0: अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको तो खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में। आप उन नए बच्चों को क्या कहना चाहती हैं इस विषय में?
1: मुझे लगता है कि पहली बात, एक्टिंग ऐसी चीज जो सिखाई नहीं जा सकती, कि आप
0: अच्छा।
1: पैसे लेके आ रहे हैं अपने घर से बॉम्बे में सीखेंगे एक्टिंग, वो नहीं, जर्म्स अंदर होने चाहिए, तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा हो गया कम हो गया, पर जो चीज है ही नहीं आपके अंदर, और सिर्फ शक्ल के उससे कि नहीं मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ या सुंदर लग रहा हूँ, चले आते हैं एकदम, मतलब पोटली उठा के माँ बाप का पैसा लेके, तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले खुद को जज करें, समझें अपने आप को। हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाएं, लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है। और माँ बाप साथ में नहीं होते हैं, फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं।
0: जी। तो थोड़ा सा खुद को परख के आए, ऐसा आपका कहना है।
1: हाँ,
0: और सुंदरता बस जरूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में,
1: बिल्कुल।
0: अभिनय भी जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी। इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ, तो
1: हाँ
0: मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो मैं टीवी में क्यों करूँ।
1: हाँ ऐसा
0: एक
1: तो कुछ
0: ये
1: नहीं
0: ईगो
1: है।
0: भी सामान्यतः लोगों में
1: हाँ,
0: होता है
1: होता
0: कि हमने
1: है।
0: किया है,
1: हाँ,
0: तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
1: नहीं कुछ तैयार
0: नेचुरली?
1: नहीं किया, मुझे पता था मीडिया है ना,
0: हाँ
1: वो भी एक्टिंग ही चाहता
0: जी
1: है ना, हमको वहाँ भी लाइनें याद करनी होंगी,
0: जी
1: लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता। नहीं तो एक्टिंग तो कहीं हम अगर सड़क पे खड़े होके प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं, क्योंकि हमको पता है वो अपनी समझ
0: जी
1: है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव कुछ आवाज़ नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूँ।
0: जी
1: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है,
0: अच्छा, एक्टिंग नहीं
1: नहीं
0: करना ही
1: करना है।
0: एक्टिंग है।
1: हाँ, तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल पाऊँ, ये आपने पूछा तो मैं आ रही हूँ
0: हाँ
1: कि
0: जी। हमारे समक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी, और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो साधना जी, हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं, तो
1: हाँ
0: मौका है, दस्तूर भी है कि आपकी
1: सुनाइए।
0: पसंद सुन ली जाए
1: अच्छा ऐसा।
0: जी। तो कोई गीत बता दीजिए जो।
1: मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं,
0: जी
1: तो कुछ दिल ने कहा, और ऐसी भी बातें होती हैं,
0: वो उसका संगीत कितना खूबसूरत
1: खूबसूरत
0: है।
1: और
0: जी जी
1: बहुत
0: जी
1: मीठा संगीत है।
0: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।
2: कुछ

0: और गीत के पार वापस हम सब प्रस्तुत हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ में, वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई हैं, मस्ती के साथ सब करती गई हैं और उसी उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं, जिनमें एक आज के यूथ की पसंदीदा फिल्मों में से एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है सुपर 30, ये आपने की और इसमें भी आपका किरदार रहा। तो हम चाहते हैं कि अगर इसके बारे में आप कुछ किरदार के बारे में बताएं तो।
1: ये समय ना बहुत टफ था मेरे लिए,
0: अच्छा।
1: क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी और उसी वक्त मेरी भाई तबीयत बहुत खराब थी, तो हॉस्पिटलाइज थे। तो मैं जब भी आती थी बॉम्बे
0: हाँ
1: सीधा हॉस्पिटल जाती थी,
0: जी
1: तो बड़ा गंदा सा पैच था।
0: अच्छा
1: उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि आप जब कैरेक्टर जाते हो होते ना, तो साइड जो एक्टर है उनके ही कटते हैं, हीरो हीरोइन के नहीं कटेंगे। बहरहाल जैसा भी था आई वाज सेटिस्फाइड जो थी। और अब चीजें चेंज हो चुकी हैं तो
0: हाँ
1: ह्यूमन टच नहीं रह गया है, मैंने मिस किया उस फिल्म।

0: और बाकी तो छोटा अच्छा सा रोल था। और की एडिटिंग होती है
1: जी
0: और एडिटिंग से ही फिल्म बनती है, इसलिए
1: जी
0: मैंने कभी क्वेश्चन वो सीखा।
1: जी
0: लेकिन हाँ अच्छा लगा। प्रोडक्शन के जो लोग हैं, अभी लड़कियां आ गई हैं बहुत
1: नहीं नहीं
0: प्रोडक्शन में,
1: जी जी
0: तो उन बीच में घिर के मस्ती करते हुए ठीक है, बट बाकी जो स्टार हैं वो तो अपने अपने वैंस में चले जाते हैं आजकल। हमारे टाइम पे हम लोग को बिठाया जाता था कि दूसरा क्या कर रहा है उसको भी देखो।
1: तो उस समय आप लोग दोनों उसमें बैठे रहते थे, यानी अपना करने के बाद फिर आप बैठे थे सेट पे ही रहते थे।
0: सेट पे ही रहती थी, मतलब पहले ऐसे ही होता था, बैठ के साथ में खा रहे हैं, साथ में गप भी कर रहे हैं, कुछ सीन की बात भी कर रहे हैं,
1: जी
0: या अभी कुछ सीन हो रहा है तो इसके बाद मेरा है तो मुझे क्या सुर पकड़ना है क्या नहीं, बहुत सी चीजें। लेकिन आजकल शॉट देते ही लोग वैनिटी, मेरी वैनिटी तो खाली रहती थी क्योंकि सेट पे ही आदत है
1: आदत
0: बैठने
1: अनुसार आप लड़कियों से घिरी
0: हाँ तो
1: रहती
0: टाइम निकल जाता है, बट रोल अच्छा था, फिल्म अच्छी थी।
1: थी जी
0: तो एक लाइन बोलती हूँ ना, हमें नहीं चाहिए शॉल, हम बहुत हॉट है, तो वो एक छोटा सा था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वहाँ पे।
1: नहीं,
0: हाँ
1: वैसे आप बहुत हॉट हैं, शॉल की जरूरत
0: हाँ
1: आपने तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में, उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के पार के
0: हाँ
1: बाद। जी
0: नदिया के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने,
1: जी
0: काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी, बहुत सारी चीजें हुई हैं उस दौरान। लेकिन ये है कि एक शंकरावर्णम फिल्म आई थी,
1: जी
0: विश्वनाथ जी साउथ के थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उसका नाम था शंकरावर्णम। तो
1: ओके
0: जब
1: okay.
0: मैं थिएटर में काम कर रही थी तो इप्टा में,
1: जी
0: तो वहाँ के जो सबसे बड़े जो कर्ता धरता थे आबिद रिजवी, मुझे
1: जी
0: बिल्कुल बेटी की
1: आबिद
0: तरह,
1: रिजवी जी
0: हाँ,
1: जी
0: तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ, तमिल मुझे समझ नहीं, वो वही पढ़ती रह जाऊंगी मैं सबटाइटल।
1: नीचे का जी
0: लेकिन वो ले गए
1: जी
0: और वो फर्स्ट फ्रेम शुरू हुआ फिल्म का और मैं ऐसे देखती रह गई, मतलब जब फिल्म खत्म हुई तो मैं इतनी भरी हुई थी, ओवरवेल्म्ड एकदम, मैं कहा ऐसी भी फिल्में होती हैं क्या, काश इस तरह की कोई फिल्म मैं कर पाती। तो विद इन 2 मंथ्स मुझे फोन आता है कि ऐसा ऐसा हम लोग हिंदी वर्जन बनाना चाह रहे हैं, तो
1: वही
0: उसमें
1: सेम फिल्म।
0: हाँ सेम फिल्म
1: ओह
0: लेकिन आपको जो गुरु हैं उनकी बेटी का रोल, मैंने कहा कोई भी रोल है मैं करूँगी जुड़ना ऐसी फिल्म
1: जी
0: से।
1: जी
0: तो विश्वनाथ जी तो बहुत उनको पूजा जाता है वहाँ पे
1: जी बिल्कुल
0: साउथ में, सरगम ये सब उन्होंने बनाई, तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बहुत, लेकिन
1: बोलती आंखें
0: हाँ
1: जी
0: तो इनको ऑन इनहेंस कैसे कर सकते हो एक्टिंग के लिए,
1: जी
0: कि एक बार पलक झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है, 2 बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो वो सारी चीजें वो बताते थे ना, तो ही जस्ट अभी पास्ड अवे, उनका मंदिर वगैरह बनाया, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। नदिया के पार के बाद ससुराल थी ना
1: जी
0: शायद,
1: जी
0: हाँ
1: जी उसके बाद ही थी
0: हाँ तो मस्ती में की बस, और वहीं पे मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे, हस्बैंड जो आज हैं
1: जी
0: उनकी फिल्म थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी,
1: अच्छा
0: लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं
1: जी
0: मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए, तो उस वजह से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ। तो वो फिल्म की उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था और कोई अच्छी फिल्में नहीं बन रही थी, तो सिर्फ बुआ बन के दादी बन के चाची बन के खड़े रहना, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी।
1: हाँ
0: तो वो टाइम मैंने अपनी शादी फिर बच्चों को देखना ये सब,
1: जी जी
0: और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में आई तो ये पिछले 5 सालों की जुगनी,
1: जी जुगनी
0: जुगनी बहुत अच्छी फिल्म है,
1: बहुत
0: देखे
1: अच्छी
0: हाँ।
1: फिल्म है जी।
0: तो ये नए नए लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया जब,
1: हाँ
0: तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है, तो मैंने कहा नहीं ये तो सिनेरियो ठीक है अभी। तो उसमें अच्छा रोल दिया उसने मुझे
1: जी
0: लड़की ने, और उसका नाम है शेफाली भूषण,
1: जी
0: अभी भी उनकी मराठी एक फिल्म बहुत हिट हुई है स्थल,
1: अच्छा
0: हाँ। तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ काम करके, दे वेरी ड्रिवन, सब लोग शीशा दिखा रहे हैं, आपको मेकअप मैन की जरूरत नहीं है ना, सब मिल के काम कर रहे
1: मिल
0: हैं,
1: के काम कर रहे
0: हाँ
1: हैं, पारिवारिक तरीके
0: हाँ
1: से काम हो
0: हाँ
1: रहा है
0: फिर
1: जी
0: मैंने अनुराग कश्यप, वो मुझे ढूंढ रहा था कब से, तो उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी आदि करके, तो कुछ देख रहा था, उसने कहा रुको रुको ये साधना जी कहाँ है आजकल, तो उन्होंने बताया यही है, तो उन्होंने मुझे बुलाया आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ, तो वो फिल्म की फिर उसमें मजा आया मुझे बहुत।
1: अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर वो जब साथ में है तो आपको क्या अलग लगा पहले का?
0: मुझे ये लगा कि वो कंफर्ट मैंने फील किया जो नदिया के पार में था।
1: अच्छा
0: हाँ, क्योंकि ये भी बोलते हाँ ऐसा जैसा आपको ठीक लगे, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये नहीं जकड़े हुए नहीं थे कि ऐसा ही करना है। और कई कई जगह तो आए पैर वैर छुए, बोले हम नहीं सोचते थे कि आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगी
1: जी। हम लड़कियों को बचपन से कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे आपको लेके जाएगा।
0: पति का नाम राजकुमार
1: ही नहीं, राजकुमार आ गए। वो सफेद घोड़े पे आए थे या एम्बेसडर में आए थे?
0: अरे वो उन्होंने बदला लिया मुझसे शादी करके।
1: अच्छा, मैं हम जानना चाहते हैं वो किस्सा।
0: वो किस्सा मैंने बताया, मैं किस्सा यही था कि मुझे अंदर से ये नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है, तो मैंने कहा नहीं करूंगी। तो ये बिहार विहार छोड़ के आए थे कि फादर ने बोला इस लड़की को लेके ही फिल्म बनानी है, तो फादर ने बोला, तो आए उन्होंने सब जमाया सब काम और मिलने आए, तो उनको लगा मैं बहुत अकड़ू टाइप की हूँ और मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा किया होगा मैंने जी। तो एक बार मिले, उसके बाद दूसरी बार मिले मैं पहचानने से इनकार कर दिया मैंने, इनकार मतलब जानबूझ के नहीं, मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उसलिए। फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे, चौथी बार मिले अरुण गोयल के दोस्त थे, तो अरुण ने कहा ये राजू वो देखे जा रहे हैं मेरी तरफ, तो मैंने कहा कि अच्छा, तो बोले अरे साइनिंग अमाउंट लेके भी नहीं पहचान रही हो। मैंने कहा ओ गॉड, क्योंकि आप कभी चश्मा पहन के आ जाते हैं कभी दाढ़ी रख के आ जा, इनको इतना गुस्सा है, बोले शादी करके बताता हूँ इसको कैसे नाम नहीं याद रहेगा।
1: नाम याद कराने के लिए शादी कर ली।
0: शादी कर ली, बताइए अब। हालांकि बहुत दंगे फसाद हुए, 5 साल तक हम लोग की चल रहा था अफेयर।
1: हाँ।
0: और मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे।
1: अच्छा,
0: फिर मेरी
1: वही लड़की हीरोइन चाहिए। हाँ। थी, लेकिन उसके साथ शादी नहीं करानी।
0: होता है ना दिमाग में शादी, फिल्म लाइन की लड़की है, ऊपर
1: हाँ।
0: से तुम उसको घर ले आओगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने। फिर
1: मैं जानना चाहती हूँ एक कोई गीत जो आप अपने सफेद घोड़े पे आए हुए चश्मे वाले दाढ़ी वाले हैंडसम से राजकुमार के लिए दें।
0: ये रात भीगी भीगी

0: अब हम लोग उत्तर प्रदेश की फिल्म में जो आपने किए हैं यूपी की भोजपुरी फिल्म में उनके बारे में चर्चा करेंगे।
1: भोजपुरी फिल्म तो एक ही शायद मैंने की है,
0: वो वाली की है ना, गंगा मैया तो है।
1: ये तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो
0: जी।
1: और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे,
0: जी।
1: सब इनकी एक दोस्ती थी, बोला भोजपुरी

0: बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, क्यों ना इस एक फिल्म बनाई जाए। तो ये चले आए मेरे फादर इन लॉ बक्सा उठा के, और वहीं जहाँ दादर उतरे सामने ही वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे सब स्टार वगैरह आते थे। वहाँ वो मिले नासिर साहब से, नासिर हुसैन जो
1: जी
0: जिन्होंने फिल्म, और उन्होंने स्टोरी सुनाई और उनको साइन भी कर लिया। कुमकुम जी मदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी, उनको संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ाई वो,
1: जी
0: जो कि ब्लॉकबस्टर,
1: जी
0: आज
1: सर
0: भी
1: जी
0: ब्लॉकबस्टर
1: जी
0: है।
1: जी
0: तो उसको मेरे फादर इन लॉ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई मेरे हस्बैंड ने, जबकि वो चले गए इस दुनिया से,
1: जी
0: गंगा जैसन पावन पिरितिया हमार। तो
1: अच्छा
0: उसमें मैंने काम किया
1: जी
0: क्योंकि उस वक्त शायद कोई और रेडी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा घर में बैठी है चलो इसको।
1: इतना
0: बहुत
1: लाइटली तो नहीं
0: बहुत
1: लिया होगा।
0: बहुत अच्छी फिल्म बनी
1: जी जी
0: लेकिन
1: बहुत प्यारी है,
0: हाँ
1: बहुत
0: वो
1: अच्छी फिल्म
0: हाँ।
1: जी। एक प्रश्न और मन में आ रहा है, पंजाबी सिकड़ी लड़की सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की भाषा बोलने लगती है, मतलब सीधे ओ चंदन, लाइक जो वहाँ की भाषा है उस भाषा में आ जाती। ये जो भाषा का बदलाव है, इसको करने में तो तकलीफ हुई होगी या
0: बिल्कुल
1: सीखने
0: भी
1: में?
0: नहीं, मैं बनारस में की पैदाइश हूँ। हमें अपनी जो बाइयाँ आती थी उन सबसे तो
1: मतलब अब वो चाट और लस्सी
0: वो
1: खाते पीते
0: खाते पीते
1: बड़ी
0: हाँ,
1: हुई जी।
0: क्योंकि आज तक हम लोग बहन भाई हिंदी में बात करते हैं। सिर्फ
1: अच्छा
0: मम्मी डैडी से पंजाबी सीखी मैंने
1: अच्छा
0: कि मुझे आनी चाहिए, क्योंकि बनारस में ये मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों पगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते थे, तो वो विजुअली बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे ये
1: सरदार
0: हाँ।
1: खड़े हैं और
0: तो हमारा
1: भोजपुरी बोल रहे
0: पंजाबी
1: हैं।
0: एक्सेंट है ही नहीं।
1: अच्छा
0: हाँ हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबादी,
1: जी
0: हाँ ये काफ़ी फर्क है।
1: जी
0: तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए अगर राजबाबू, तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है, अगर लगान दिखा रहे हो आप, बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या,
1: अच्छा
0: ऐसा था।
1: आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में ही बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ, जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है, और उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को, गुंजा को, कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है वो गीत हम सुनाना चाहेंगे?
0: देखिए कौन दिशा में तो सब गाते हैं,
1: जी
0: बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजारे, चंदन चंदन, तो एक
1: हाँ
0: वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी,
1: जी
0: और दोनों का जो एक प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था, और थोड़ा अलग था,
1: जी
0: चंदन चंदन ऐसा,
1: बहुत अच्छा।
0: तो मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है गाना।
1: रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या इस गीत के?
0: हाँ इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं।
1: रविंद्र जैन वहां पे उसका डायरेक्शन कर रहे होंगे,
0: हाँ
1: गाया जा
0: रवि
1: रहा
0: जी
1: होगा।
0: हाँ,
1: कैसा कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था सुनते समय?
0: बहुत अच्छा लग रहा था मुझे क्योंकि वो गाना है ही अच्छा, अगर आप
1: जी बहुत
0: ये
1: खूबसूरत गीत
0: हाँ,
1: है।
0: और मैं करने वाली हूँ तो वो भी एक्साइटमेंट था, और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं, लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे,
1: जी
0: और आज तक मैं बहुत बहुत ज़्यादा इसको पसंद करती हूँ।
1: तो जब आप इसे पसंद करती हैं तो ये गीत आपके लिए हम सब की तरफ से बहुत प्यार से।

0: आपकी पसंद का गीत तो हमने सुना दिया, लेकिन जब सुनाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है, तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई होंगी शायद?
1: बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है क्योंकि, और लगता है सुनते ही रहो आप, चलते रहे ये म्यूजिक, क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी
0: जी,
1: और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में,
0: एक साथ
1: एक साथ,
0: बहुत बड़े कमरे में।
1: बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था।
0: अच्छा, फेमस स्टूडियो।
1: बट जितना था सब भरा हुआ था, और उसकी जो ऊर्जा होती है ना वो आपको अलग महसूस कराती है, एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा। तो ये बड़ी कमाल की चीज है।
0: वहाँ पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह विराजमान होंगे
1: भैया, मैं तो प्रणाम करती हूँ, ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ कि दादा को एक गाना नहीं पसंद आ रहा था। उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुना है,
0: 30 गाने,
1: 30 गाने में, और सुना रहे थे ये पसंद है नहीं है, अच्छा और ये, और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे, वो बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे, अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़ी छोड़ी नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है, साधना तुमको भी, मुझे भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी यू नो
0: जी,
1: तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी, माई गॉड, उसका म्यूजिक भी बना लेते थे,
0: शब्द भी लिख लेते थे
1: एक सेकेंड में।
0: 30 गाने एक समय पे,
1: 32 होंगे 30 होंगे मुझे इतना याद नहीं, लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का
0: लगातार।
1: दादा कह रहे हैं नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा अच्छा ये वर्ड्स इधर डाल, शुरू कर दिया। तो उनसे
0: और कहीं लिखा नहीं जा रहा क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है।
1: उसके बाद फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए, जिसमें राज बाबू, राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी

0: वाइफ सुधा भाभी और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ और मैं और सचिन, हम लोगों ने बहुत शोज किए। तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती हो, मैं तुमसे गवाता।
1: ये रविंद्र जी ने कहा
0: हाँ,
1: आपसे जी?
0: क्योंकि उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्म में। तो बहुत प्यार देते थे और बहुत बहुत बहुत इज्जत और बहुत प्यार,
1: जी। और
0: दादू
1: जब
0: दादू।
1: टूर करने जाते थे तब क्या एक्सपीरियंस होता था स्टेज पे? जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो
0: हाँ
1: आनंद ही अलग आता
0: हाँ
1: होगा
0: वो
1: देख के।
0: तो शेरनी थी मैं तब बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है, क्या बोलना है।
1: अच्छा
0: तो आई थिंक वो अक्खड़पन में सब कुछ सीख गई।
1: हाँ,
0: अल्लड़पन कहते ना कि
1: ये कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता दी गई
0: हाँ ये
1: बचपन से।
0: बात है। मैं दोनों मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत उनको ये था कि जो भी करना है करो, बस उसके बाद का जो जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो।
1: अच्छा, खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार रहना,
0: हाँ
1: लगेगी तो
0: लगे।
1: संभाल लेना।
0: हाँ
1: बहुत बढ़िया बात है, इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए, इतना इतनी रोचक जानकारियां मिल रही हैं। और उसके साथ में एक बात और, जो आपने सीरियल्स में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुंचने का कुछ ऐसा जरिया था या आप चले गए ऐसे ही घूमते
0: नहीं
1: फिरते?
0: नहीं बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो मैंने अपने ससुर को बोला, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, कि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अभी शूटिंग भी करेगी। तो ये
1: हाँ,
0: चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था,
1: अच्छा,
0: नॉट फ्रॉम माई हस्बैंड, वो इंडल जी नहीं किए इसमें। लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है, तो मैंने फ़ोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर इन लॉ को। और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है, मैं कर लूँ? तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो अगर अच्छा है तो,
1: अरे वाह,
0: लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी। तो इन
1: हाँ,
0: लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल, बाबा ने
1: एक
0: बोल
1: बार में
0: दिया
1: बोल दिया
0: तो मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो।
1: यानी
0: तो
1: आपको मायका
0: हाँ
1: भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा मिला,
0: हाँ
1: दोनों
0: मेरी
1: जगह
0: सास
1: बढ़िया।
0: ससुर तो बहुत अच्छे थे,
1: जी
0: तो जहाँ भी हैं बस खुश रहें।
1: जी बिल्कुल। साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का, जो आपकी बदमाशियों से परेशान है पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे, हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है। तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूं, तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अभिनय के जगत में है
0: नहीं
1: या?
0: नहीं मेरे बेटा तो बहुत दूर है,
1: अच्छा
0: उसको फेमस नहीं होना है, वो बिल्कुल ही अलग सोचता है।
1: जी
0: और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की हैं,
1: जी
0: उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने,
1: जी
0: अनुपम जी ने,
1: बहुत बढ़िया।
0: लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी कि जब रिलीज हुई पिक्चर जिस थिएटर में लगी, स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए, तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई।
1: हाँ, उस
0: तो
1: समय वो चल नहीं
0: फिर
1: पाई।
0: वो उसको मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीज़ें हो जाती है ना कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है, आपने हीरोइन किया है, तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है, ऑडिशन वगैरह वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं।
1: मतलब
0: तो
1: उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता,
0: नहीं मैं करती भी नहीं, क्योंकि
1: मेहनत
0: जब
1: करो अपनी,
0: हाँ अपनी मेहनत करो।
1: ये बहुत अच्छी बात है, उनको
0: क्योंकि मैंने
1: अपना
0: अपने
1: समझ
0: लिए कभी किसी को बोला नहीं, तो बच्चे के लिए क्या बोलूंगी।
1: जी। लेकिन आप जो चुलबुला किरदार है आपका, और जैसी आप हैं, और मैं इतने समय से आपको जान रही हूं, तो मैं समझ रही हूं कि आपके साथ बैठ के अगर 2 घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे ठहाके रुकेंगे नहीं। तो वो जो किरदार है, तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है, तो क्या आप करेंगी?
0: बिल्कुल करूंगी, मुझे कॉमेडी करना है, मेरा वो साइड अब एक्सप्लोर हुआ ही नहीं।
1: अच्छा
0: हाँ तो साजिद के साथ फिल्म की मैंने ना ये सुपर 30,
1: जी
0: तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है कि मुझे ना रोने धोने वाली माँ के लिए बुलाना नहीं तुम लोग मुझे जब बुलाना कॉमेडी कोई अच्छा तो बोले 100%,
1: हाँ
0: अब देखते हैं क्या होता
1: जी बिल्कुल होगा, आपने कह दिया, सोच लिया, और
0: हाँ
1: विविध भारती के परिसर में कई चीजें जो सोच ली जाती हैं वो पूरी

0: अजीत के साथ फिल्म की मैंने ना ये सुपर 30
1: जी,
0: तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है कि मुझे ना रोने धोने वाली माँ के लिए बुलाना नहीं तुम लोग मुझे जब बुलाना कॉमेडी कोई अच्छा तो बोले 100%। अब देखते हैं क्या होता है
1: जी बिल्कुल होगा, आपने कह दिया, सोच लिया।
0: हाँ।
1: और विविध भारती के परिसर में कई चीजें जो सोच ली जाती हैं वो पूरी हो जाती हैं। हाँ,
0: ऐसा
1: हम मान के चलते हैं। बिल्कुल, ये जगह बड़ी बड़े पवित्र लोग यहाँ पर आए हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर अभी आप तस्वीरें देखते हुए आ रहे थे तो बड़े बड़े किरदार आए हैं, तो ऊर्जा बड़ी अद्भुत है यहाँ की।
0: हाँ, लेकिन एक चीज बता रही हूँ मैं
1: जी
0: कि ऐसा नहीं है कि मिड लाइफ सिर्फ मतलब बेड ऑफ रोजेस बोलते ना बहुत बहुत तकलीफें आई और बहुत ऊंच नीच भी हुई और ट्रॉमाज हुए हैं लाइफ के, बहुत सारी चीजें हुई हैं। बस मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं थोड़े टाइम के बाद अपने आप हैप्पीनेस की तरफ चली जाती हूँ।
1: ऊर्जा सकारात्मक।
0: हाँ, वो मैं नहीं रख सकती इतना, क्योंकि मुझे लगता है क्राइम है खुद को दुख देना, दे के रहना या अपने पे तरस खा के रहना, क्योंकि आप सबको सब होता है मुझे और औरतों की तरह, ऐसा नहीं है।
1: हाँ,
0: लेकिन मैं सबको बताती भी नहीं हूँ जो उस दौर में हैं, या मुझे फ़ोन करके अपना दुखड़ा नहीं सुनाना है। मुझे लगता है कि एक ऐसा फेज़ भी आया लाइफ में कि मुझे लगा मैं जीऊँ या मर जाऊँ।
1: अरे
0: हाँ, मतलब इतनी सीवियरिटी वाली चीज़ हुई कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे जीना मतलब नहीं है इस टाइम, नेक्स्ट स्टेप ये होगा बेटर कि मेरी सांस ही ना आए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे लोग ऐसा देखेंगे, क्या मुझे जानते हैं मेरी हंसी के लिए, मेरी खुशी के लिए, तो मैं कुछ तो अच्छा करके जाऊं। और फिर मैं बाउंस बैक मैंने किया था।
1: क्या बात है।
0: और तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तरीका अच्छा है कि मैं खुश रहूं, खुश दिखूं, खुश बोलूं, और एटमॉस्फेयर अपने आप ठीक होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा।
1: बहुत अच्छी बातें हमको सुनने मिल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है साधना जी। और इस अच्छाई के बीच में अगर वो शुरुआत वाली अच्छाई आप पूरी कर दें हमारा एक गाना जो है, तो क्योंकि रविंद्र जैन जी जब कह गए कि तुमसे ही गवा लेते, तो हम भी चाहते हैं विविध भारती में आई हैं तो कुछ गाने हम
0: मैं
1: भी सुन
0: एक
1: लें।
0: कोशिश करती हूँ
1: जी
0: चलिए, मैं आपको आज ये भी बताती हूँ कि मैं रफी साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ। वो मतलब मेरे लिए भगवान भी हैं, सब कुछ है।
1: जी
0: मुझे लगता है मैंने रोमांस, दर्द, दुख जो भी है उनकी आवाज से सीखा है।
1: जी
0: उनका एक गाना गा देती हूँ
1: जी।

पुकारता चला मैं गली गली बाहर की, बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छांव।

0: और अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि अभी अगर 2 घंटे और बात की जाए तो साधना जी की कहानी पूरी नहीं होगी, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे जो नए नए बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं और बाकी हम जो महिलाएं हैं, इन सब के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो।
1: तो बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं कि क्या बच्चे, आई डोंट नो क्या उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं।
0: जी
1: जो बोलना चाह रहे हैं वो रोज आता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जैसे हेल्थ हेल्थ ऐसी चीज है जिसपे औरतों का बहुत कम
0: ध्यान
1: ये
0: होता है।
1: ख्याल होता है, क्योंकि उसको लगता है बेटे को भी बादाम खिला दूं, उसको भी खिला दूं, उसको भी खिला, बच्चे का तो देखती हूँ अपने लिए,
0: और बचता कभी नहीं।
1: बचता भी नहीं है और कभी क्रेप भी नहीं करती माएं।
0: जी
1: लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए तो ही आप सबको समेट पाएंगी, ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाएंगी जो आती है कभी कभी। कर्मा है ना, वो तो छोड़ेगा नहीं। और अपनी सेहत पे ध्यान दें। 50 में औरतें सोचती हैं हम लोग तो जिंदगी खत्म हो गई,
0: जी
1: तो वो जिंदगी शुरू होती है उस वक्त, क्योंकि आप
0: हाँ
1: सारी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। और उस उम्र में औरत सुंदर भी सबसे ज्यादा लगती है, लेकिन
0: हाँ
1: उसके पास नहीं है।
0: हाँ
1: तो अपने आप को देखें, अच्छी चीजें देखें, पहने। पहनने से मुझे याद आया, मैंने ब्रांड भी शुरू किया है,
0: अच्छा
1: हाँ, एक कच्चे धागे करके, और
0: अच्छा
1: साड़ियाँ वीव्स वगैरह। मैं चाहती हूँ सब खुश अच्छे से सज धज के रहें। औरतों का काम है, ये
0: जी
1: ड्यूटी है उनका, मतलब राइट बनता है कि सिर्फ खाना ही नहीं बनाए, अपने आप को भी बनाए। और अच्छी फिल्में देखें तो हम लोग अच्छी फिल्में करेंगे। मेरी एक फिल्म आ रही है कैसी ये पहेली,
0: जी
1: वो जरूर आप लोग देखिएगा। उसमें माँ बेटे का है स्टोरी, माँ बेटे की। बहुत
0: अच्छा
1: सारे उन फेस्टिवल में जा चुकी है
0: अरे वाह
1: और न्यूयॉर्क में तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो
0: क्या बात
1: मैं
0: है।
1: चाहती हूँ कि ये सब देखें,
0: फिल्म है कैसी है पहेली,
1: कैसी है पहेली।
0: जरूर से हम
1: हाँ
0: सभी विविध भारती परिवार जरूर इस फिल्म को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है।
1: हाँ
0: और आगे आपके पास में बहुत सारी फिल्में आएं, आप वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम जरूर देखना चाहते हैं, हमारा बड़ा मन है, क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंजा को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाशियां करती थी। सो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको। आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया,
1: अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगता है। विविध भारती से कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी हुई है।
0: तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए, नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए साधना जी। अच्छा
1: अच्छा
0: लगता है
1: लगा,
0: विविध भारती में जब आप
1: बिल्कुल
0: आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है, तो आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, प्रणाम।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बॉबी टॉकीज कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: अपना बॉम्बे टॉकी।
1: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, खनक यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ।

0: विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से सफर छाया गीत का कुछ ही पलों के इंतजार के बाद

छाया गीत के सफर में आज बातें अफसानों की। ये वो मोहब्बत के अफसाने हैं जिनमें कभी सुकून मिलता है तो कभी मिलती है तड़प, कभी मिलन है तो कभी जुदाई। कभी ये अफसाने खुशी के गीत बनकर झूमने लगते हैं तो कभी देते हैं दर्द की पुकार। पर जो भी है, हर दिल का एक अफसाना होता है, या यूं कहें कि हर दिल एक अफसाना लिखता है अपनी मोहब्बत का, अपनी चाहत का, जिसे कभी दिल खुद तो कभी पूरी की पूरी दुनिया गुनगुनाती है।

हम चल रहे तेरा ही जिंदगी पर अकेले और खामोश, तुम क्या मिले राही बनकर कि जिंदगी को एक नया अफसाना मिल गया। इस अफसाने में है दीवानगी, इसमें है दरिया की रवानगी। कोरे कागज जैसी जिंदगी पर जो अफसाना तूने लिख डाला, अब उसे ही तो ताउम्र भरते जाना है हमें।

तुम्हारे सामने आते ही शब्द खो से जाते हैं, जुबान रुक सी जाते हैं कहीं। जब तुम ही बसे हो इन निगाहों में, तो क्यों ना इन नजरों से ही मोहब्बत का अफसाना लिखा जाए। चाहत की ये दास्तां आखिर क्यों सुने कोई और, ये राज़े मोहब्बत तो बस दो दिलों के दरमियां ही महफूज रहे।

जिंदगी की राहों पर साथ चलते हुए बढ़ता जाता है मोहब्बत का अफसाना। इस अफसाने में कभी मौसम और कभी महकती रातों की बातें, तो कभी बिखरी जुल्फों और काली घटाओं की बातें होती है। यही अफसाना कभी गलियों का दिल बनकर धड़कता है, तो कभी क्षमा पर परवाने की प्रीत झूमने लगती है, गाने लगती है।

मोहब्बत के अफसाने में बस प्यार की ही बातें हो, ऐसा तो नहीं होता। इन अफसानों में तो झगड़े भी होते ही रहते हैं, और ये भी जरूरी नहीं कि हर बार नायिका ही रूठे और नायक उसे मनाए। कई अफसाने तो ऐसे भी बने हैं जिसमें नायिका ही अपने नायक को मनाने में लगी है। पर जो भी हो, हर अफसाने के अंजाम में सारी शिकायतें दूर हो ही जाती है, और तब दिल गा उठता है कोई प्यार भरा गीत।

ये अफसाना आज का नहीं है दोस्तों, ये अफसाना बहुत पुराना है। इस अफसाने में है बचपन की शरारतें, इसमें है बचपन की दोस्ती जिस पर आगे चलकर मोहब्बत का रंग चढ़ा। बिना बात के वो रोटना, वो मनाना, वो साथ साथ कविताएं पढ़ना, सावन के वो झूले, गर्मी की वो रातें, और हम अपनी छत से करते थे एक दूसरे को इशारे। इन हसीन यादों से ही तो बनता है हमारा ये छोटा सा प्यार भरा अफसाना।

ये दिल लिखता तो चला जाता है जिंदगी के अफसाने, पर ये काम इतना आसान कहाँ। अफसाने के किरदार ही इसे रातों को जगाते हैं। इन तमाम अफसानों में एक है मोहब्बत का अफसाना, जिसके होते हुए जमाने का कोई भी अफसाना भला कौन पढ़ना चाहेगा। और इन किरदारों में है एक ऐसा चेहरा जो हम सफर है इस अफसाने का। जब साथ हो इसका तो भला दुनिया से क्यों डरा जाए। जिंदगी की टेढ़ी मेढ़ी राहों से गुजर कर अपनी मंजिल पा ही लेता है मोहब्बत का ये प्यारा सा अफसाना, जो धड़कता है हर दिल में।

अफसानों की ये बातें आप सुन रहे थे छाया गीत के सफर में, अपनी हम सफर ज्योति के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी राष्ट्रीय विविध भारती के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जा रहे थे। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी खंडवा है। शाम के ठीक 5:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम निमाड़ी लोकगीत।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।

0: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
1: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
0: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
1: क्यों?
0: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
1: वो कैसे?
0: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
1: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
0: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
1: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
0: आप कब आ रहे हैं?
1: आकाशवाणी खंडवा पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम निमाड़ी लोकगीत। FM बैंड 101.2 MHz पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। शाम के ठीक 6 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

दिल बहलाने का कुछ इंतज़ाम चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक शाम चाहिए। हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का सुहानी सी इस शाम में। स्वीकार कीजिएगा हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त सिमरन गार्गो, और हमारा आज का दिन है शनिवार और क्रम है साप्ताहिक विज्ञान और खेल गतिविधियाँ। दोस्तों, क्रम आगे बढ़ाएं और कार्यक्रम में आगे जाएं, उससे पहले आपसे पूछते हैं हमारे आज के दो प्रश्न। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? और हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में। तब तक हमारे साथ चलते रहिए युववाणी में।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना।
2: आकाशवाणी खंडवा सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन।

कलम की धार से सच को उजागर करते हैं। यह निष्पक्ष पत्रकार ही हैं जो लोकतंत्र की पहरी कहलाते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज 30 मई को देशभर में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी पत्रकारिता के गौरवशाली इतिहास को याद करना और समाज को जागरूक कराने वाले पत्रकारों के योगदान को सम्मान देना है। दोस्तों, 30 मई 1826 को हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू हुआ था। दोस्तों, शब्द उदंत मार्तंड का अर्थ है उगता हुआ सूरज। दोस्तों, यह दिवस हमें याद दिलाता है कि कैसे स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारों ने अपना कार्य किया। पत्रकार ही ऐसे होते हैं जो छोटी से छोटी खबर भी जन जन तक आसानी से पहुंचाते हैं। देश समाज के लिए निरंतर मेहनत करते हैं। दोस्तों, यह दिन हमें सिखाता है कि किस तरह जागरूक समाज के निर्माण में एक लंबा सफर पत्रकार ने तय किया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्रम की ओर। नई खोजों की खातिर जो खुद को रात दिन खपाते हैं, वही वैज्ञानिक इस दुनिया का नया भविष्य बनाते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक से याद आया कि नासा ने जारी किया चंद्रमा पर केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक्स लैंडर्स हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्र

वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक्स लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। और दोस्तों, ये सब तभी हो सकता है जब हमारे देश के महान वैज्ञानिक दिन रात इन खोज के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने वर्ष 2028 में अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना बनाई है। दोस्तों, चीन वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की सोच में जुटा है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक अड्डा बनाने के लिए कई घोषणाएं की थी और इन मशीनों के निर्माण के लिए अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ऑरिजिन को चुना है। दोस्तों, हम चुनते हैं हमारी अगली गतिविधि और सुनवाते हैं आपको ये गीत।

असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं अपनी लगन से, प्रकृति के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के वैज्ञानिक हर कार्य को संभव कर दिखाते हैं। आँखों में जिज्ञासा और हाथों में विज्ञान का ज्ञान लिए, ये वैज्ञानिक ही हैं जो भविष्य की नई दुनिया का निर्माण करते हैं। दोस्तों, इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चांद के साउथ पोल पर सतह के नीचे वाटर आइस दबे होने की संकेत का पता लगाया है। दोस्तों, यह खोज -248 तापमान वाले बेहद ठंडे और डार्क कैटरस में एडवांस रडार तकनीक DFSAR के जरिए की है। दोस्तों, चांद पर मौजूद इस बर्फ का इस्तेमाल आगे के मानव मशीनों के पीने के पानी, ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन बनाने के लिए किया जा सकेगा। दोस्तों, खास बात यह है कि यह चंद्रमा पर भेजा गया पहला पूरी तरह पोलोमेट्रिक सिंथेटिक अपचर रडार है, जो एल बैंड और एस बैंड फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन में ऐसे गड्ढों का पता किया है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। इस वजह से यहां तापमान 25 केल्विन यानी -248 डिग्री रहता है, इसलिए यहां पानी जमकर बर्फ सुरक्षित रहती है। दोस्तों, अब पारी है कार्यक्रम के अगले गीत की।

पसीना बहाकर जो सींचते हैं देश की माटी, कामान वही खिलाड़ी होते हैं जो बढ़ाते हैं तिरंगे की शान। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे देश के महान खिलाड़ियों की, जो मैदान चाहे जो भी हो, देश की जीत का झंडा ज़रूर लहराते हैं। दोस्तों, 23वीं एशियाई चैम्पियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया और उन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बधाई दी। दोस्तों, वियतनाम के दानांग में आयोजित 2026 U23 एशियाई चैम्पियनशिप में भारतीय पहलवानों ने कड़ी मेहनत के बाद जीत देश के नाम की। दोस्तों, पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीम ने चैम्पियनशिप में टीम खिताब जीते। दोस्तों, खास बात यह है कि पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने 4 स्वर्ण पदकों सहित 9 पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया, जो चैम्पियनशिप के इतिहास में देश के अब तक के सर्वाधिक पदक हैं। पुरुष के साथ हमारे देश की महिलाएं भी पीछे नहीं रहती। दोस्तों, महिला कुश्ती दल ने भी 6 स्वर्ण पदकों सहित 10 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। साथ ही ग्रीको रोमन टीम ने चैम्पियनशिप में 8 पदकों के साथ अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। दोस्तों, अब बारी है कार्यक्रम के अगले गीत की। आइए सुनवाते हैं आपको ये गीत।

दोस्तों बात करें आईपीएल की तो क्वालिफायर 2 5 सीजन में तीसरी बार फाइनल खेलेगी गुजरात टाइटंस, बेंगलुरु से होगा सामना। दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम ने तीसरी बार फाइनल में जगह बना ली है, राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से पीछे किया। दोस्तों ओपनर साई सुदर्शन ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। गुजरात की टीम 5 सीजन में तीसरी बार खिताबी मुकाबले में पहुंची है। अब टीम दूसरे खिताब के लिए 31 मई को बेंगलुरु के साथ खेलेगी। दोस्तों 215 रन चेंज करते हुए शुभमन और सुदर्शन ने पहले विकेट के लिए 168 रन मात्र 13वें ओवर तक जोड़ दिए। साथियों यह लीग इतिहास में प्लेऑफ की सबसे बड़ी साझेदारी रही। शुभमन और सुदर्शन ने T20 क्रिकेट में 11वीं बार 100 रन जोड़कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। दोस्तों 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर 96 रन बनाए और टीम को 200 का स्कोर दिया। वैभव ने बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंद खेली और पारी खेलते हुए 8 चौके 7 छक्के लगाए और आखिरी ओवर में 4 छक्के के साथ होल्डर ने 2-2 विकेट लिए। दोस्तों अगला मैच 31 मई रविवार को शाम 7:30 बजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। और चलिए हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, हमारे देश के वैज्ञानिक हो या खिलाड़ी, देश के नाम में जीत जोड़ने के लिए कोई पीछे नहीं हटता, क्योंकि कहा ही जाता है हमारा देश महान है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का विशेष कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, हमें पत्र और ईमेल्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, कार्यक्रम समाप्त करें, पर उससे पहले आपको बताते हैं हमारे शुरुआत में पूछे गए सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न था, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसका उत्तर है पटना, बिहार में। दोस्तों, हमारा आज का दूसरा प्रश्न था, चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है शिव शक्ति पॉइंट। दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त करने की दे अनुमति आपकी रेडियो दोस्त सिमरन गार्गव को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। शाम के ठीक 6:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी खंडवा, सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन।

0: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
1: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
0: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
1: क्यों?
0: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
1: वो कैसे?
0: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
1: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
0: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
1: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
0: आप कब आ रहे हैं?
1: आकाशवाणी खंडवा पर।

0: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
1: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे
2: हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में डीके शिवकुमार को नया नेता चुना गया है।

0: इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। विधायकों ने उन्हें अपना नेता और अगला मुख्यमंत्री चुना है। श्री शिव कुमार को नेता चुने जाने के प्रस्ताव को पारित करने के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक में पार्टी विधायकों को आधिकारिक रूप से इसकी सूचना दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांव को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांव को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार है। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल नेपॉन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित और परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
1: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
0: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
1: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
2: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
2: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
1: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
2: क्यों?
1: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
2: वो कैसे?
1: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
2: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
1: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
2: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
1: आप कब आ रहे हैं?
2: आकाशवाणी खंडवा पर।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: बड़े अच्छे लगते हैं
2: क्या
1: ये धरती ये नदिया ये रैना
3: आकाशवाणी खंडवा सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन।
4: कार्यक्रम विवरण सम यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
5: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ।

0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। खेत बचाओ अभियान युद्ध स्तर पर किया जाएगा संचालित, कहा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है सेना। और मानसून ने पकड़ी रफ्तार, इधर प्रदेश के मौसम ने बदली करवट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। खेत बचाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की सक्रिय भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ये बातें केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक के दौरान कही।
3: खेत बचाओ अभियान में गांव गांव तक पहुंचने का हमारा प्रयास होगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अधिकारी, हमारे वैज्ञानिक, कृषि विभाग का एक सेंसर का अमला, हमारे प्रगतिशील किसान, हमारे KVK एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथी, ये सब के सब जुटेंगे। और इसी दौरान एक तरफ हम बेहतर और संतुलित खेती पर चर्चा करेंगे, वहीं कई योजनाओं का लाभ भी, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो हम बना के वहां देने का प्रयास करेंगे, मैकेनाइजेशन के यंत्र बटना है तो उसमें बट सकते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड अगर देना है तो उसमें दिए जा सकते हैं। तो जितनी चीजें व्यवहारिक रूप से हो सकती है उसमें देने का प्रयास करेंगे। ये खेत बचाओ अभियान 1 से लेकर 30 जून तक व्यापक पैमाने पर चलेगा।
2: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि गोमती नदी के नाम पर बने INS गोमती युद्धपोत के कारण लखनऊ का नौसेना से पुराना नाता रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर और ब्रह्मोस निर्माण के जरिए देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रहा है।
4: 2014 तक भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वह बहुत कम हुआ करता था। हम केवल 1,000 करोड़ रुपए से भी कम के हथियार और साजो सामान दुनिया को बेच पाते थे, लेकिन आज वही बढ़कर हम लगभग 40,000 करोड़ रुपए के सामान दुनिया के दूसरे देशों को दे रहे हैं। इस तरह डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहां लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है।
2: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह बदला जा रहा है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनते ही सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन का गतिरोध 1 हफ्ते में दूर कर लिया गया है। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
5: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
2: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, फिलहाल संघर्ष विराम जैसी स्थिति है। जरूरत पड़ी तो तीनों सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने एक मानक तय कर दिया है जो कि भारत किसी भी उकसावे पर कैसे जवाब देता है ये जाहिर

कराता है। ये बातें सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड के दौरान कही। इस वर्ष रक्षा अकादमी ने कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, साथ ही मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि हमारे युवा देश की आशा और सामर्थ्य हैं, उनके विचार और चरित्र ही देश का भविष्य तय करेंगे। जरूरी है कि हमारे युवा जो भी काम करें उसमें वे उत्कृष्टता और संवेदना पर विशेष बल दें। राज्यपाल आज रविन्द्र भवन के अगर जीवन में संवेदना का भाव ही सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता है, ममता और करुणा का मोल पैसों से कहीं ज्यादा हुआ करता है, इसलिए भावी जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए कभी भी उन लोगों को नहीं भूलें जिन्होंने आपका सहयोग किया है। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 में उत्साहजनक बातें सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में तीव्र प्रगति के आंकड़े बताए गए हैं। ये सर्वेक्षण वर्ष 2023-24 के दौरान किया गया, जिसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवार शामिल हुए। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार भारत में संस्थागत प्रसव वर्ष 2019 से वर्ष 2021 में 88.6% से बढ़कर 2023-24 में 90.6% हो गए हैं। बात मौसम की करते हैं। बारिश की आशा लगाए नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। मानसून ने एक बार फिर से गति पकड़ ली है। अगले 4 से 5 दिन के भीतर केरलम और तमिलनाडु में मानसून के पहुंचने के लिए वातावरण की परिस्थितियां तेजी से अनुकूल हो रही हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तथा लक्षद्वीप और कन्याकुमारी क्षेत्र के कुछ इलाकों में मानसून आगे बढ़ रहा है। इधर नौतपा के बीच मध्य प्रदेश के मौसम ने अचानक करवट बदली है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है, जबकि शेष इलाकों में खासी गर्मी पड़ रही है। प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में तो रातें भी बहुत गर्म रही है। इस दौरान नरसिंहपुर का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसी क्रम में राजगढ़ में 42, खरगोन में 41.6, भोपाल में 40 और इंदौर में 38.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, दतिया, भिंड, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा आधे से अधिक प्रदेश में आंधी तूफान की परिस्थिति भी निर्मित हो सकती है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। मंडला जिले में आज वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्य जीव अनुश्रवण कार्य को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कान्हा टाइगर रिजर्व में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। विधायक बैतूल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने आज नगर पालिका बैतूल अंतर्गत विभिन्न विकास परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। शहडोल जिले में इस साल समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी लक्ष्य से अधिक हुई है। 25,000 मीट्रिक गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इस साल 29,244 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। सीहोर जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत अब तक 2,555 चेक डैम निर्माण, 10 तालाब निर्माण, 17 सोसर निर्माण और 4 तालाब गहरीकरण जैसे कार्य लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण किए गए हैं। नीमच जिला चिकित्सालय के रेडक्रॉस सभागार में वृद्धजनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। झाबुआ के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बीएस बघेल ने आज जिला अस्पताल झाबुआ के ब्लड स्टोरेज सेंटर का निरीक्षण किया और आमजन को रक्तदान के महत्व की जानकारी दी। छिंदवाड़ा जिले में स्कूल छोड़ चुके या नियमित रूप से स्कूल नहीं जा रहे बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जाएंगे। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड खंडवा द्वारा वर्ष 2026-27 में कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत जिले के बेरोजगार युवक और युवतियों को विभिन्न व्यवसायों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। और हार्निया रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा समय पर उपचार के लिए इंदौर में 2 दिवसीय निःशुल्क हार्निया जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। खेत बचाओ अभियान युद्ध स्तर पर किया जाएगा संचालित, कहा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है सेना और मानसून ने पकड़ी है रफ्तार। इधर प्रदेश के मौसम ने बदली करवट। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा, और अब लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों और बहनों के लिए उनका नियमित कार्यक्रम किसान वाणी।

किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाला हमारा सभी भाई बहन नख आपकी बहन माधुरी सेन की राम राम। भाई बहन होन, स्वस्थ शरीर का लेन जरूरी छे स्वच्छ स्वादिष्ट ने संपूर्ण भोजन, जैकासी हमारा शरीर का सभी पोषक तत्व मिली सकज। भोजन में शामिल सब्जी नको भी अलग अलग महत्व रहे न। आपका पतोच की सब्जी नको राजा के खकयो जाए तो हम आपका बताई देवा कि सब्जी नको राजा आलू खकयो जाए। भाई बहनों, आलू एक प्रमुख खाद्य फसल छे, नहीं जमीन का अंदर उगने वाली कंद यानी गांठ वाली फसल छे। हमारा देश में आलू को उपयोग सब्जी, चिप्स, पापड़, नमकीन न कई खाद्य पदार्थ बनाने में भी करयो जाए। भाई बहनों, ई कम समय में तैयार होने वाली फसल छे न लगभग हर मौसम में एक ही मांग रहे। एमा कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, पोटेशियम न फाइबर पाया जाए न ई ऊर्जा देने वालों भोजन भी मान्यो जाए। भाई बहनों, किसान भाई न कले लाभदायक न नकदी फसल छे न जल्दी तैयार हुई खन अच्छी आमदनी भी दे सकज। भाई बहनों, आज छे 30 मई न आज का दिन ख हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस का रूप में मनाया जाए। ई दिवस आलू का पोषण, खाद्य सुरक्षा न किसान न की आय में एक महत्व को उजागर करना का लेन मनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 में 30 मई का अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस घोषित कियो गयो। भाई बहनों, इन दिवस का मनाना को उद्देश्य आलू का महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ानु, खाद्य सुरक्षा में आलू की भूमिका ख बतानु, किसान न की आय न रोजगार में एक योगदान ख बढ़ावो देनु, साथ ही आलू की विभिन्न किस्म न ख टिकाऊ खेती ख प्रोत्साहित करनु। भाई बहनों, 2026 की थीम छे जहां आलू उगज वहां आजीविका फलज फूलज। नेको उद्देश्य किसान न कृषि से जुड़िया लोग न की आजीविका में आलू की भूमिका ख दर्शानु छे। भाई बहनों, अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस कसो मनायो जाए तो इना दिन स्कूल, कॉलेज न कृषि संस्थान में आलू का महत्व पर चर्चा, भाषण न कार्यक्रम कराया जाए। इना दिन किसान का आलू की उन्नत खेती, नई तकनीक, रोग नियंत्रण न अच्छी पैदावार का बारे में जानकारी भी दी जाए, साथ ही अलग अलग किस्म का आलू, खेती की तकनीक न कृषि उपकरण की प्रदर्शनी भी लगाई जाए, साथ ही लोग न बतायो जाए कि आलू में कौन कौन सा पोषक तत्व पाया जाए, नई स्वास्थ्य का लेन कसा लाभदायक छे। भाई बहनों, पोस्टर, नारा, संदेश न वीडियो का माध्यम से आलू का महत्व का बारे में जागरूकता भी फैलाई जाए, साथ ही कई जगह अच्छी खेती करने वाला किसान नख सम्मानित भी करो जाए। भाई बहनों, अंतर्राष्ट्रीय आलू

दिवस पर लोग नख आलू की उपयोगिता पोषण न खेती का महत्व का बारे में जागरूक करना का लेन विभिन्न कार्यक्रम प्रशिक्षण न प्रचार का माध्यम से एक मनायो जाए न भाई बहन हो आगे बातचीत तो हम अरु करांगा पर आओ थोड़ो मनोरंजन करांच न सुनांच यो नी माड़ी लोकगीत।

0: अभी हमने सुने हो कांता चौहान साथी नको गायल योनी माड़ी लोकगीत।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: न भाई बहनों, अब आपसे पूछे लेवाज आज को खेती किसानी संबंधित सामान्य ज्ञान को प्रश्न। तो आज को हमारो प्रश्न छे कि असो कौन सो फल छे जेको विकास पुष्प क्रम में होए। प्रश्न के एक बार फिर इसी सुनी लो कि असो कौन सो फल छे जेको विकास पुष्प क्रम में होए। न इना प्रश्न को उत्तर आप सोची खने राख जो, क्योंकि इना प्रश्न को उत्तर हम आप खदे बंगा कार्यक्रम का अंत में। जब तक सुनता रहो कार्यक्रम किसान वाणी। भाई बहनों, शासन द्वारा किसान न का हित में कई योजना न चलाई जाई रही, जेको लाभ किसान भाई न ख मिली सकेगा, न किसान भाई न ख मुनाफो भी होए। असी योजना में से एक योजना छे किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजना। ई योजना भारत शासन द्वारा सन 1998 में शुरू करी गई थी। एका तहत किसान न ख कृषि, पशुपालन न मछली पालन का लेना बेहद सस्ती दर पर लोन मिलज। कार्ड की वैधता 5 वर्ष की रहज। भाई बहनों, बात करा किसान क्रेडिट कार्ड की मुख्य विशेषता न लाभ की, तो एमा सस्तो लोन, जेमा भाई बहनों एमा 3 लाख तक का अल्पावधि कृषि ऋण पर सामान्य ब्याज दर 7% छे। समय पर लोन चुकाना पर 3% की छूट मिलज, जेकासी प्रभावी ब्याज दर मात्र 4% रही जाएज। साथ ही बिना किसी जमानत या कोलेट्रल का 1.60 लाख रुपया तक को लोन भी दियो जाए। एमा फसल का साथ साथ पशुपालन, डेयरी न मत्स्य पालन का लेना भी इना कार्ड का माध्यम से कार्यशील पूंजी प्राप्त की जाई सकज। बीमा कवर भाई बिंडोनी केसीसी धारक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा न फसल बीमा की सुविधा भी मिलेगा। बात करा आवेदन की पात्रता की, तो कोई भी किसान व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से खेती करने वालों पात्र होना चाहिए। साथ ही किरायादार या पट्टेदार किसान भी योजना को लाभ उठाई सकज। न आवेदक की उम्र 18 से 75 वर्ष का बीच होना चाहिए, न 60 वर्ष से अधिक आयु वाला का लेना सह आवेदक जरूरी छे। भाई बहनों, बात करा कि आवेदन कसा करा, तो आप अपना नजदीकी बैंक शाखा में जाई ख ऑफलाइन आवेदन करी सकोज, या शासन का आधिकारिक माई स्कीम पोर्टल न किनी भी सरकारी वाणिज्यिक बैंक की वेबसाइट का माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन करी सकोज। भाई बहनों, एक अतिरिक्त जन समर्थ का माध्यम से भी आप आवेदन करी सकेगा। भाई बहनों, एमा आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, पेन कार्ड, जमीन का कागजात न पासपोर्ट साइज फोटो शामिल छे। बजट घोषणा का अनुसार संशोधित ब्याज अनुदान योजना का तहत अब किसान न खेती न एका से जुड़िया कार्य का लेना 5 लाख तक को लोन आसानी से मिली सकेगा। भाई बहनों, ई कार्ड एटीएम न डेबिट कार्ड की तरह काम करज। किसान बैंक द्वारा निर्धारित क्रेडिट सीमा मसी अपनी आवश्यकता अनुसार कभी भी कहीं भी पैसों आप निकाली सकोज। न इना कार्ड को उपयोग केवल खेती ही नहीं बल्कि पशुपालन, डेयरी न मत्स्य पालन से संबंधित खर्चा न कार्यशील पूंजी का लेना भी करो जाए। न केसीसी धारक किसान नख व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलज, जेमा मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में 50,000 तक को न अन्य जोखिम पर 25,000 तक को कवर प्रदान कियो जाए। भाई बहनों, लोन चुकाने की अवधि 5 वर्ष तक की होए, न एको पुनर्भुगतान फसल कटना या उपज बिकने का बाद आसानी से कियो

0: कई सकज। तो भाई बहनों ने आप भी इनी योजना को लाभ जरूर लीजो। न आओ अब सुनांज ई वार्ता जेको विषय छे प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता। इना विषय पर जानकारी दे रहे भगवंत राव मंडलोई कृषि महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रथम वर्ष की छात्रा गायत्री मालाकार।
1: नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम गायत्री मालाकार है। मैं भगवंत राव मंडलोई कृषि महाविद्यालय खंडवा की छात्रा हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है। पहले किसान प्राकृतिक तरीके से खेती करते थे, जैसे हल चलाकर, गोबर की खाद डाल के। लेकिन आज के समय में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग बढ़ गया है। पहले के ज़माने में मिट्टी उपजाऊ रहती थी और भोजन भी शुद्ध मिलता था, लेकिन समय के साथ कीटनाशकों और रासायनिक खादों का उपयोग बढ़ने से मिट्टी की उर्वरता कम होने लगी है, पानी भी प्रदूषित होने लगा है और किसानों की लागत भी बहुत बढ़ चुकी है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक खेती आज के जीवन की और दौर की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। तो आइए जानते हैं कि प्राकृतिक खेती है क्या। प्राकृतिक खेती ऐसी खेती है जिसमें रासायनिक खाद, कीटनाशक और जहरीली दवाइयों का उपयोग नहीं किया जाता। इसमें गाय और अन्य पशु आधारित जैविक पदार्थों और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। गाय भैंस से मिलने वाले गोबर, मूत्र और उनसे प्रसंस्कृत करके बनाई जाने वाली खादें, जिनका उपयोग अगर हम खेती में करें तो उससे हमारे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, कम लागत में खेती हो जाती है, शुद्ध और पौष्टिक भोजन का उत्पादन होता है और पर्यावरण का संरक्षण होता है। किसान साथियों, जीरो बजट प्राकृतिक खेती आखिर है क्या। जीरो बजट प्राकृतिक खेती ऐसी खेती पद्धति है जिसमें किसान बिना रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बहुत कम खर्चे में प्राकृतिक तरीके से खेती करता है। इसमें मुख्य रूप से देसी गाय के गोबर और गोमूत्र का उपयोग किया जाता है। जीरो बजट का अर्थ है कि खेती में बाहर से महंगी खाद, दवाइयाँ और रसायन खरीदने की आवश्यकता बहुत कम या लगभग नहीं के बराबर होती है। किसान अपने खेत और पशुओं से प्राप्त संसाधनों का उपयोग करता है, जिससे खेती की लागत घट जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि प्राकृतिक खेती आखिर की कैसे जाती है। प्राकृतिक खेती करने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। खेत की गहरी जुताई कम की जाती है, मतलब खेत में हल्की जुताई करना चाहिए। मिट्टी की प्राकृतिक संरचना को बचाया जाता है। खेत में जैविक अवशेष जैसे सूखी घास और पत्तियाँ मिलाई जाती है। उसके पश्चात बीज बोने से पहले उसे बीजामृत से उपचारित किया जाता है। बीज उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बीज से जनित होने वाली कई सारी बीमारियों को रोकथाम के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। बीजामृत बनाने की सामग्री देसी गाय का गोबर, गौमूत्र, चूना, खेत की मिट्टी और पानी। इस घोल में बीजों को कुछ समय तक भिगोया जाता है। इससे बीज रोगमुक्त और मजबूत बनते हैं। इसके अलावा हम खाद के रूप में जीवामृत का भी उपयोग कर सकते हैं। ये गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन और मिट्टी से तैयार किया जाता है। इसे खेत में डालने से मिट्टी में सूक्ष्मजीव बढ़ते हैं और फसल अच्छी होती है। जीवामृत को कुछ दिनों तक सड़ा कर खेत में डाला जाता है। इससे मिट्टी में सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं और फसल अच्छी होती है। किसान साथियों, खेत में

खरपतवारनाशियों का उपयोग कम करके या बिना किए भी अपने खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। उसमें सबसे प्रमुख क्रिया होती है मल्चिंग की, मल्चिंग करना, यानी फसल के आसपास सूखी घास, पत्तियां या जो भी अपनी पुरानी फसल के अवशेष होते हैं उन्हें फसल के आसपास बिछा दिए जाते हैं। इससे लाभ ये होता है कि मिट्टी में नमी बनी रहती है, जो सूखी

पुरानी फसल के अवशेष होते हैं, उन्हें फसल के आसपास बिछा दिए जाते हैं। इससे लाभ ये होता है कि मिट्टी में नमी बनी रहती है, जो सूखी घास या पत्तियां फसल के अवशेष होते हैं वो पानी को भाप बन के उड़ने से रोकते हैं और उसके बाद खरपतवार कम उगते हैं, पानी की बचत होती है और मिट्टी भी उपजाऊ बनती है। मल्चिंग दो प्रकार की होती है, एक तो जैविक मल्चिंग जिसमें हम सूखी घास पत्तियां भूसा और फसल अवशेष का उपयोग करते हैं, दूसरी होती है अजैविक मल्चिंग। इसमें हम प्लास्टिक शीट या अन्य जो कृत्रिम जो पदार्थ होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। मल्चिंग करने में हमें यह एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो मल्चिंग की परत होती है वो बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए और पौधों के तने को पूरी तरीके से नहीं ढकना है। अगर हम पूरी तरीके से उसे ढक देंगे तो हवा का संचार अच्छे से नहीं हो पाएगा। हमें इस तरीके से ढकना है कि पौधे के तने को पर्याप्त रूप से हवा मिलती रहे। मल्चिंग के अन्य फायदे ये भी है कि इससे हमारी जो मिट्टी रहती है उसका तापमान नियंत्रित रहता है। गर्मी के मौसम में मिट्टी ठंडी और सर्दी में गर्म रहती है, ये मिट्टी के कटाव को भी कम करता है। जैसे बारिश और तेज हवा से मिट्टी बह नहीं पाती, इससे फसल की वृद्धि अच्छी होती है, जड़ों को पर्याप्त नमी और पोषण मिलता है। मल्चिंग एक सरल, सस्ती और लाभदायक तकनीक है, इससे प्राकृतिक खेती में इसका विशेष महत्व है। अब किसान साथियों, ये तो हो गई खरपतवार नियंत्रण की बात, लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि हमने खरपतवार नियंत्रण तो कर लिया लेकिन हम प्राकृतिक तरीके से कीट नियंत्रण कैसे करें। तो इसके लिए रासायनिक दवाइयों की जगह पर प्राकृतिक घोलों का उपयोग किया जाता है, जैसे नीम का घोल। प्राकृतिक खेती में कीटों और रोगों से बचाव के लिए नीम का घोल बहुत उपयोगी माना जाता है। किसान साथियों, यह एक प्राकृतिक कीटनाशक है जिससे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट नियंत्रित होते हैं और पर्यावरण को भी हानि नहीं होती। नीम का घोल बनाने के लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता है, जैसे नीम की पत्तियां या नीम के बीज लगभग 5 किलो, पानी 10 लीटर, थोड़ा सा साबुन का घोल। बनाने की प्रक्रिया क्या है? नीम की पत्तियों या बीजों को अच्छी तरह से कूट ले, इन्हें 10 लीटर पानी में रात भर भिगो कर रखें। फिर अगले दिन इस मिश्रण को अच्छी तरह से मसल कर छान लें, इसमें थोड़ा सा साबुन का घोल मिला दें ताकि दवा पत्तियों पर अच्छी तरह से चिपक सके। अब ये घोल छिड़काव के लिए तैयार है। इस घोल का उपयोग कैसे करें? इस घोल का छिड़काव सुबह या शाम के समय करें। 7 से 10 दिन के अंतराल पर दोबारा छिड़काव किया जा सकता है। कीट अधिक होने पर मात्रा बढ़ाई जा सकती है। नीम का घोल किन कीटों पर प्रभावी है? नीम का घोल कई प्रकार के कीटों को नियंत्रित करता है, जैसे माहू या एफिड्स, सफ़ेद मक्खी, तना छेदक, इल्ली, फली छेदक और रस चूसने वाले कीट। नीम के घोल का फ़ायदा ये है कि यह रसायन मुक्त होता है और मिट्टी और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। नीम आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है, इसलिए खर्चा कम आता है। यह मधुमक्खियों और अन्य उपयोगी जीवों को कम नुकसान पहुंचाता है और फसल की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। अब नीम का घोल तो बना लिया, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां रखी जाती है, जैसे कि बहुत तेज़ धूप हो तो छिड़काव ना करें, ताज़ा घोल ही उपयोग करें, बारिश के समय छिड़काव से बचें। इसके अलावा लहसुन मिर्च का घोल भी कीट नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे हरी मिर्च और लहसुन को अच्छी तरह से पीस ले, इस मिश्रण को 10 लीटर पानी में मिलाएं, इसे रात भर के लिए ढककर रख दें। फिर अगले दिन कपड़े से इसे छान ले, इसमें थोड़ा सा साबुन का घोल मिला दे ताकि जो दवाई है वो पत्तियों पर अच्छी तरह से चिपके रहे। अब ये घोल छिड़काव के लिए तैयार है। इसमें सावधानी ये रखी जाती है कि तेज़ धूप में इसे छिड़काव नहीं करना चाहिए और घोल को आँखों से और त्वचा से दूर रखना चाहिए। ताज़ा घोल का उपयोग करना अधिक लाभकारी होता है। अब बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। प्राकृतिक खेती में ज़रूरत के अनुसार कम पानी दिया

रहता है ताकि मिट्टी में नमी बनाए रखे। इसमें मिट्टी में नमी बनाए रखने पर ध्यान दिया जाता है। इसमें टपक सिंचाई यानी ड्रिप सिस्टम जैसी विधियों का उपयोग किया जाता है जिससे पानी की कम से कम हानि हो। किसान साथियों, हम प्राकृतिक खेती में मिश्रित और बहुफसली खेती भी अपना सकते हैं। इसमें प्राकृतिक खेती में एक साथ कई फसलें उगाई जाती हैं जैसे गेहूं और चना एक साथ, फिर मक्का प्लस दाल वाली और सब्जियों के साथ मसाले वाली। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और किसान को एक ही भूमि में अधिक फसल लगाने से मुनाफा भी अधिक मिलता है। बहुफसली खेती या मिश्रित फसल करने से हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो फसल है उनमें विपरीत गुण होने चाहिए। यानी कि एक फसल अगर ऊंचाई वाली है जिसकी हाइट ज़्यादा है तो हमें दूसरी फसल ऐसी रखनी है जिसकी ऊंचाई कम हो। अगर एक फसल हमारी कम पानी वाली है तो दूसरी फसल अधिक पानी वाली हो। अगर एक फसल अधिक खाद वाली हो दूसरी कम खाद वाली फसल हो। और हमें ऐसी फसल चुननी चाहिए कि जिसमें एक ही प्रकार के कीट और बीमारियां ना लगे। अब बात करते हैं कि प्राकृतिक खेती में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। इसमें लगभग सभी प्रकार की फसलें ली जा सकती है जैसे गेहूँ, धान, दालें, तिलहन, सब्जियां हो गई, फिर फल और मसाले इत्यादि। अब किसान साथियों, आपके मन में यह बात होगी कि अगर हम प्राकृतिक खेती कर भी लें तो क्या सरकार इसमें हमारी कुछ सहायता करेगी? तो हाँ, कई प्रकार की योजनाएं और सब्सिडियां चलाती है जिससे किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहन मिले और उन्हें लागत में थोड़ी सी राहत मिले। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। इस योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता दी जाती है। लगभग 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता 3 वर्षों तक दी जाती है। इसमें किसानों को प्रशिक्षण और मार्केटिंग की सहायता भी मिलती है। इसके अलावा परंपरागत कृषि विकास योजना पीएम प्रणाम योजना भी किसानों को कई हद तक राहत दिलाती है। इसके अलावा किसानों को जैविक खाद निर्माण, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, प्राकृतिक कीटनाशक, ड्रिप सिंचाई, कृषि उपकरण एवं प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आदि में भी किसानों को सहायता दी जाती है। किसान इन योजनाओं के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं? इसके लिए वे अपने निजी कृषि विभाग कार्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK, ऑनलाइन कृषि पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। किसान साथियों, प्राकृतिक उत्पाद यानी प्राकृतिक खेती की बाज़ार में मांग भी काफ़ी बढ़ रही है। आजकल लोग बीमारियों से बचने के लिए रसायन मुक्त भोजन खाना चाहते हैं। प्राकृतिक खेती से उगाई गई सब्जियां, फल, अनाज अधिक सुरक्षित माने जाते हैं। लोगों का स्वास्थ्य की ओर ध्यान बढ़ा है तो वह सोचते हैं कि उन्हें हर चीज़ ऑर्गेनिक ही मिले। इसलिए जो मार्केट में प्राकृतिक खेती से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। रासायनिक खेती के नुकसान से जो मिट्टी, पानी और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए लोग प्राकृतिक उत्पादों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि कहाँ बिकते हैं ये प्राकृतिक उत्पाद? पहला तो है स्थानीय बाज़ार। गांव और शहरों के बाज़ार में लोग प्राकृतिक उत्पाद खरीदना पसंद करते हैं। दूसरा है ऑर्गेनिक स्टोर, जैसे कुछ विशेष दुकानों में प्राकृतिक और जैविक उत्पाद अच्छे दाम से बिकते हैं। वे इनका लगभग दुगना दाम भी देने के लिए तैयार रहते हैं। और आज की बढ़ती ऑनलाइन दुनिया में, आधुनिक दुनिया में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी कई बढ़ रहे हैं जिसमें किसान जो अपने उत्पादों को ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। इसके अलावा सुपरमार्केट और मॉल में भी प्राकृतिक उत्पाद के अलग अलग सेक्शन बनाए जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती में शुरुआत में तो उत्पादन थोड़ा कम होता है, जैसे कि शुरू के 1-2 साल में हमें उत्पादन कम देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर हम जैविक खादों का और प्राकृतिक खेती को सुचारू रूप से अगर बनाए रखते हैं तो इससे हमारा जो मिट्टी की जो पैदावार है वो बढ़ती जाती है, उसकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है, फसल गुणवत्ता में भी सुधार आता है और हमारा मुनाफा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो किसान साथियों, अंत में निष्कर्ष

0: बस इतना निकलता है कि प्राकृतिक खेती कम लागत, कम पानी और बिना रसायनों के की जाने वाली सुरक्षित खेती पद्धति है। इससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है और किसानों को भी अच्छा लाभ मिलता है। धन्यवाद।
1: भाई बहनों, अभी हमने सुनी ई वार्ता विषय थो प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता। इन विषय पर जानकारी देनी थी भगवंत राव मंडलोई कृषि महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रथम वर्ष की छात्रा गायत्री मालाकार। न भाई बहनों, अब समय छे आज का कृषि समाचार नको। तो आज का कृषि समाचार इना प्रकार सी छे। मुनाफा की खेती सरसों न चना में प्रदेश का किसान नख मिली रहो देश में सबसे ज्यादा मुनाफो। भाई बहनों, मध्य प्रदेश का किसान नका लेना खेती खल लई खा एक बहुत ही सुखद खबर सामने आई। नया आंकड़ा का अनुसार मध्य प्रदेश का किसान कम लागत में सही प्रबंधन करी खा पड़ोसी राज्य का मुकाबला कई फसल में बहुत बेहतर मुनाफो कमाई रहा। इन्हीं सफलता का पीछा सबसे बड़ो कारण ई छे कि मध्य प्रदेश में खेती की वास्तविक लागत दूसरे राज्य की तुलना में काफी नियंत्रित छे। न ई तो था आज का कृषि समाचार। न अब आपका बता देवा खंडवा कृषि उपज मंडी से प्राप्त उपज का भाव की जानकारी। सोयाबीन न्यूनतम भाव रहा 5,881 रुपया प्रति क्विंटल से अधिकतम 7,502 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं न्यूनतम भाव रहा 2100 रुपया प्रति क्विंटल से अधिकतम 2,441 रुपया प्रति क्विंटल। चना का न्यूनतम भाव रहा 5,550 रुपया प्रति क्विंटल से अधिकतम 5,981 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का का न्यूनतम भाव रहा 1,880 रुपया प्रति क्विंटल से अधिकतम 1,921 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग का न्यूनतम भाव रहा 5,500 रुपया प्रति क्विंटल से अधिकतम 7,354 रुपया प्रति क्विंटल। उपज की जानकारी का बाद अब समय छे मौसम की जानकारी को। आज सूर्योदय सुबह 5:41 पर हुयो न सूर्यास्त शाम 7:03 पर हुयो। आज का दिन को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहो न रात को न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। न मौसम की जानकारी का बाद आओ थोड़ो मनोरंजन अरु करांज न सुनांज जीवन मता खेड़े न साथी न को गायल यो निमाड़ी लोकगीत।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। और अब राष्ट्र विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।

महल के अंतर्गत श्रृंखला सुनो कहानी में आज आपको सुनाता हूं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी प्रेम का मूल्य। बृहस्पति छोटे देवताओं का गुरु था। उसने अपने बेटे कच्छ को संसार में भेजा कि शंकराचार्य से अमर जीवन का रहस्य मालूम करे। कच्छ शिक्षा प्राप्त करके स्वर्गलोक को जाने के लिए तैयार था। उस समय वह अपने गुरु की पुत्री देवयानी से विदा लेने के लिए आया। कच्छ ने कहा, देवयानी, मैं विदा लेने आया हूं। तुम्हारे पिता के चरण कमलों में मेरी शिक्षा पूरी हो चुकी है। कृपा कर मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दो। देवयानी ने कहा, तुम्हारी कामना पूर्ण हुई। जीवन के अमृतत्व का वो रहस्य तुम्हें ज्ञात हो चुका है, जिसकी देवताओं को सर्वदा इच्छा रही है। किंतु तनिक विचार तो करो, क्या कोई और ऐसी वस्तु शेष नहीं जिसकी तुम इच्छा कर सको? कच्छ ने कहा, कोई नहीं। देवयानी बोली, बिल्कुल नहीं। तनिक अपने हृदय को टटोलो और देखो, संभवतः कोई छोटी बड़ी इच्छा कहीं दबी पड़ी हो। कच्छ ने फिर कहा, मेरे उषाकालीन जीवन का सूर्य अब ठीक प्रकाश पर आ गया है। उसके प्रकाश से तारों का प्रकाश मध्यम पड़ चुका है। मुझे अब वह रहस्य ज्ञात हो गया है जो जीवन का अमृतत्व है। देवयानी ने कहा, तब तो संपूर्ण संसार में तुमसे अधिक कोई भी व्यक्ति प्रसन्न न होगा। खेद है कि आज पहली बार मैं यह अनुभव कर रही हूं कि एक अपरिचित देश में विश्राम करना तुम्हारे लिए कितना कष्टप्रद था। यद्यपि यह सत्य है कि उत्तम से उत्तम वस्तु जो हमारे मस्तिष्क में थी तुमको भेंट कर दी गई है, इसका तनिक भी विचार न करो और हर्ष सहित मुझे जाने की आज्ञा दो। कच्छ ने कहा, देवयानी ने कहा, तुम्हारे लिए इस वन को छोड़ना बहुत सरल है। यह वही वन है जिसने इतने वर्षों तक तुम्हें अपनी छाया में रखा, तुम्हें लोरियां दे देकर थपथपाता रहा। तुम्हें अनुभव नहीं होता कि आज वायु किस प्रकार क्रंदन कर रही है? देखो देखो, वृक्षों की हिलती हुई छाया को देखो, उनके कोमल पल्लवों को निहारो। वे वायु में घूम नहीं रहे, बल्कि किसी खोई हुई आशा की भांति भटके भटके फिर रहे हैं। एक तुम हो कि तुम्हारे होष्ठों पर हंसी खेल रही है। प्रसन्नता के साथ तुम विदा हो रहे हो। कच्छ ने कहा, मैं इस वन को किसी प्रकार मातृभूमि से कम नहीं समझता, क्योंकि यहां ही मैं वास्तव में आरंभ से जन्मा हूं। इसके प्रति मेरा स्नेह कभी कम ना होगा। सच कहता हूं देवयानी, कभी कम ना होगा। देवयानी ने कहा, वह देखो देखो, सामने बड़ का वृक्ष है, जिसने दिन के घोर ताप में, जबकि तुमने पशुओं को हरियाली में चरने के लिए छोड़ दिया था, तुम पर प्रेम से छाया की थी। कच्छ ने कहा, ए वन के स्वामी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। जब और विद्यार्थी यहां शिक्षा प्राप्ति हेतु आए और शहद की मक्खियों की भनभनाहट और पत्तों की सरसराहट के साथ साथ तेरी छाया में बैठकर अपना पाठ दोहराए, तो मुझे भी स्मरण रखना। देवयानी ने कहा, और हां, तनिक वनमती का भी तो ध्यान करो, जिसके निर्मल और तीव्र प्रवाह का जल प्रेम संगीत की एक लहर के समान है। कच्छ बोला, आह, उसको बिल्कुल नहीं भूल सकता, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। देवयानी बोली, किंतु प्रिय सखा, तुम्हें स्मरण कराना चाहती हूं कि तुम्हारा और भी कोई साथी था, जिसने बेहद प्रयत्न किया कि तुम इस निर्धनता के दुख से भरे जीवन के प्रभाव से प्रभावित ना हो। यह दूसरी बात है कि प्रयत्न व्यर्थ हुआ। उसकी स्मृति तो जीवन का एक अंग बन चुकी है देवयानी। देवयानी ने फिर कहा, मुझे वे दिन स्मरण है जब तुम पहली बार यहां आए थे। उस समय तुम

तुम्हारी आयु किशोर अवस्था से कुछ ही अधिक थी। तुम्हारे नेत्र मुस्कुरा रहे थे। तुम उस समय उधर वहां वाटिका की बाढ़ के समीप खड़े थे। हाँ, उस समय तुम्हारे शरीर पर श्वेत वस्त्र थे। हाँ, ऐसा दिखाई देता था जैसे उषा ने अपने प्रकाश में स्नान किया है। तुम्हें संभवतः स्मरण होगा, मैंने कहा था यदि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। देवयानी ने कहा, स्मरण क्यों नहीं है? मैंने आश्चर्य से तुमसे पूछा था कि तुम कौन हो, और तुमने अत्यंत नम्रता से उत्तर दिया था कि मैं इंद्र की सभा के प्रसिद्ध गुरु बृहस्पति का सुपुत्र हूं। फिर तुमने बताया कि तुम मेरे पिता से वो रहस्य मालूम करना चाहते हो जिससे मुर्दे जीवित हो सकते हैं। कच्छ ने कहा, मुझे संदेह था कि संभव है तुम्हारे पिता मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार न करें। देवयानी फिर बोली, किंतु जब मैंने तुम्हारी स्वीकृति के लिए समर्थन किया तो वो इस विनती को अस्वीकार न कर सके। उनको अपनी पुत्री से इतना अधिक स्नेह है कि वो उसकी बात टाल ही नहीं सकते। कच्छ बोला, और जब मैं 3 बार विपक्षियों के हाथों मारा गया तो तुम्ही ने अपने पिता को बाध्य किया था कि मुझे दोबारा जीवित करें। मैं इस उपकार को बिल्कुल नहीं विस्मृत कर सकता। देवयानी बोली, उपकार? उपकार? यदि तुम उसको विस्मृत कर दोगे तो मुझे बिल्कुल दुख ना होगा। क्या तुम्हारी स्मृति केवल लाभ पर ही दृष्टि रखती है? यदि यही बात है तो उसका विस्मृत हो जाना ही अच्छा है। कच्छ ने कहा, बहुत सी वस्तुएं हैं जो शब्दों द्वारा प्रकट नहीं हो सकती। हाँ, मैं जानती हूं, देवयानी बोली, मेरे प्रेम से तुम्हारे हृदय का एक एक अणु छिद चुका है, और यही कारण है कि मैं बिना संकोच के इस सत्य को प्रकट कर रही हूं कि तुम्हारी सुरक्षा और कम बोलना मुझे पसंद नहीं। तुम्हें मुझसे अलग होना अच्छा नहीं, यहीं विश्राम करो। कोई ख्याति ही हर्ष का साधन नहीं है। अब तुम मुझको छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हारा रहस्य मुझ पर खुल चुका है। नहीं नहीं देवयानी, नहीं, ऐसा ना कहो। देवयानी ने कहा, क्या कहा? नहीं, मुझसे क्यों झूठ बोलते हो? प्रेम की दृष्टि छिपी नहीं रहती। प्रतिदिन तुम्हारे सिर के तनिक से हिलने से, तुम्हारे हाथों के कंपन से तुम्हारा हृदय तुम्हारी इच्छा मुझ पर प्रकट करता है। जिस प्रकार सागर अपनी तरंगों द्वारा काम करता है, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय ने तुम्हारी भाव भंगिमा द्वारा मुझ तक संदेश पहुंचाया। सहसा मेरी आवाज सुनकर तुम तिलमिला उठते थे। क्या तुम समझते हो कि मुझे तुम्हारी उस दशा का अनुभव नहीं हुआ? मैं तुमको भली भांति जानती हूं, इसीलिए अब तुम सर्वदा मेरे हो। तुम्हारे देवताओं का राजा भी इस संबंध को तोड़ नहीं सकता। कच्छ ने कहा, किंतु देवयानी, तुम्हें हो क्या इतने वर्ष अपने घर और घर वालों से अलग रहकर मैंने इसीलिए परिश्रम किया था? देवयानी बोली, क्यों नहीं? क्या तुम समझते हो कि संसार में शिक्षा का मूल्य है और प्रेम का मूल्य ही नहीं? समय नष्ट मत करो, साहस से काम लो, ये प्रतिज्ञा करो। शक्ति, शिक्षा, ख्याति प्राप्ति के लिए मनुष्य तपस्या और इंद्रियों का दमन करता है। एक स्त्री के सामने इन सब का कोई मूल्य नहीं है। कच्छ ने कहा, तुम जानती हो कि मैंने सच्चे हृदय से देवताओं से प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीवन के अमृतत्व का रहस्य प्राप्त करके आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। देवयानी ने कहा, परंतु क्या तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारे नेत्रों ने पुस्तकों के अतिरिक्त और किसी वस्तु पर दृष्टि नहीं डाली? क्या तुम ये कह सकते हो कि मुझे पुष्प भेंट करने के लिए तुमने कभी अपनी पुस्तक को नहीं छोड़ा?

0: क्या तुम्हें कभी ऐसे अवसर की खोज नहीं रही कि संध्या काल मेरी पुष्प वाटिका के पुष्पों पर जल छिड़क सको? संध्या समय जब नदी पर अंधकार का वितान तन जाता था तो मानो प्रेम अपने दुखित मन पर मौन छा जाता। तुम घास पर मेरे बराबर बैठकर मुझे अपने स्वर्गिक गीत गाकर क्यों सुनाते थे? क्या यह सब काम उन षड्यंत्रों से भरी हुई चालाकियों का एक भाग नहीं जो तुम्हारे स्वर्ग में क्षम्य है? क्या इन कृत्रिम युक्तियों से तुमने मेरे पिता को अपना न बनाना चाहा था? विदाई के समय धन्यवाद के कुछ मूल्यहीन सिक्के उस सेविका की ओर फेंकते हो जो तुम्हारे छल से छली जा चुकी है। कच्छ ने कहा, अभिमानी स्त्री, वास्तविकता को मालूम करने से क्या लाभ? यह मेरा भ्रम था कि मैंने एक विशेष भावना के वश तेरी सेवा की और मुझे उसका दंड मिल गया, किंतु अभी वो समय नहीं आया कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकूं कि मेरा प्रेम सत्य था या नहीं, क्योंकि मुझे अपने जीवन का उद्देश्य दिखाई दे रहा है। अब चाहे तो मेरे हृदय से अग्नि की चिंगारियां निकल निकल कर संपूर्ण वायुमंडल को आच्छादित कर लें, मैं भली भांति जानता हूं कि स्वर्ग अब मेरे लिए स्वर्ग नहीं रहा। देवताओं की सेवा में यह रहस्य तुरंत ही पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, जिसको मैंने कठिन परिश्रम के पश्चात प्राप्त किया है। इससे पहले मुझे व्यक्तिगत प्रसन्नता की प्राप्ति का ध्यान तनिक भी न था। क्षमा कर देवयानी, मुझे क्षमा कर, सच्चे हृदय से क्षमा का इच्छुक हूं। इस बात को सत्य जानना कि तुझे आघात पहुंचाकर मैंने अपनी कठिनाइयों को दुगना कर लिया है। देवयानी ने कहा, क्षमा? तुमने मेरे नारी हृदय को पाषाण की भांति कठोर कर दिया है, वो ज्वालामुखी की भांति क्रोध में भबक रहा है। तुम अपने काम पर वापस जा सकते हो, किंतु मेरे लिए शेष क्या रहा? केवल स्मृति का एक कटीला बिछोना और छिपी हुई लज्जा जो सर्वदा मेरे प्रेम का उपहास करेगी। तुम एक पथिक के रूप में यहां आए धूप से बचने के लिए, मेरे वृक्षों की छाया में आश्रय लिया, अपना समय बिताया। तुमने मेरे उद्यान के संपूर्ण पुष्प तोड़कर एक माला गूंथी और जब चलने का समय आया तो तुमने धागा तोड़ दिया, पुष्पों को धूल में मिला दिया। मैं अपने दुखित हृदय से श्राप देती हूं, जो शिक्षा तुमने प्राप्त की है वो सब तुमसे वृक्ष में धो जाए। दूसरे व्यक्ति तुम्हारे से यह शिक्षा प्राप्त करेंगे, किंतु जिस प्रकार तारे रात में अंधियारे से संबंध स्थापित नहीं कर पाते बल्कि अलग रहते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी यह विद्या भी तुम्हारे जीवन से अलग रहेगी। व्यक्तिगत रूप में तुम्हें इससे कोई लाभ न होगा, यह केवल इसलिए कि तुमने प्रेम का अपमान किया, तुमने नहीं समझा प्रेम का मूल्य। प्रेम का मूल्य, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी ये कहानी अभी आप सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।
1: सुनो कहानी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

0: डंकी की फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल थे, प्रीतम का संगीत था। 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

भीड़ फिल्म का ये सोहर आप सुन रहे थे रोमी की आवाज में। शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था। विविध भारती से ये है कार्यक्रम चित्रलोक।

0: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता, सुनना न भूलिए शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: विविध भारती पर यह है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम के बाकी गाने आपको सुनवाएंगे छोटे से अंतराल के बाद।

0: स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत आप सुन रहे थे। कृष्णा कुमार और श्रेया घोषाल की आवाजों में फिल्म थी वेलकम टू सज्जनपुर।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद

0: के सिवा उन्होंने पहना नहीं। एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हे धन जो

शादी के साइड इफेक्ट्स, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे फरहान अख्तर की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के बोल थे, प्रीतम का संगीत था। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया, बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता

0: प्रवक्ता ने बताया है कि डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरामैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि सीएलपी नेता का चयन का कार्य एआईसीसी को सौंप देना चाहिए। इसके बाद एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी मेरो गोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरामैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक सीएलपी मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डीके शिवकुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डीके शिवकुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य जून 3 तारीख को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सचेतक एग्री एस कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ टीवीके द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से इस्तीफा देने के तुरंत बाद टीवीके में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले कि केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
4: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें हैं जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें हैं जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम

0: हाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह। जौहर महमूद इन गोवा ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का ये गाना है। मुकेश की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: घराना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल थे, रवि का संगीत था। 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। अनारकली फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवेरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। ये बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

विविध भारती के सभी श्रोताओं को दिलीप का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ पर।

23 अगस्त 1968 को दिल्ली में जन्मे के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले लगभग 3,500 जिंगल्स के लिए आवाज दी। क्रिकेट विश्व कप 1999 के दौरान भारतीय टीम की हौसला अफजाई के लिए जोश ऑफ इंडिया गीत में भी उन्होंने गाया। उन्होंने संगीत में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। केके का कहना था कि गायक का चेहरा दिखने के बजाय उसका सुना जाना ज्यादा जरूरी है।

ये गीत काफी लोकप्रिय रहा। हालांकि बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प से। उनके गीतों से युवा अपने आप को रिलेट कर पाते थे, क्योंकि उनके गीतों में वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी महसूस कर पाते थे और भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाते थे, जैसे कि ये गाना उन्हीं के लिए गाया गया हो। तड़प

1999 में उन्होंने अपना एक एल्बम लॉन्च किया पल, जिसका गीत यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है काफी लोकप्रिय रहा और स्कूल कॉलेज के लगभग हर फेयरवेल फंक्शंस का हिस्सा रहता था। इस गाने के बगैर कोई भी फेयरवेल फंक्शन अधूरा ही माना जाता था।

केके के चर्चित गानों की बात करें, शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम का गाना आंखों में तेरी काफी लोकप्रिय हुए। काइट्स का जिंदगी दो पल की, जन्नत का गाना जरा सा, गैंगस्टर का गाना तू ही मेरी शब है,

उनको 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नामित किया गया और उन्हें बचना ए हसीनो फिल्म के गाने खुदा जाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का स्क्रीन अवार्ड मिला।

के बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे। कॉलेज में दोस्तों के साथ मिलकर परफॉर्म भी करते थे और नेचर लवर भी थे। केके के कुछ अपने उसूल भी थे जिनसे वो समझौता नहीं करते थे। एक बार एक गाने को रिकॉर्ड करते वक्त उन्हें लगा कि गीत के बोल ठीक नहीं है और उनकी इस आपत्ति का सम्मान करते हुए गाने के बोल बदल दिए गए। अच्छे गायक की उनकी अपनी परिभाषा थी। केके मानते थे कि अच्छा सिंगर वही है जो किसी संगीतकार के गाने को अपना बना के गा सके।

0: संगीतकार ललित पंडित ने कृष्ण कुमार कुन्नाथ के लिए अपने हृदय के उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए।
1: केके को पूरे म्यूजिक फ्रेटर्निटी बहुत प्यार करती है, बहुत ही अच्छे कलाकार होने के अलावा बहुत अच्छे दिल के इंसान थे, बहुत दोस्त थे मेरे साथ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में, लाइफ में कभी कभी, और शोबिज मुकेश भट्ट जी की फिल्म में गाने गाए हैं उन्होंने सारे मेरे, जतिन ललित के भी गाने गाए हैं। उनकी आवाज में एक यूथ को अट्रैक्ट करने की एक क्षमता थी और गाने में जो सुर पकड़ने की ताकत थी उनमें बहुत थी। और सबसे बड़ी बात है जो सिंगर में लोग ढूंढते हैं और जो कुदरत की तरफ से आती है वो एक वॉइस क्वालिटी। उनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ही यूथफुल वॉइस क्वालिटी थी। और वॉइस क्वालिटी का ऐसा होता है कि एज से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता, वॉइस पुरानी नहीं होती आपकी, आपकी गायकी आपको मेंटेन करनी पड़ती है, और वो केके में थी।

के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से कॉन्सर्ट्स का हिस्सा बने, जिसके लिए वो खास तौर से जाने जाते थे। युवा दिलों की धड़कन बने और अपने आखिरी पलों में भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ वो युवाओं के साथ ही थे। 53 वर्ष की अवस्था में मंगलवार 31 मई 2022 को कोलकाता में कॉलेज के कॉन्सर्ट के बाद हम सबको हमेशा के लिए अलविदा कह गए।

0: श्रोताओं, आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था पार्श्व गायक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ पर। आलेख और स्वर दिलीप का, संपादन और प्रस्तुति तेजस्वी कांबले की।
1: आज के फनकार।

छाएगी प्रोग्राम थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि खूबसूरती ऊपर वाले की देन है। हर एक इंसान के नए नक्श बनाने वाले ने अपनी ही तरह से बनाए हैं, जो उस इंसान के व्यक्तित्व की पहचान है। सिर्फ सुंदर तीखे नए नक्श ही असली खूबसूरती नहीं होते, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं।

किसी को पहली बार देखते हैं तो आपकी दो आंखें चार होती हैं सामने वाले की दो आंखों से। आंखों के लिए एक शायर ने क्या खूब कहा है, वो चीज कहते हैं फिरदौस गुमशुदा जिसको, वो चीज कहते हैं फिरदौस गुमशुदा जिसको, कभी कभी तेरी आंखों में पाई जाती है।

आंखें आईना होती हैं दिल का। खैर, आंखों के बाद प्रभावित करती है सुरीली आवाज। आवाज में वो जादू होता है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है, और यही आवाज पहचान होती है इंसान की।

जरूर ढाएगा कोई महशर, जरूर फितना बर्पा करेगा तुम्हारा अटखेलियों से चलना, झुका के गर्दन उठा के आंचल। जी हाँ, बारी है चाल की। जहां उठना बैठना बात करना लोगों के मन को लुभाता है, वहीं चलना भी एक अदा है। ऐसी मतवाली चाल जिसे देखकर कोई

खूबसूरती क्या है? देखा जाए तो हर चीज का नियमानुसार होना। किसी की आंखें छोटी होती हैं या बड़ी बड़ी होती हैं, किसी के होंठ पतले हैं या मोटे, लेकिन अदाएं, जी हाँ, अदाएं तो आपके बस में हैं, क्योंकि यही अदाएं देखकर एक शायर ने

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: कन्हैया
1: बैठा चुप है भैया
2: मेरा भैया
0: हाँ हाँ तेरा भैया हाँ हाँ मेरा भैया
2: भैया भैया बोलो भैया
3: बोलूं क्या मैं अरे बोल कन्हैया

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। ये पहला जो गीत है अब्दुल्ला फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम ITI क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:55 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।